एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 जुलाई सन 2026। श्रोतो, इस समय सुबह के 5:58 और 36 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, 6 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत की राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं।

0: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एक सौ 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

मन का झुकना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सर को झुकाने से भगवान नहीं मिलते, क्योंकि जिस दिन जीवन से मैं शब्द निकल गया, प्रभु की समीपता का एहसास हमें अपने आप ही हो जाएगा। इसके लिए किसी प्रलोभन या चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत है तो केवल भगवान के प्रेम में विश्वास की, क्योंकि जब उस तारणहार का दामन हमने पकड़ लिया तो फिर जीवन का उद्देश्य ही पूर्ण हो गया। किंतु परंतु के सारे सवाल अपने आप ही खत्म हो जाते हैं जब उनकी भक्ति की ज्योत हमारे मन में जागृत हो जाती है।

जहाँ प्रेम होता है वहीं सागर बहता है। इस प्रेम को धारण करना भी सरल कार्य नहीं है, क्योंकि इसे पाने के लिए मन से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, क्रूरता, क्रोध को त्याग कर वाणी में मधुरता लानी पड़ती है। ये सब आसान काम नहीं है, इसके लिए साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, तभी मन की दबी हुई परतों में प्रेम का बीज अंकुरित होता है। ये प्रेम सबके मन में आनंद मिठास की भावना खोल देता है, और जब हम इस आनंदमय प्रेम का अनुभव करते हैं तो परमात्मा अपने आप ही हमारे हृदय में आ बसते हैं।

हर कोई परमात्मा को सदा ढूंढता रहता है। प्रभु कृपा बिन हम शक्तिहीन हो जाते हैं। जैसे ही प्रभु का नाम हमारे हृदय में धारण हो जाता है तो हम आत्मिक जीवन में जन्म ले लेते हैं। हमारे जीवन की सारी व्याधियाँ, सारे झंझावात पल भर में ही

अपने सोए हुए मन को हम कैसे जागृत कर सकते हैं, यह प्रश्न अक्सर सबके मन में रहता है। लेकिन कोई क्या इस प्रश्न के हल को खोज पाता है? केवल जिज्ञासु मन ही उसकी था को पा सकता है, क्योंकि प्रभु भक्ति में विलीन भक्त को हर प्रश्न का उत्तर बड़ी सरलता से मिल जाता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

अयोध्या में श्री राम के अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। संध्या समय हर्षित मन से महाराज दशरथ कैकेयी के महल में पहुंचे, किंतु वहां रानी के कोप भवन में होने का समाचार सुनते ही सहम गए। आशंका ने उनके पांव बांध लिए। जिनकी भुजाओं में इंद्र का बल है, राजे जिनका मुंह जोहते रहते हैं, वही राजा पत्नी के क्रोध की कल्पना करके सूख से गए। आशंकित अवस्था में वो रानी के पास पहुंचे, जो मोटे मलिन वस्त्र धारण कर भूमि पर लेटी थी, आभूषण शरीर से उतार फेंके थे। राजा ने रानी से रूठने का कारण पूछा। उसे रुष्ट करने वाले मनुष्य तो क्या देवताओं का भी विनाश कर देने का वचन देते हैं। अपना वचन निभाने के लिए श्री राम की सौगंध उठाते हैं। राजा के वचन तथा राम की सौगंध का विचार कर रानी उठकर गहने पहनने लगी, जैसे कोई वन्य कन्या मृग को देखकर उसके लिए फंदा तैयार करने लगी हो। राजा पुलकित हुए और अगले दिन राम को युवराज पद देने का शुभ समाचार सुनाया। यह सुनकर कैकेयी के कठोर हृदय में ऐसी टीस उठी जैसे किसी ने पका हुआ फोड़ा छू दिया हो।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान से भक्तिमय पाठ। आज आपने सुना भाग 140। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 हुए हैं। आइए सुने आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। पहले 6:55 पर संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहानी। 7:40 पर सुनिएगा कार्यक्रम शुभ प्रयाग। समाचार प्रभाग सुबह 8:00 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। 8:30 पर आज आप सुनेंगे प्रश्नों और सुझावों पर आधारित लाइव फोन इन कार्यक्रम आप और हम। सुबह 9:00 सुनिएगा कार्यक्रम हेलो धर्मशाला, जो सजीव फोन इन रहेगा। 9:18 पर प्रादेशिक समाचारों के बाद हेलो धर्मशाला कार्यक्रम का शेष भाग 9:30 से 10:00 तक जारी रहेगा। गीतों का कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का लुत्फ आप उठाएंगे सुबह 10:00। पहाड़ों के सुर, हिमाचली गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 10:30 पर आकाशवाणी शिमला से सुबह 11:00।

0: जी प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 11:05 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा 11:30। दोपहर 12:00 सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सुनो सखी महिलाओं के लिए कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:00 के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम 1:10 से आप सुन पाएंगे। दोपहर 3:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार, 3:05 पर सामयिक चर्चा रिले की जाएगी। आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद आप ले पाएंगे 3:10 से शाम 5:00 तक, और शाम 5:00 समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा, जिसमें 5:00 हिंदी में समाचार, 5:05 पर अंग्रेजी समाचार आप सुनेंगे। संध्याकालीन भजनों का आनंद लीजिएगा 5:10 पर। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा मंच, और आज के कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे सैर सपाटा। 5:55 पर कार्यक्रम विवरण के बाद शाम 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। शाम 6:06 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुरमई सांझ। मौजा ग्राइंदियां कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:30 पर। शाम 7:00 के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। सात बजकर 10 मिनट पर सुनिएगा कार्यक्रम किसान वाणी। 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात 8:00 सुनिएगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस, और 8:30 पर देशभक्ति गीत प्रसारित किए जाएंगे। समाचार संध्या 8:45 पर रात्रि 9:00 News@9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। 9:15 पर आज आप सुनेंगे एक ही गायिका, और आज की गायिका है KS चित्रा। 9:30 पर कार्यक्रम धाम गीत आदि सुनवाया जाएगा। 10:30 पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत पुरानी फिल्मों के सदाबहार गीत प्रसारित किए जाएंगे। सभा के अंत में रात 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे। श्रोता ये तो थी कार्यक्रमों संबंधी रूपरेखा। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य जकार्तायां इंडोनेशिया देशस्य प्रधान राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यमुना सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। प्रधानमंत्री श्री मोदी राष्ट्रपति प्रबोवो इत्यस्य आह्वानेन तत्र त्रिदिवसीय आधिकारिक प्रवासे ह्यः एव जकार्ता नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रागमने तावत् इंडोनेशिया वायुसेनायाः युद्धक विमानैः प्रधानमन्त्रिणः विमानस्य गगनमार्गे संरक्षणं कृतम्। सहैव विमानपत्तने राष्ट्रपतिना स्वयमुपस्थाय तस्य विशेषं भव्यं च स्वागतं विहितम्। एतादृशम् अभूतपूर्वम् अभिनन्दनम् अवलोक्य प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् इयं वार्ता 18-2000 भारत इण्डोनेशिया व्यापकरणनीतिकसहयोगाय कञ्चन नूतनं वेगं प्रदास्यति। जकार्तायां प्रदर्शितानि मनोरञ्जकसांस्कृतिकप्रदर्शनानि श्लाघयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् एतानि प्रदर्शनशिल्पानि भारत इण्डोनेशिया देशयोः प्राचीनसभ्यतायाः संस्कृतेः आध्यात्मिकसम्बन्ध धानांच प्रगाढतां प्रतिबिंबयन्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा तत्र इंडोनेशिया छात्राणां समन्वय समूहे

0: कृतं भरतनाट्य नृत्यमपि भृशं प्रशंसितं। स्वस्य विश्राम भवने प्रवासी भारतीयैः सह मिलित्वा तेन रामायण कथाधारितं प्रसिद्धं वायांग कुलित छायाकठपुतली प्रदर्शनं बौद्धिक भक्ति नृत्यञ्च अवलोक्य महान् हर्षः प्रकटितः। इंडोनेशिया देशे भारतीय राजदूतस्य संदीप चक्रवर्तिनः अनुसारं प्रधानमन्त्रिणः अयं प्रवासः दक्षिण पूर्व एशियायाः अस्याः बृहत्तमायाः अर्थव्यवस्थायाः साकं भारतस्य रणनीतिक संबंधान उच्चतर शिखरं प्रापयिष्यति। ध्यानार्हं वर्तते यत् प्रधानमन्त्रिणः अस्य त्रिदेशीय इंडो पैसिफिक प्रवासस्य एतत् प्रथमं चरणमस्ति। अतः परं सः अस्मिन्नेव सप्ताहान्ते ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देशयोः अपि भ्रमणं विधास्यति। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासेन सामान्य सचिवस्य चंपतरायस्य न्यास सदस्यस्य डॉक्टर अनिल मिश्रस्य च त्यागपत्रे स्वीकृतम्। कथितेन राम मंदिर दान वंचन प्रकरणे तयोः नाम प्रकाशात् परं उभौ त्यागपत्रं प्रदत्तवन्तौ। कृष्णमोहनः नवनियुक्ति पर्यन्तम् अन्तरिम सामान्य सचिव रूपेण नियुक्तः। तस्य परिवादे कथित दान अनियमिततायाः प्रकरणे FIR इत्यस्य पंजीकरणम् अभवत्, यस्मिन् अष्ट जनाः निगडिताः। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः बहरीन देशे तत्रत्येन नरेशेन हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यमुना साकं शिष्टाचार मेलनं विहितवान्। सहैव द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं प्रमुख चर्चाः अपि साधितवान्। विदेश मंत्री कतर देशस्य यात्रां परिसमाप्य स्वस्य उपसागरीय देशानां चतुर्देशीय प्रवासस्य द्वितीय चरणे बहरीन नगरं संप्राप्तवान्। अत्रावसरे सः बहरीन देशे निवसद्भिः प्रवासी भारतीयैः सह वार्तां साधितवान्। भारतर्तु विभागेन अद्य गुजरात सौराष्ट्र कच्छ मध्य महाराष्ट्र तटीय कर्नाटक प्रदेशेषु अतिवृष्ट्या सह प्रचंड वृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। आगामी दिनद्वयोः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब बिहार छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आंतरिक कर्नाटक मध्य प्रदेश विदर्भ उपहिमालयी पश्चिम बंग सिक्किम राज्येषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति विभागेन पूर्वानुमानितम्। अंडमान निकोबार द्वीपेषु आंध्र प्रदेशे गांगेय पश्चिम बंग प्रदेशे अरुणाचल प्रदेशे असम राज्ये मेघालये छत्तीसगढ़े नागालैंडे मणिपुरे मिजोरम राज्ये त्रिपुरा राज्ये च अग्रिमेषु त्रिषु चतुर्षु दिनेषु मेघगर्जनेन सह विद्युद्योतनं झंझावातः च भविष्यति इत्यपि विभागेनोक्तम्। फुटबॉल क्रीडायां स्पेन देशेन गतरात्रौ डलास क्रीडांगणे राउंड ऑफ 16 क्रीडायां पोर्चुगल देशः 1-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। स्पेन इदानीं शुक्रवासरे लॉस एंजलिस क्रीडांगणे USA बेल्जियम वा देशं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाए, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री क्षमा करें कि इसको दोबारा सुन लें, इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि 3 देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त

0: होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी चार देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमरीका के टेक्सास के डलास शहर में स्पेन के पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक और अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से हो रहा है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. The two leaders will also witness the exchange of Memorandum of Understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. The day's engagements will conclude with a state banquet hosted by President Prabowo Subianto in honor of the Prime Minister. Later, Prime Minister Modi will have engagements at the Complex Parlemen Republic Indonesia, highlighting the importance of parliamentary cooperation between the two countries. He will also participate in a community event where he will interact with members of the Indian diaspora. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President. India's ambassador to Indonesia, Sandeep Chakraborty, said that Prime Minister's visit to Indonesia is set to mark a significant upgrade in India's strategic partnership with Southeast Asia's largest economy. He said major announcements expected across defense, maritime security, digital connectivity, critical minerals and trade sectors.
3: We will be doing a lot of understandings and agreements on several areas of cooperation, and we are also hopeful for opening up new areas of cooperation. There will be cooperation announcements or agreements in 5 sectors. One would, of course, be defense and maritime security. Then

7 जुलाई का दिन है और आज मंगलवार है। आप सभी श्रोताओं का स्वागत कार्यक्रम सुबह सुहानी में। हम आपसे बातचीत करने के लिए, आपको तरह तरह की जानकारियां देने के लिए हर रोज़ हाजिर हो जाते हैं और आज का ये अंक आप सुनेंगे अपनी रेडियो दोस्त पवन शर्मा के साथ। हर कोई इसी उम्मीद के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है कि आज हमारा दिन बहुत अच्छे से बीतेगा। कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो चलिए ज़्यादा बातचीत ना करते हैं और सुनते हैं आज का सुविचार। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी पेड़ को

सौ घड़े पानी से भी सींची। फल तो मौसम आने पर ही लगते हैं। चलिए ये तो हो गया आज का सुविचार, और अब बढ़ते हैं गीत संगीत की तरफ। तो चलिए मिलकर सुनते हैं ये गाना, और उसके बाद जानकारियों का सिलसिला जारी रहेगा।

बिल्कुल मस्त पवन डोल रही है क्योंकि रिमझिम बारिश की फुहार हमारे घर आंगन को भिगो रही है क्योंकि बरसात के सुहाने दिन आ गए हैं। श्रोताओ, प्रोग्राम सुबह सुहानी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और फिल्मों का हमारे जीवन पर

कितना असर होता है ये हम सब तो जानते ही हैं। कई बार हीरो हीरोइन के अभिनय इतना अच्छा हमें लगता है कि उन्हें अपने जीवन में भी हम उतारना चाहते हैं। इन्हीं फिल्मों में बजने वाले गीत, चाहे वो नए हो या पुराने हो, हम हमेशा उस वक्त की याद दिलाते हैं जिस वक्त में उस सिनेमा को हमने देखा होता है। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के ऐसे ही महान अभिनेता की, जिन्हें अभिनय की दुनिया का ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है। जी हाँ, उनका नाम है दिलीप कुमार। उनका वास्तविक नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर, तत्कालीन ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, हुआ था। अभिनय की दुनिया में आने के बाद उन्होंने अपना नाम दिलीप कुमार रखा। दिलीप कुमार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 1944 से की और फिल्म थी ज्वार भाटा। हालांकि उन्हें पहली बड़ी सफलता जुगनू, जो 1947 में आई थी फिल्म, उससे मिली। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक यादगार फिल्में दी, जिनमें अंदाज, देवदास, नया दौर, मधुमति, मुगले आजम, गंगा जमुना, राम और श्याम, क्रांति, कर्मा और सौदागर उनकी प्रमुख फिल्में हैं। दिलीप कुमार को भारतीय सिनेमा में मेथड एक्टिंग का अग्रदूत माना जाता है। वे अपने किरदार को पूरी गहराई से समझकर निभाते थे, इसलिए उनके अभिनय में स्वाभाविकता और भावनात्मक प्रभाव साफ दिखाई देता था। आज भी अनेक अभिनेता उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। उन्हें अपने शानदार अभिनय के लिए 8 फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया। दिलीप कुमार ने वर्ष 1966 में प्रसिद्ध अभिनेत्री सायरा बानो से विवाह किया। 7 जुलाई यानी आज ही के दिन 2021 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी फिल्में, उनका अभिनय आज भी करोड़ों दिलों में जीवित है। वे केवल अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि भारतीय सिनेमा की अमूल धरोहर थे। और ये अमूल्य धरोहर तो थे ही, तो चलिए एक गाना उन्हीं के अभिनीत फिल्मों में से आपको सुनवाते हैं और उसके बाद लौटेंगे बाकी जानकारियों के साथ।

सुबह के 7:21 और 49 सेकेंड। सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। ना शीश झुका है ना झुकने देंगे हमारे जावाज वीर सिपाही, देश की शान को फीका ना होने देंगे। आज हम बात कर रहे हैं परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। कारगिल युद्ध के दौरान 7 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ते हुए और अपने साथी को बचाते हुए वे मात्र 24 वर्ष की आयु में वीरगति को प्राप्त हुए। उन्हें शेरशाह के नाम से भी जाना जाता है। उनके सर्वोच्च बलिदान और अदम्य साहस के कारण उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये दिल मांगे मोर उनका प्रसिद्ध नारा था, जो आज भी भारतीयों को प्रेरित करता है।

0: सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओ, आज हम हिंदी साहित्य के ऐसे महान साहित्यकार की चर्चा करेंगे जिनका नाम उनकी एक अमर कहानी के कारण सदैव याद किया जाता है। वे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म 7 जुलाई 1883 को जयपुर में हुआ था। वे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पाली और प्राकृतिक भाषाओं के विद्वान थे। वे केवल कहानीकार ही नहीं बल्कि निबंधकार, आलोचक, शोधकर्ता और इतिहासकार भी थे। हिंदी साहित्य में उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था है, जो वर्ष 1915 में प्रकाशित हुई। इसे हिंदी की सर्वश्रेष्ठ और कालजयी कहानियों में गिना जाता है। ये कहानी प्रेम, त्याग, कर्तव्य और मानवीय संवेदनाओं का अद्भुत चित्रण करती है। उन्होंने कम रचनाएं लिखी लेकिन उनकी प्रत्येक रचना साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। उनकी अन्य प्रसिद्ध कहानियों में सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, घंटाघर और पाठशाला शामिल हैं। आज भी उनकी रचनाएं नई पीढ़ियों की संवेदनशीलता, कर्तव्य और मानवीय मूल्यों को प्रेरणा देती हैं। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर आशुतोष गुलेरी के अमूल्य वचन, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में बता रहे हैं।
1: आशुतोष, आशु मुखातिब हूँ आपसे, तथा आज हम चर्चा करेंगे साहित्य के मूर्धन्य तथा आधुनिक हिंदी कहानी के प्रणेता साहित्यकार पंडित श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में। कहानी से बड़ा था कथाकार पंडित श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी। महानता अनुकूल परिस्थितियों अथवा प्रबल भाग्य की देन नहीं, प्रत्युत यह निस्वार्थ त्याग, नैतिक मूल्यबोध एवं ज्ञान की तृप्त पिपासा की भट्टी में तपकर निर्मित होने वाला वह आभूषण है जिसे धारण करने के लिए पहले योग्यता अर्जित करनी पड़ती है। पंडित श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य का वह देदीप्यमान नक्षत्र है जिसकी चमक एक सदी बाद भी जस की तस बनी हुई है। परिकथाओं, अय्यारियों और भुतहा कहानियों के दौर में लोक जीवन से जुड़ी उनकी सरस शैली में सशक्त संवादों से सजी उसने कहा था ने हिंदी कथा साहित्य को यथार्थ और मानवीय संवेदना की नई दिशा प्रदान की। सामाजिक समस्याओं पर सुस्त पड़ी साहित्यिक चेतना में दम भरा तथा सामाजिक यथार्थ को कथा के केंद्र में स्थापित करके हिंदी कहानी की भावी दिशा को प्रभावित किया। पंडित जी के व्यक्तित्व को शब्दों में समेट पाने का दम्भ भरना सूरज को दीपक दिखाने जैसा दुस्साहसिक कार्य होगा।

बिल्कुल श्रोताओं, सावन आने ही वाला है और समय अब कह रहा है कि ऐतिहासिक जानकारियों को आप तक पहुंचा दिया जाए। सन 1896 में आज ही के दिन भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। फ्रांस के ल्यूमियर भाइयों ने पहली बार बॉम्बे के वॉटसन होटल में फिल्मों का प्रदर्शन किया था। सन 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने 7 जुलाई के दिन ही लाहौर पर अपना कब्जा जमाया था। सन 1948 में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लिए दामोदर घाटी निगम DVC की स्थापना हुई थी। सन 1928 में स्लाइस की हुई ब्रेड की बिक्री पहली बार मशीनों के माध्यम से शुरू हुई। भारत के सफलतम कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी का जन्म इसी दिन 1981 को हुआ था।

सुबह सुबह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और श्रोताओं आप सुनते हैं खबर आज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया दौरे पर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, चमड़े का निर्यात 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक लक्ष्य उन्होंने रखा। भारतीय नौसेना 11 जुलाई को स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को सेवा में शामिल करेगी। फीफा विश्व कप 2026 में राउंड ऑफ 16 के मुकाबले रोमांचक दौरे पर पहुंच गए हैं, और स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं फ्रांस, इंग्लैंड, मोरक्को और नॉर्वे की अंतिम 8 टीमों में वो पहुंच बना ली है। खेल समाचारों में, विश्व खेल जगत की प्रमुख प्रतियोगिताओं में रोमांचक मुकाबले जारी हैं और विभिन्न टीमों ने अगले चरण में प्रवेश किया है। अब जानकारी मौसम की। भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून देश के अधिकांश हिस्सों में सक्रिय है। आज महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में भारी से भारी बारिश की संभावना है।

0: सुबह सुहानी।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम शुभ प्रयाग।

हिमाचली गीतों और लोक संगीत से सजा ये कार्यक्रम हम लेकर हाजिर हैं और कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं अपूर्वा जम्वाल के गाए इस लोकगीत के साथ।

हिमाचली गीत और लोसंगीत आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शुपिया के अंतर्गत। कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए हेतराम तनवर को।

0: अभी आप सुन रहे थे देशकान FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आप सुनेंगे।
1: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
4: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया

0: रशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
2: India and Indonesia are very close and strategic partners. We are
3: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
4: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों

0: चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से

0: चार दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सर फिरोजी।
1: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। NEET PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals including 4 gold at Under-20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President. In a special gesture, President Prabowo personally received the Prime Minister at the airport. Indonesian Air Force fighter jets escorted the Prime Minister's aircraft after it entered Indonesian airspace. More from our correspondent.
3: Describing the welcome as deeply touching, Prime Minister Modi said he looked forward to holding discussion with President Prabowo to impart fresh momentum to the India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership, which was established during his 2018 visit. Prime Minister Modi praised the rich cultural performances presented during his arrival in Jakarta, saying they reflected the deep civilizational, cultural and spiritual ties shared by India and Indonesia. The Prime Minister also appreciated a Bharatanatyam performance by someone via group comprising Indonesian students. The Prime Minister witnessed a series of performances. These include

0: कार्यक्रम है आप और हम,
1: जिसमें होता है हम सब का संगम।
2: प्रश्न आपके, हमारे जवाब,
0: आपके सुझाव, हमारे बदलाव।
1: हम और आप या आप और हम
2: मिलकर होते हैं आपके संग,
3: आपके साथ से सफल होता है ये कार्यक्रम आप और हम।

0: बिल्कुल श्रोताओ, आप और हम साथ साथ हैं क्योंकि आप और हम कार्यक्रम में हम पहुंच चुके हैं जिसमें बातें होंगी हमारे कार्यक्रमों से संबंधित सुझाव और जानकारियाँ आपसे हम लेना चाहेंगे कि किस तरह के परिवर्तन आप चाहते हैं कार्यक्रमों में। और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ पवन शर्मा, हमारे साथ हैं कार्यक्रम प्रमुख जितेंद्र पाल सिंह, उनका भी स्वागत करते हैं स्टूडियोज़ में।
1: धन्यवाद।
0: जी तो सर, हमने बहुत सारे कार्यक्रम अपने श्रोताओं के लिए शुरू किए हैं, तो सबसे पहले अगर हम भक्ति संगीत से शुरू करें तो हमारे कार्यक्रम सुबह भक्ति संगीत से शुरू हो जाते हैं। हम लोगों को वंदना कार्यक्रम के अंतर्गत उनको भाव विभोर करते हैं, बहुत सारे भजन उनके लिए लेकर आते हैं और उसके तुरंत बाद समाचारों के बाद और कार्यक्रमों की जानकारी देने के बाद हम 7:10 पर जो हमने कार्यक्रम में परिवर्तन किया है, सुप्रभात की जगह हमने शुरू किया है कार्यक्रम
1: सुबह सुहानी।
0: जी, और सुहानी सुबह बनाने के लिए हम बहुत सारी जानकारियाँ मनोरंजन अपने श्रोताओं को पहुँचाते हैं। एक नए अंदाज़ में अपने कार्यक्रम हम श्रोताओं तक पहुँचा रहे हैं और हम चाहते हैं कि श्रोता अपनी फीडबैक हमें दें, हम अपनी प्रतिक्रियाएँ हमें बताएं कि किस तरह के कार्यक्रम उनको लग रहे हैं। जी तो सुबह सुहाने के बाद अगर हम बात करते हैं तो शुभप्रयाग कार्यक्रम आता है। एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है, बात करते हैं। हेलो,
2: हेलो पवन जी, नमस्कार। जितेंद्र
0: नमस्कार जी।
2: पाल सिंह जी, आपको भी मेरी तरफ से नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं बोल रहा हूँ जी, पंजाब के जिला होशियारपुर, तहसील मुकेरिया के गांव मेहतापुर से महेंद्र सिंह राणा।
0: जी महेंद्र जी, स्वागत है आपका, और बताएं कि कार्यक्रमों के संबंध में क्या कहना चाहते हैं।
2: देखिए, कार्यक्रम के संबंध में तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि कार्यक्रम ऐसे अच्छे तरीके से पिरो रखे हैं कि

0: कोई भी श्रोता है, सबको मन भावन है
1: जी,
0: चाहे वो बच्चा हो, औरत हो, बूढ़ा हो, जवान हो या किसान हो, कोई भी हो, हर के लिए इतने अच्छे तरीके से कार्यक्रम चलते हैं
1: जी, क्योंकि हम सभी श्रोताओं का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं, हमने हर पक्ष को खुश रखना है। तो बताएं कि आपको हमारे सबसे ज़्यादा कार्यक्रम कौन से पसंद आ रहे हैं?
0: देखिए सब कार्यक्रम अच्छे हैं, इसमें ज्ञान भी मिलता है और शिक्षा भी मिलती है
1: जी,
0: और तरह तरह का जो भी जानकारियां भी मिलती है
1: जी।
2: राणा जी कोई सुझाव देना चाहेंगे?
0: हाँ सुझाव देना चाहता हूँ जितेंद्र जी। देखिए मैं एक सुझाव आपके माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को देना चाहता हूँ कि हमारा जो आकाशवाणी धर्मशाला है जी, आप देखिए हमारे तीन कार्यक्रम मतलब प्रसारण होता है शिमला और हमीरपुर से
2: जी,
0: उससे ज्यादा उच्च क्वालिटी में जो है हमारा आकाशवाणी धर्मशाला का प्रसारण है जो बहुत दूर दूर तक जा रहा है, दूसरे राज्यों से भी फोन आते हैं
1: जी,
0: और
1: जी।
0: मैंने तो एक दो दफा ये भी देखा है कि सुना भी है कि दूसरे बाहर के मतलब देशों से भी फोन आए हैं। तो मैं आपके माध्यम से सूचना प्रसारण मंत्रालय को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे आकाशवाणी धर्मशाला को अपग्रेड किया जाए, क्योंकि अपग्रेड होने से क्या होगा कि इसमें जो काम करने वाले हैं उनको रोजगार मिलेगा और जितना ज्यादा समय लगेगा उसमें ज्यादा जो है वो अपने आएंगे, विज्ञापन आएंगे, अगर विज्ञापन आएंगे तो आकाशवाणी को आय का साधन मिल जाएगा।
2: ठीक है राणा जी,
0: हाँ जी
2: ठीक है जी, आपके सुझाव हम ऊपर तक पहुंचा देंगे
1: और नोट भी कर लिए हमने आपके सुझाव। बिल्कुल
0: मैंने तो पत्र भी लिखे थे दो आपके माध्यम से, लेकिन पता नहीं आपके पास पहुंचे कि नहीं पहुंचे
1: जी, अभी तक तो वो हम तक नहीं पहुंचे, पर उम्मीद करते हैं कि वो पत्र बहुत जल्द हम तक पहुंचेंगे और आपके जो अमूल्य सुझाव हैं उनका हम स्वागत करते हैं। प्रोग्राम में आपने कॉल किए, इतने अच्छे सुझाव हमें दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी श्रोताओं से भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि वो हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर 01892224391 मिलाएँ, ताकि वो भी हमें अपने विचारों से अवगत करवा सकते हैं किस तरह के कार्यक्रम हमारे लग रहे हैं और किस तरह के परिवर्तन वो चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। हेलो,
3: मैं जयकरण सराह से बोल रहा हूँ
1: जी, स्वागत है आपका
3: जी। मैं प्रोग्रामों के बारे में तो यही कहूँगा, थोड़े नाम नो बदल चुके हैं अभी, तो मैं कुछ नहीं कह सकता कौन प्रोग्राम अच्छा है। पिछले सोमवार को ना मेरे हिसाब से 10 बजे एक पंजाबी गानों का प्रोग्राम है ना
1: जी जी
2: जी,
3: सबसे मेरे को बढ़िया लगा जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी सराहना के लिए।
3: और एक सुझाव है मैडम जी, मेरा बहुत दिनों से निवेदन है, मतलब पहले मैं कर चुका हूँ एक दो बार शिकायत
1: जी, बिल्कुल नोट करेंगे हम सुझाव। हाँ, हमारे कार्यक्रम पर लोग बैठे हैं हमारे साथ,
3: होते हैं ना फोनिंग प्रोग्राम, इसमें जी दूर दूर से जो मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, MP वगैरह ऐसे तो कॉल आते हैं, हमें तो नंबर ही नहीं आता हमारा, हम एक एक घंटा लगे रहते हैं हमारा नंबर नहीं। कृपया करके मैंने ठाकुर जी से ही पहले कहा था जी, क्योंकि कृपया आपके माध्यम से उनको मतलब सूचित किया जाए कि कृपया अपने निजी चैनलों में फोन करें
1: जी। हमारी रेडियो की पहुंच बहुत दूर तक है, आप सिर्फ इसको हमारे जो हमारे राज्य हैं वहीं तक नहीं सुन सकते, विदेशों में भी इसे सुना जा सकता है, तो हम किसी को यहाँ बांध के नहीं रखा जा सकता है।
3: कॉल ना करें, सुनने को तो कोई भी सुन सकता
1: जी
3: है।
2: नहीं, इसमें हम दूसरों को मना नहीं कर सकते, लेकिन हमने आपकी समस्या का हल निकालने के लिए फेसबुक पर मैसेज डालने शुरू कर दिए हैं कि इस पोस्ट पर आप मैसेज कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा श्रोता हमारे साथ जुड़ सके
1: जी।
3: हाँ जी, हाँ जी।
1: चलिए, आपने कॉल किया और आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है, बाकी श्रोताओं से भी हम अनुरोध करेंगे कि वो 01892224391 पर कॉल करें और अपने मूल्यवान विचार हम तक पहुंचाएं, और अगले श्रोता भी हम तक पहुंच चुके हैं। हेलो,
4: हेलो,
1: नमस्कार जी, नाम बताइए अपना, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
4: जी हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: स्वागत, और बताएं कार्यक्रम आप और हम में आपका स्वागत है, कुछ सुझाव देना चाहेंगे कार्यक्रमों के संबंध में, आज हमारे कार्यक्रम प्रमुख हमारे साथ स्टूडियोज में बैठे हुए हैं।
4: कार्यक्रम तो आपके सभी अच्छे लगते हैं और जो आरोग्यवाणी आता है, जनवाणी आता है, इन सब में तो हमें और भी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अपनी बातों को पहुंचाने का, अपने सवालों के जवाब लेने का, और गीत संगीत भी जो फरमाइशी कार्यक्रम आते हैं वो भी काफी अच्छे
1: जी
4: लगते।
1: हमने गीतांजलि कार्यक्रम भी फोन इन शुरू किया है जो वीरवार और शनिवार को आएगा, तो उसकी उसका भी आनंद आप ले रहे होंगे। बताएं कि कुछ परिवर्तन चाहते हैं आप हमारे कार्यक्रमों में?

0: नहीं, हमें तो फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है, और जो खेती बाड़ी का कार्यक्रम आता है इसमें फोरिन है कि नहीं है, मैं थोड़ा सा नहीं सुन पाया हूँ।
1: जी कुछ दिनों में तो होता है।
0: जी, तो सारी तरह से परिपूर्ण है, तो हम इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं आकाशवाणी
1: जी
0: धर्मशाला को।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने दूर से हमें कॉल किया और अपने मूल्यवान विचार हम तक पहुंचाए। और श्रोताओं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, 01892224391, ये हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर। फ़ोन लाइन स्क्रीन्स पर लगातार ब्लिंक हो रही हैं और हम चाह रहे हैं कि और भी श्रोता दूर दूर से हम तक पहुँचें, अपने विचार हम संग साझा करें। हेलो,
2: हेलो, नमस्ते जी। मैं ज्योत्सना पठानिया पठानकोट से, आपके प्रोग्राम्स में बहुत अच्छी चेंजेस हुई हैं। आपने लाइव और वर्चुअल फेसबुक वगैरह पे जो ऑडियंस हमको नहीं भी पता, क्योंकि अभी मैं 1-to-1 आपसे बात कर रही हूँ,
1: जी।
2: लेकिन आपका जो वाइब्रंट कम्युनिटी फेसबुक पे दिख रही है, इतने अलग अलग स्टेट्स से और कई तो पाकिस्तान और दूसरे देशों के भी
1: जी जी
2: आपसे श्रोता जुड़ रहे हैं।
1: ये देखिए हमारी अचीवमेंट है।
2: हाँ जी
1: जी तो कार्यक्रमों के संबंध में कुछ परिवर्तन चाहती हैं आप?
2: जो हमने सोचा नहीं था उससे बढ़िया आप कर रहे हैं, तो हमको अब खुद ही अपडेट करना पड़ेगा आपके साथ कैचअप।
1: जी देखिए, हमारे जो कार्यक्रम प्रमुख हैं वो, उनकी कोशिश पूरी यही है कि हमारे कार्यक्रमों में की गुणवत्ता इतनी अधिक बढ़े कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे हमारे संग जुड़ें, और फेसबुक हो, चाहे वो मैसेंजर हो या व्हाट्सएप हो, SMS बेस्ड हो, ईमेल पर जो भी है वो
2: हाँ
1: भी
2: जी,
1: मैसेज
2: हाँ
1: वाले
2: जी,
1: प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। जी सर,
2: थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है। थैंक
1: शुक्रिया जी कॉल करने के लिए।
2: यू, थैंक यू।
1: जी, और हम बात कर रहे थे कि सुबह सुहानी कार्यक्रम जो है हमारा चल रहा है, जिसमें हम जानकारियाँ भी देते हैं, सुविचार के साथ उसको शुरू करते हैं, उसके बाद जो हमारे दैनिक दिनचर्या के हिसाब से होता है इतिहास की जानकारियाँ देते हैं। आजकल हमने एक नया उसमें शुरू किया है कॉन्सेप्ट खबरों का। जी
3: हाँ, उसमें खबरों के थ्रू हम लोगों को नई और ताज़ा
1: जानकारी के साथ
3: जानकारी
1: अवगत
3: पहुँचाई
1: करवाते
3: जाती
1: हैं। और जी श्रोताओं, आप लगातार हमारे संग जुड़ रहे हैं। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार मैम,
1: नमस्कार जी, नाम बताएं, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
2: हिमानी हूँ और ऐप से बोल रही हूँ।
1: नाम दोहरा दीजिए अपना।
2: हिमानी,
1: हिमानी जी, स्वागत है आपका। जी, क्या कहना चाहेंगी कार्यक्रमों के संबंध में?
2: मुझे धर्मशाला के तो सारे कार्यक्रम पसंद है। मेरा रेडियो जो है वो घड़ी है, मैं घड़ी नहीं देखती हूँ, रेडियो के अकॉर्डिंग, कार्यक्रम के अकॉर्डिंग मुझे पता चल जाता है कि अभी ये समय हुआ है
1: जी
2: और मुझे कितनी जल्दी काम करना है, कितनी जल्दी बच्चों को भेजना है, कितनी जल्दी खुद ड्यूटी जाना है। मेरी
1: जी
2: जान है धर्मशाला, और उसको मैं जो 9:30 तक सुन पाती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे फिर ड्यूटी में बैठना पड़ता है।
1: जी अच्छी बात है। और
2: मेरी
1: आप?
2: सोच है, मेरा एक फेवरेट प्रोग्राम है जो आज मंगलवार को आता है,
1: हेलो धर्मशाला,
2: पहाड़ी नाटक,
1: अच्छा
2: जिसमें
1: नाटक जी।
2: शांति, चंपा और केसर होती है। और ये आप मान नहीं सकती, हम तीन फ्रेंड की स्टोरी, हम भी तीन फ्रेंड हैं और हम तीनों ने अपना अपना नाम ऐसे इस करेक्टर के अकॉर्डिंग रख लिया हुआ है।
1: जी जी
2: तो हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज, इसमें पहाड़ी बहुत अच्छी बोली जाती है और इसमें जो है वो सूचना भी अच्छी दी जाती है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के रिलेटेड, जैसे फोन से बच्चों के एडिक्शन के लिए बोला गया है, फिजूल खर्ची के लिए बोला गया है, गर्मी के लिए बोला गया है, तो वो बहुत अच्छा लगता है।
1: जी
2: मतलब मुझे
1: जो
2: आनंद आ जाता है, मैं मंगलवार का बहुत बेसब्री से इंतजार करती हूँ। सो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस प्रोग्राम को किसी न किसी तरीके से मॉर्निंग में या इवनिंग में स्टार्ट करें, बीच में नहीं, ड्यूटी टाइम में नहीं। और दूसरी, आपकी आकाशवाणी के माध्यम से हम उन लोगों से भी मिल पाती हैं, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी कॉल आया था, तो
1: जी
2: बड़ी खुशी होती है। हम चाहे उनको फेस टू फेस नहीं देख पाते हैं, लेकिन उनके विचार हम तक आते हैं।
1: बिल्कुल
2: पीछे पर्यावरण से रिलेटेड बात की थी, तो एक जो मध्य प्रदेश से थे, उनका नाम मैं भूल गई, लेकिन उन्होंने कविता बड़ी प्यारी बोली थी। तो मतलब ऐसे लोगों के विचार जब आते हैं तो हमारे भी विचारों में बदलाव आता है।
1: जी, विचारों में बदलाव आता है, और हम भी चाहते हैं कि दूर दूर के श्रोता हम हमारे संग जुड़ें, और हमारा जो आकाशवाणी परिवार है वो बहुत विस्तृत हो, बहुत बड़े। और सर, पहाड़ी नाटक के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
3: हिमानी जी, आपको जानकारी देना चाहेंगे कि पहाड़ी नाटक हम और भी बढ़िया बनाकर शाम के टाइम पर आपके सामने लेकर आएंगे।
1: कुछ ही
2: टाइम पे
1: समय
2: पता
1: में
2: चल सकती है।
1: जी, समय तो ये 7:10 के बाद ही ये कार्यक्रम हो पाएगा, तब तक आप ऑफिस से वापस आ पाएंगे और हमारे कार्यक्रमों का आनंद ले पाएंगे। और आपने हिमानी जी
2: है ना,
1: प्रोग्राम,
2: मेरी हर बार ये कोशिश होती है कि मैं फोन जो है वो कम करूं, ताकि बाकी लोगों

0: भी फोन करने का मौका
1: जी जी
0: मिला।
1: बहुत अच्छा
0: जी,
1: आपने,
0: सभी को मौका मिलेगा तो हमारे साथ ज़्यादा श्रोता जुड़ सकते हैं।
1: जी शुक्रिया।
0: थैंक यू।
1: जी श्रोताओं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर वही है, जाना पहचाना 01892224391। हेलो
2: हेलो, नमस्कार जी। मैं नमस्कार सर, मैं रतन चंद बात कर रहा हूँ ज्वाला जी से।
0: नमस्कार रतन जी।
2: सर प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया है और जो आपने इसके नाम चेंज किए हैं वो तो बिल्कुल दिल को सुकून देने वाले हैं। इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है कुछ बोलने की
0: जी।
2: पर मेरे एक तो मेरा मेन सुझाव है सर कि इसको सोशल मीडिया और संजीव टेलीफोन का जो होता है लाइव, इसको इकट्ठा मत करिए सर, एक एक दिन रखिए इसको
0: जी। रतन जी, इसका ये हमारा ये मोटिव था कि अगर हम, कई बार होता है कि एक ही श्रोता हमें बार बार फोन कर रहा है, अगर हमें साथ में ज्यादा श्रोता जोड़नी है तो इसलिए हमने उसको लाइव कर दिया था।
1: और ज्यादातर हमारी फोन लाइन खराब रहती है उसलिए भी।
2: इसके लिए आप पीछे भी अनाउंस किया था, एक दिन संगीता जी ने भी किया था, पवन जी ने भी किया था कि कम से कम 30 दिन के बाद फोन करें, तो ये तो एक अपील करके लोग फिर आ जाएंगे रास्ते पे।
0: हमारी कोशिश तो यही है जी।
2: इसमें ज्यादा होच पोच हो रही है क्योंकि सारे आदमी तो फेसबुक चला नहीं सकते। जैन जेड तो ठीक है चला रहा है, बाकी जो
0: रतन जी उनका भी मौका मिलना चाहिए ना शामिल होने का।
2: नहीं नहीं सर, उनको भी दो मौका, पर उसके लिए एक दिन रख लो ना, एक हम पूरा दिन दे रहे हैं, एक पूरा 50 मिनट उनको, उनके लिए हो गया।
1: उसके लिए हमारे सर की तरफ से ये कोशिश रहेगी कि जो हमारा सोमवार का गीतांजलि है या बुधवार का गीतांजलि है वो ईमेल बेस्ड और एसएमएस बेस्ड हो जाए। हाँ
0: जी। बहुत जल्दी वो ईमेल बेस्ड कर रहे हैं हम।
2: जी सर, मेरा यही सजेशन है सर। दूसरा सर, कॉल ड्रॉप की बड़ी प्रॉब्लम है पिछले 1-1.5 साल से, इसका कोई सोल्यूशन निकालो जी।
0: वो हमने बात की अपने अभियंत्री कक्ष के साथ और वो उसका समाधान निकाल रहे हैं जल्दी।
2: और एक छोटा सा एक और सुझाव है कि कई आरजे जो है सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं प्रोग्राम, पर ज्यादा बात के एक बार 7-8 मिनट एक श्रोता के साथ लगा देते हैं, तो उसको देख रखना चाहिए क्योंकि 3 मिनट तो गाना सुनाना जो SOP है उसके अनुसार, 2 मिनट और ले लें, 5 मिनट तक के एक श्रोता का जो है वो बातचीत हो जानी चाहिए खत्म।
0: ठीक है रतन जी, आपका सुझाव पर ध्यान दिया जाएगा
1: जी।
2: बाकी सब बहुत बढ़िया सर, और वो मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि ये मैक पंजाब दी इसको पूरा 6 दिन कर दो सर, एक बार लिखो चिट्ठी हो जाएगा।
0: ठीक है ठीक।
1: चलिए आपके नमस्कार, आपके सुझाव हमने नोट कर लिए हैं और श्रोताओं का देखिए किस तरह से रुझान है हमारी आकाशवाणी तरफ, धर्मशाला की तरफ, किस तरह से हमारे प्रोग्रामों को वो बड़े ध्यान से सुनते हैं। और बाकी श्रोताओं से भी हम गुजारिश करेंगे कि वो हमें फ़ोन करें, नंबर है 01892224391। एक और श्रोता फ़ोन लाइन पर है। हेलो हेलो हेलो जी, इन्होंने फ़ोन हमें कर दिया, ये नंबर है 0623064177। ये हमें कॉल कर रहे हैं लेकिन बात हमसे नहीं कर रहे हैं, हमारी इनसे विनम्र विनती रहेगी कि जब भी हमें कॉल करें तो इस बात का ध्यान रखें कि बात आपने करनी है क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है। हेलो
3: नमस्कार जी। मैडम नमस्कार जी।
1: नमस्कार, नाम बताएं।
3: नाम, मैं प्रमोद माझी बोल रहा हूं डलहौजी से।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है
3: मैडम। विवेक, मेरा पहले भी सजेशन था, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा आपने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, आपका एक प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट चंबा में आता है चिपसिंता से ऊपर, हम डलहौजी से सारा वंचित रह जाते हैं, इसके बारे में कुछ सोचिए।
1: ऐप के माध्यम से भी नहीं सुन पाते?
3: नहीं कुछ ही नहीं सर, इतना नहीं चलता, मैं डलहौजी का FM जरूर चलाई जाइए प्लीज
1: जी।
0: जी ठीक है जी।
3: हाँ जी, इसके बारे में जहाँ किसको अप्रोच करना वो बता दे हमें, कहते लेकिन बहुत जरूरी है, हमें ये डिस्ट्रिक्ट चंबा सारा कट जाता है।
0: ये अभियंत्री कक्ष हम बात करेंगे और इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे।
3: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।
1: जी और कुछ कहना चाहेंगे कार्यक्रमों के संबंध में?
3: बाकी प्रोग्राम बहुत बढ़िया आपके, मैं कंटिन्यू सुनता रहता हूँ।
1: चलिए धन्यवाद। और 01892224391 ये हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर। कार्यक्रमों के संबंध में हम बात कर रहे थे कि सुबह सुहानी कार्यक्रम हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं और उसके तुरंत बाद हिमाचली गीतों का कार्यक्रम होता है शुभ याग, और उसके बाद समाचारों के बाद गाने सुहाने आते हैं जी। और बहुत सारे परिवर्तन हमने किए हैं, गाने सुहाने पहले फिल्म संगीत के नाम से ही सारे कार्यक्रम चलते थे, तो काफ़ी लोगों को ये पसंद आ रहे हैं और श्रोताओं आप हमें कॉल कर सकते हैं।

0: हैं 01892224391 पर बातें हम करेंगे।
1: पवन, एक मैं जानकारी देना चाहता हूँ श्रोताओं को कि हमने कुछ जो बदलाव किए हैं उसमें से एक है घर परिवार का, जिसका नाम हमने बदल कर सुनो
0: सुनो
1: सखे।
0: सखी रखा है जी।
1: उसमें हमने दिन के अकॉर्डिंग बदल दिए
0: जी
1: हैं।
0: जी जी
1: जैसे सोमवार को हमने स्टार्ट किया है हिमाचली संस्कृति
0: संस्कृति
1: के।
0: जी, उसमें चाहे वेशभूषा की बात की जाए, खान पान की बात की
1: जी,
0: जाए, संस्कृति कल्चर आ जाएगा, सारा हिमाचल हम कवर कर सकते हैं इसमें।
1: इसी तरह हमने बुधवार स्टार्ट किया है ग्लैमर गलियारा।
0: बिल्कुल, इसमें खूबसूरती की बात होगी, किस तरह से सजना संवरना, और ये सजना संवरना सिर्फ अपने जो फिजिकल अपीयरेंस को उसी को नहीं बताना है, इसमें आपका घर आंगन किस तरह से सजता है, आपका घर किस तरह से आप सजा सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, हेलो जी, इन्होंने साथ छोड़ दिया है और हम बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि हमें ये कॉल करेंगे।
1: उसके बाद हमने शुक्रवार को स्टार्ट किया है नया कार्यक्रम उड़ान।
0: जी, और उड़ान के अंतर्गत हम उन लोगों को शामिल करते हैं जो नए नए क्षेत्रों में उन्होंने अभी अभी कदम रखा है, जैसे कोई अचीवमेंट उन्होंने ली है, और जैसे कोई सशक्त महिला है, या फिर किसी ने किसी क्षेत्र में कोई
1: अच्छा काम किया हो।
0: बिल्कुल, और इनको हम इसमें शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं जी।
1: और आखिर में शनिवार को एक नई प्रोग्राम स्टार्ट किया है माँ की बेटी को चिट्ठी।
0: जी, माँ के नाम चिट्ठी,
1: जी
0: तो ये चिट्ठी बहुत ही कह सकते हैं कि दिल को छू लेने वाली होती है, क्योंकि कार्यक्रम का नाम ही इतना खूबसूरत है।
1: कोई संदेश एक माँ अपनी बेटी को देना चाहे तो
0: जी,
1: इस माध्यम से दिया जा
0: दिया जा
1: सकता।
0: सकता है, तो श्रोताओ अगर आप भी अपने माँ के नाम कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। हेलो,
2: ओ नमस्कार मैडम
0: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना, कौन और कहाँ से
2: राकेश
0: बोल,
2: उत्तरदारी से बोल रहा हूँ
0: स्वागत है
2: मैडम जी।
0: आपका
2: धन्यवाद
0: जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे
2: मैडम
0: आज।
2: जी। मैडम जी, धर्मशाला, आकाशवाणी धर्मशाला के प्रोग्राम तो ऐसे नहीं जैसे एक माला में ना हर टाइप का, जैसे मोती पुरे उतना वैसे
0: बहुत खूब,
2: प्रोग्राम है।
0: बहुत
2: हाँ
0: खूब जी,
2: जी, आरोग्य प्रोग्राम लीजिए तो हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। आरोग्य प्रोग्राम से घर बैठे हर टाइप के डॉक्टर से हमें जानकारी मिलती रहती है। इसके अतिरिक्त कानूनी सलाह मिलती रहती है घर में, ऐसे हमने किसको पूछने जाना, तो घर बैठ के वो भी हमें मिलती
0: जी
2: रहती
0: देखिए,
2: है। छोटी
0: मुफ्त
2: छोटी
0: में
2: इतनी
0: बिना
2: सलाह
0: पैसे
2: हमें।
0: के
2: हाँ
0: आपको सलाह हम यहाँ से दे रहे हैं और
2: जी,
0: आपको जानकारी मिल रही है जी। और
2: हाँ जी, इसके अतिरिक्त मैंने जी किसान किसान भाइयों के लिए भी प्रोग्राम है, तो किसान भाइयों के लिए भी जानकारी मिलती रहती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि धर्मशाला प्रोग्राम ऐसा कि एक से एक जानकारी हमें घर बैठ के मिलती रहती है। इसके लिए हम आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं मैडम जी
0: हम
2: आपका।
0: भी
2: और
0: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमारे कार्यक्रमों की सराहना करते हैं, और कुछ परिवर्तन चाहते हैं हमारे कार्यक्रमों में।
2: परिवर्तन तो मैडम जी कर दिए आपने, स्वयं ही कर दी है, और सब अच्छे परिवर्तन किए मैडम जी। अच्छा लग रहा है, ये पहले संडे को होता था ये प्रोग्राम, फर्स्ट उसको तो अब ट्यूजडे को कर दिया आपने, तो
0: जी
2: अच्छा
0: जी
2: कर दिया। अभी तो प्रोग्राम अच्छे हैं मैडम जी, सब कोई ऐसी बात नहीं, सब अच्छे प्रोग्राम है। तो आप देख सके खुद भी इतने अच्छे कर दिए प्रोग्राम
0: बोलने की
2: की
0: जरूरत
2: बोलने
0: नहीं
2: की
0: है
2: बोलने की जरूरत नहीं है। और मैं तो समझता हूँ कि एक धर्मशाला आकाशवाणी धर्मशाला दिन दोगुनी रात चौगुनी करे मैडम जी। हम तो
0: जी।
2: 94-95 से सुनते आ रहे हैं प्रोग्राम आकाशवाणी धर्मशाला का, और इसने बहुत ही तरक्की की है मैडम जी,
0: जी
2: ऐसी बात नहीं है ना जी। तो
0: चलिए,
2: मैं
0: अब
2: एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ मैडम जी, आपका और समस्त आकाशवाणी परिवार का मैं धन्यवाद करता हूँ।
0: शुक्रिया जी। श्रोताओ, 8:51 और 36 सेकंड हो गए हैं और बहुत कम समय हमारे पास बचा है, और आप हमें कॉल करके अपने संबंध में, कार्यक्रमों के संबंध में बता सकते हैं। हेलो जी, कॉल कट गई है, कोई बात नहीं, हम बिल्कुल इंतज़ार करेंगे।
1: पवन, आगे बात करें तो युवा मंच में भी हमने काफ़ी बदलाव किए हैं। जैसे सोमवार में हमने शुरू किया है नई उड़ान।
0: जी, तो इसमें भी हम नई नई हस्तियों को शामिल करते हैं, खेल के क्षेत्र से ले लो, चाहे किसी भी क्षेत्र से
1: इसमें
0: लो
1: कोई युवा साथी ने कुछ अच्छा किया हो, चाहे
0: बिल्कुल।
1: खेल के मैदान में हो या कोई पढ़ाई के मैदान में।
0: जी बिल्कुल, अब जैसे अभी पीछे जैसे कोई HS अधिकारी हैं, छोटी उम्र में उन्होंने उपलब्धि हासिल की है, तो हम इस तरह के नए नए लोगों को अपने प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे युवाओं को जो है प्रेरणा मिल सके। हेलो,
2: हेलो मैम, नमस्कार,
0: नमस्कार जी,
2: राज कुमार बोल रहा हूँ मैम,
0: कहाँ से बोल रहे हैं
2: गढ़वाड़ा से।
0: जी, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रमों के संबंध में।
2: मैम आपके कार्यक्रम तो बहुत अच्छे हैं, कि इसका थोड़ा टाइम बढ़ा दे तो चलो, कुछ श्रोता जो है लाइन पे लगे है ही रह जाते हैं, उनका नंबर
0: जी,
2: लेकर
0: किस कार्यक्रम का
2: आप और हम जो थोड़ा ज्यादा हो जाए तो चलो, कुछ श्रोताओं को बात करने में और मिल जाता है, थोड़ा
0: जी
2: समय
0: जी
2: आधे
0: जी हम
2: घंटे
0: अपने
2: निकल जाए, आधा घंटा
0: श्रोताओं
2: बस निकल जाता है,
0: अपने
2: आधा
0: श्रोताओं की
2: घंटा
0: दिल की
2: तो
0: बात
2: आराम
0: हम
2: से।
0: बिल्कुल समझ रहे हैं कि वो हम

0: ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं और बताना चाहते हैं अपने बारे में।
1: हाँ जी, बहुत दूर दूर से भी श्रोता कुछ कॉल करते हैं, वो भी रह जाते हैं, तो इसमें थोड़ा समय मिल जाए, जैसे 1.5 घंटे का भी हो जाए तो चलो थोड़ा होता है कि बंद चलो श्रोता अपनी थोड़ी जो रख रख लेते हैं, अपने जो भी शिकायत होती है, कोई सुझाव होता है तो
2: कोई बात नहीं,
1: आप।
2: आपके सुझावों को पर ध्यान दिया जाएगा।
1: हाँ जी, हाँ
0: जी,
1: जी,
0: और कुछ कहना चाहेंगे?
1: बस थैंक यू मैम, थैंक यू।
0: शुक्रिया। और जी, बात हो रही थी युवा मंच की।
2: हाँ, तो मंगलवार हमने एक बदलाव किया, उसमें हमने नया शुरू किया है सैर सपाटा।
0: बिल्कुल, हम हिमाचल के सारे ज़िलों में और पूरे इंडिया के पूरे जो हमारे
2: घर
0: जितने
2: बैठ के आप आनंद उठा
0: राज्यों में,
2: सकते
0: जी
2: हैं।
0: राज्यों में हम कहीं भी घूम के आते हैं और उसकी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। हेलो जी, कॉल कर चुकी है और बात हम युवा मंच की कर रहे हैं।
2: बुधवार का जो सेगमेंट हमने स्टार्ट किया उसका नाम है स्पोर्ट्स बीट्स।
0: जी, अब खेलों से भी तो जुड़ना पड़ेगा क्योंकि कहते ना, फिट है तभी इंडिया, हिट तभी होगा जब वो फिट रहेगा। तो स्पोर्ट्स की जानकारी हम अपने युवाओं को, श्रोताओं को पहुंचाते हैं।
2: इसी तरह वीरवार को जो प्रोग्राम स्टार्ट किया वो है रोजगार समाचार और ज्ञान जगत।
0: जी, रोजगार में तो पता ही है कि उसमें रोजगार से संबंधित युवाओं को जानकारी दी जाएगी। हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्कार जी, नाम बताएं अपना।
1: बबलू शर्मा जी नमस्कार, मैं जिला कांगड़ा गांव गुरपुरी से गोल्डी बात कर रहा हूँ,
0: जी
1: बबलू प्रसाद
0: गोल्डी
1: को
0: जी,
1: नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
0: गोल्डी जी, बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना
1: बिल्कुल
0: चाहेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, बात ये है कि प्रोग्राम तो आपके ठीक है, मगर ये है कि जैसे आप प्रोग्राम पेश करते हैं हिंदी गानों को, कोई भी धर्मशाला से मतलब प्रोग्राम जो भी पेश करते हैं, तो ये है कि जैसे फिल्में रखते हैं, तो आज देखो आज तो डिजिटल जमाना, तो अपनी मर्जी का गाना हमें फिर भी सुनने को नहीं मिलता, तो फिर हमारी मेहनत का क्या फायदा होता, तो इससे
0: जी
1: अच्छा कि गाना अपने श्रोता की मर्जी का ही होना चाहिए।
0: जी ये तो अब कार्यक्रम प्रमुख बैठे हैं, वो बता सकते हैं आपको।
2: ठीक है जी,
1: अच्छा,
2: आपके
1: देखो
2: सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा। और
1: ये तो सिर्फ रिकॉर्डिंग प्रोग्राम कर दो, या तो फिर ऐसा करो कि क्या बोलते हैं, ऑफ एयर में फोन उठा लेना और उसमें जो गाना वो श्रोताओं की मर्जी का सुनाया जाए।
2: जी,
0: जी, और कुछ कहना चाहेंगे?
1: नहीं, बाकी आपके प्रोग्राम ठीक है, धन्यवाद।
0: जी, शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें कॉल किया। जी, तो युवा मंच की बात हो रही थी, हमने रोजगार समाचार की बात की अपने युवाओं के लिए, वो हम पहुंचा रहे हैं ताकि रोजगार से वो अवगत हो सके।
2: उसके बाद पवन, एक नया बदलाव किया गया है शुक्रवार को, जिसमें है फिल्मी फ्राइडे।
0: जी, तो हम कोई भी फिल्म लेकर उसको रोस्ट करते हैं, मतलब अच्छे से जानकारी उसके बारे में, कि उसके जो
2: रोचक तथ्य।
0: तथ्य जो हैं वो उजागर करते हैं। और इसके बाद शनिवार का दिन आता है।
2: उसमें मेरी पसंद और हेलो जीनियस
0: जी, तो उसमें कोई भी उत्कृष्ट जो व्यक्ति
2: युवा
0: है,
2: है।
0: युवा है, उसको लाया जाता है और उससे बातचीत करवाई जाती है या उससे संबंधित कोई जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हेलो,
1: नमस्कार
0: नमस्कार
2: नमस्कार जी।
0: जी,
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से।
0: स्वागत आपका, बताएं क्या चाहते हैं आप कार्यक्रमों के संबंध में, कोई परिवर्तन या हमारे कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं उसकी जानकारी हमें दीजिए।
1: जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद।
0: जी
1: जी, तो मैं परिवर्तन में तो ये बाकी तो अच्छा है प्रोग्राम, लेकिन ये परिवर्तन ये है कि थोड़ा जो है आपके यहाँ से हो सके तो, जैसे कि अब डिजिटल का जमाना है, तो मैं एक तो चाहता ये कि जो धर्मशाला जो है, आकाशवाणी धर्मशाला, फेसबुक पे लाइव आना चाहिए, ताकि अब कोई हर आदमी जो है NewsOn ARF को डाउनलोड नहीं कर सकता, तो इसलिए फेसबुक पे अगर लाइव धर्मशाला सुनने को मिलेगा तो फिर इस जो है धर्मशाला का जो है पहुंच बढ़ेगी।
0: उसकी
1: और जैसे
0: खूबसूरती भी
1: कि
0: दिख
1: अच्छा,
0: रहेगी। जी
1: जी, तो बाकी फिर अगर फेसबुक पे अगर आप लाइव लाइव सुनने की माध्यम, अगर फेसबुक पे आप लाइव जोड़ेंगे तो लाइव अगर आपको सुना जाएगा और यूट्यूब पर भी लाइव सुना जाएगा, तो फिर धर्मशाला का भी नाम चलेगा। तो इससे जो है, क्योंकि जितने श्रोता कमेंट कमेंट करेंगे फेसबुक धर्मशाला को, तो भी उतना फायदा होगा
2: राकेश जी,
1: हमारे
2: हम
1: चैनल
2: इसका
1: को।
2: प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये शुरू हो जाएगा।
1: जी,
0: जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और बहुत बहुत धन्यवाद। इस संबंध में पक्का कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा। धन्यवाद जी। और श्रोताओं, बहुत कम समय हमारे पास बचा है, हम युवा मंच की बात कर रहे थे और
2: और रह गया रविवार। रविवार को एक नया कार्यक्रम स्टार्ट किया है वीकली पल्स,
0: जी
2: जिसमें कि हम राष्ट्र

0: अंतर्राष्ट्रीय जो खबरें
1: मुद्दे
0: होती
1: हैं,
0: हैं
1: हाँ जी, उस पर चर्चा करते हैं ताकि जो पूरे हफ्ते का
0: सामान्य ज्ञान बढ़ सके युवाओं का।
1: जी, और देखिए इससे पूरे हफ्ते भर की जो तैयारी है करंट अफेयर की वो इसी में हो जाएगी। तो श्रोताओ, आप अगली बार भी इस कार्यक्रम का हिस्सा ज़रूर बनिए, क्योंकि 8:58 और 19 सेकंड बिल्कुल हो चुके हैं और शायद अब एक कॉल शायद ले भी सकते हैं। हेलो
0: हाँ जी बोलिए
2: हेलो जी,
1: जी, नमस्कार, नाम बताएं और बताएं अपने बारे में।
2: नमस्कार। मैं रवि बात कर रहा हूँ पालमपुर से। आपका
1: जी स्वागत, और क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम में?
2: तो सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, और इसमें मैं सुझाव तो कोई नहीं दूंगा, मैं सुझाव सिर्फ कुछ रेगुलर श्रोताओं को देना चाहूंगा आपके। एक्चुअली
1: जी,
2: वो हर कॉल पे, मतलब हर बार ही कॉल सुन की आती है, मतलब नोट हर हफ्ते हर महीने आती है, मतलब बार बार हर डे आती है उनकी कॉल्स ना। तो मैं उनको मतलब यही सुझाव देना चाहूंगा कि बहुत से लोग हैं वो लाइन से लगे होते हैं एक्चुअली,
1: जी बिल्कुल,
2: वो थोड़ा अगर थोड़ा
0: दूसरों
2: गैप
0: को भी
2: में,
0: मौका
2: ज्यादा नहीं,
0: मिला है।
2: 15 दिन, हाँ 15 दिन का भी अगर गैप दें तो बाकी जो नए नए श्रोता है वो जुड़ सकते हैं आपके
1: जी,
2: साथ ना।
1: चलिए, अच्छी बात है, आपका सुझाव हमने नोट कर लिया और प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। समय हमारे पास तो सर बिल्कुल भी नहीं बचा, और अब हम इस कार्यक्रम से लेना चाहेंगे इजाज़त। धन्यवाद।

0: कार्यक्रम है आप और हम,
1: जिसमें होता है हम सब का संगम।
2: प्रश्न आपके, हमारे जवाब,
0: आपके सुझाव, हमारे बदलाव,
1: हम और आप या आप और हम
2: मिलकर होते हैं आपके संग।
3: आपके साथ से सफल होता है ये कार्यक्रम आप और

0: आप सुन रहे थे लाइव फोन इन कार्यक्रम आप और हम। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 9 बजे हैं, लीजिए सुनिए लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो धर्मशाला।
1: हेलो धर्मशाला, हेलो धर्मशाला।

0: जिंदगी में कभी भी परिस्थितियों को अपनी पहचान मत बनाइए, क्योंकि हर छोटी कोशिश आपको बड़ी मंजिल के करीब ले जाती है और जीत उसी की होती है जो प्रयास करना नहीं छोड़ता। श्रोता गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हाजिर है हेलो धर्मशाला कार्यक्रम लेकर, जिसमें बातें होंगी आपसे आप ही के बारे में। और आज के प्रोग्राम में आपसे बातचीत करने के लिए मैं स्टूडियोज में उपस्थित हो चुकी हूँ। मैं पवन शर्मा आपके साथ रहूंगी अब से लेकर पूरे 10 बजे तक। और हमसे जुड़ने के लिए आपको मिलाना होगा हमारे स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। ये नंबर है 01892224391, 01892224391। बहुत सारी नई पुरानी फिल्में आज के कार्यक्रम में हमने शामिल की हैं। इन फिल्मों में से आप किसी गीत की फरमाइश कर सकते हैं। फिल्में हैं आशा, अनोखी अदा, बैराग, बीवी हो तो ऐसी, चोरी चोरी, धनवान, नीलाकाश, हीरा पन्ना, मेरा गांव मेरा देश, याराना, शिकार, फरेब, अन्नाड़ी, बाजीगर, तेरी मेहरबानियाँ, रुस्तम, स्ट्रीट डांसर, टॉयलेट एक प्रेम कथा, तुम्हारी सुलू, सोनू के टीटू की स्वीटी। हेलो जी, ये बड़ी देर से हमें कॉल कर रहे थे और उम्मीद हम यही करेंगे कि ये हमें कॉल करें और कार्यक्रम का हिस्सा बने। हेलो हेलो,
1: चोरी चोरी फिल्म का सुना दो जी।
0: जी नाम बताएं अपना।
1: जगदीश चंद मतेर से बोल रहा हूँ जी।
0: जगदीश जी, बहुत दिनों के बाद आपने प्रोग्राम में कॉल किया है
1: जी।
0: जी चोरी चोरी में से कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज?

0: चले आते हो चोरी चोरी में गुना सुनाते हो।
1: टाइटल गीत सुनना चाहते हैं आप?
0: हाँ जी,
1: टाइटल गीत सुनना चाहते हैं?
0: हाँ जी
1: जी। तो बताएं, बरसातों में आजकल क्या किया जा रहा है, कैसे इस समय बिता रहे हैं आप?
0: आजकल बरसात हो रही है, बारिश हो रही है, आज तो धूप खिली हुई है।
1: जगदीश जी, आप हमेशा फोन जब हमारा अटेंड करते हैं, साथ ही में पीछे आप रेडियो में भी सुनते हैं, तो अगली बार से आपसे गुजारिश रहेगी, जब भी आप हमसे बात करें तो रेडियो बंद कर दें या रेडियो से थोड़ा दूर हो जाएं, तभी हम और आपको ध्यान से सुन पाएंगे।

0: हेलो जी नमस्ते।
1: हेलो नमस्ते जी, नाम बताएं अपना।
0: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
1: जी उज्जैन वासी, आपका स्वागत है। जय महाकाल।
0: जी जय श्री महाकाल, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया। और बताएं आज कौन सा गाना इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनना चाहते हैं?
0: याराना फिल्म का सुनवा दीजिएगा।
1: जी याराना में कौन सा सुनेंगे?
0: जी इसमें तो मुझे याद।
1: जी गाना इन्होंने याराना का बताया है और बिल्कुल हम इन्हें गाना सुनवाएंगे। और श्रोताओं फ़ोन लाइन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि बहुत दूर दूर के लिसनर्स हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये याराना जो है वो पुराने फिल्म का हम गाना सुनवाएंगे इस गाने के ख़त्म होने के तुरंत बाद।

0: होकर।
1: श्रुतो न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी आप हमें सुन सकते हैं। इसके लिए आपको न्यूज़ ऑन AIR ऐप डाउनलोड करना होगा और उस

नहीं, लाइव रेडियोज में जाकर आपको हमारे आकाशवाणी धर्मशाला पर हार्ट ड्रॉप करना पड़ेगा और आपकी फेवरेट लिस्ट में वो शामिल हो जाएगा और आप जब भी चाहें आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रम बिना किसी ब्रेक के सुन सकते हैं। और हेलो धर्मशाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपको मिलाना होगा हमारे स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर 01892224391।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। नाम बताएं अपना।
1: किशोरी लाल पंचरुखी।
0: जी किशोरी लाल जी, थोड़ी से ऊंचे स्वर में बोलिए। पंचरुखी से आप बोल रहे हैं, आपका स्वागत है। और कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में?
1: रानी फिर को सुना दो सारे, मेरा गांव मेरा देश का।
0: जी, इसमें से कौन सा सुनेंगे?
1: कोई भी।
0: जी, गाना इन्होंने फिल्म का चुनाव तो कर लिया है, गाना हम इनको इसी फिल्म में से सुनवाएंगे कुछ ही देर में।

हेलो, धर्मशाला प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और श्रोताओं, जो फिल्में आज के प्रोग्राम में हमने शामिल की उनके नाम एक बार फिर से दोहरा देते हैं। आशा, अनोखे अदा, बैराग, बीवी हो तो ऐसी, धनवान, नीलाकाश, हीरा पन्ना, शिकार, फरेब, अनाड़ी, बाजीगर, तेरी मेहरबानियाँ, रुस्तम, स्ट्रीट डांसर, टॉयलेट एक प्रेम कथा, तुम्हारी सुलू, सोनू के टीटू की स्वीटी।

0: हेलो।
1: हेलो पवन जी, नमस्कार। चलो
0: नमस्कार जी। हाँ जी राणा जी, बताएं आज कौन सा गाना सुनेंगे कार्यक्रम में?
1: बुलावा आया है, आज मंगलवार है तो माता जी को भेंट होनी चाहिए। फिल्म आशा आशा का भेंट सुना दीजिएगा।
0: जी बिल्कुल सुनवाते हैं, और प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस गाने के तुरंत बाद आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। जी
1: मैं एक बात कहना चाहता हूँ श्रोताओं से, एक श्रोता ने बड़ी शिकायत की है।
0: जी फ़ोन लाइन इनकी कट चुकी है, कोई बात नहीं। और गाने की फरमाइश इन्होंने भेज दी है,

मिनट होने को है, अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और शेष भाग के साथ हम हाजिर होंगे 9:30 पर। तो अब कुछ ही पलों में आपको ले चलेंगे आकाशवाणी शिमला प्रादेशिक समाचारों के लिए।

0: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 10 जुलाई को एडवांस स्टडीज शिमला में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और वंदे मातरम एक यात्रा नामक प्रदर्शनी का करेंगे शुभारंभ। प्रदेश भाजपा कोर समिति की बैठक आज शिमला में होगी आयोजित। राजनीतिक, संगठनात्मक और चुनावी मुद्दों पर किया जाएगा मंथन। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीपोर्ट और हेलीकॉप्टर सेवाओं को बढ़ा रही सरकार। कुल्लू, मंडी और चंडीगढ़ के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। प्रदेश में इस मॉनसून सीजन के दौरान वन विभाग ने 8000 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण का रखा लक्ष्य। और राज्य में मॉनसून की सक्रियता जारी। मौसम विभाग ने आज 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान एडवांस स्टडीज शिमला में 10 से 12 जुलाई तक सरदार पटेल की दृष्टि, एकीकरण, एकात्मक और संघवाद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 10 जुलाई को शामिल होंगे और संगोष्ठी सहित वंदे मातरम एक यात्रा नामक प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करेंगे। संगोष्ठी का उद्देश्य सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र निर्माण संबंधी विचारों का समकालीन संदर्भों में पुनर्मूल्यांकन करना है। प्रदेश भाजपा कोर समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज शिमला स्थित पार्टी कार्यालय दीप कमल में आयोजित होगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रदेश की राजनीतिक, संगठनात्मक और चुनावी मुद्दों पर मंथन होगा। इसके अलावा बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत बूथ सशक्तिकरण, जनसंपर्क अभियानों और तैयारियों पर भी मंथन किया जाएगा। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा व सहप्रभारी संजय टंडन सहित नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश के अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहेंगे। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर अब स्कूलों में बच्चों को भी उपलब्ध सुविधाओं से वंचित रख रही है। उनका आरोप है कि मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के द्योरी स्कूल भवन का उद्घाटन 7 महीनों से लंबित है, जहां शिक्षा मंत्री को भी उद्घाटन से रोका गया है और दो नालों के बीच स्थित स्कूल में जोखिमपूर्ण स्थिति में बच्चे पढ़ाई को मजबूर है।
1: व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में आलम यह है कि मंत्री अपने विभागों की योजनाओं का

0: शिलान्यास कर सकते हैं ना ही उद्घाटन कर सकते। मंडी जिला के अंतर्गत द्रंग विधानसभा क्षेत्र में भी देवरी का सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरी का था। स्कूल का भवन कई महीनों से बनकर के तैयार हुआ पड़ा है। मंत्री को जब मालूम पड़ा कि स्कूल का भवन तैयार है, उद्घाटन करना चाहिए, उन्होंने टूर प्रोग्राम छापा और निकल पड़े उद्घाटन करने के लिए। लेकिन उद्घाटन की पटिका के ऊपर से पर्दा जब को हटाते, उससे पहले मुख्यमंत्री जी के यहाँ से संदेश चला गया कि इसका उद्घाटन तो हम प्रियंका गांधी जी से करवाएंगे। अरे प्रियंका गांधी जी कब आएंगी मालूम नहीं। बच्चे चार कमरों में जिनको बैठने के लिए जगह नहीं है, बरसात के मौसम में बाहर भीगने के लिए विवश हुए पड़े।
1: प्रदेश में मॉनसून सीजन शुरू होते ही वन विभाग भी सक्रिय हो गया है, क्योंकि यही मौसम रहता है जब प्रदेश में पौधारोपण को एक बड़े अभियान के तौर पर चलाया जाता है। इस बार वन विभाग ने राज्य में 8000 हेक्टेयर भूमि पर 50 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश वन बल प्रमुख डॉक्टर संजय सूद ने बताया कि वर्ष 2030 तक राज्य के हरित आवरण को 32% तक बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में पौधारोपण अभियान में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभियान में जायका वानिकी परियोजना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
2: हिमाचल का जो हरित आवरण है वो लगभग 29.5% है, इसको बढ़ाने की हमारी चेष्टा है 32%। जो लक्ष्य हमने रखा है वो 7 से 8 हजार हेक्टेयर प्लांटेशन का है, जिसमें 50 लाख पौधे के आसपास रोपित किए जाएंगे। तो इसमें जो लगभग 60% जो पौधे हैं वो लोकल फ्रूट स्पीशीज के भी होंगे। इसमें से जो मेन टारगेट है लगभग 5000 हेक्टेयर का, वो लोकल जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं या महिला मंडल्स हैं उनके थ्रू हम इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरे प्रक्रिया में जो स्थानीय लोगों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीपोर्ट विकसित करने और हेलीकॉप्टर सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में कुल्लू, मंडी और चंडीगढ़ के बीच हवाई सेवाओं का कल मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। विस्तृत ब्यौरा इस रिपोर्ट में।
3: राज्य सरकार सभी जिला मुख्यालयों और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीपोर्ट विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल मंडी चंडीगढ़ और कुल्लू मंडी चंडीगढ़ हेलीकॉप्टर सेवाओं का वर्चुअल शुभारंभ किया। मंडी चंडीगढ़ सेवा उड़ान योजना के तहत संचालित होगी, जबकि कुल्लू मंडी चंडीगढ़ मार्ग पर सेवा हेरिटेज एविएशन उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ीधार हेलीपोर्ट से शुरू होने वाली इन सेवाओं से पहाड़ी क्षेत्रों की हवाई संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी, यात्रा का समय घटेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आपातकालीन सेवाओं को भी गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि हमीरपुर से जसकोट, कांगड़ा के रक्कड़ और पालमपुर तथा चंबा में हेलीपोर्ट निर्माण अंतिम चरण में है। ऊना, नाहन और सोलन में भी नए हेलीपोर्ट विकसित करने की योजना है, जबकि लाहौल स्पीति के रंगरीक में सेना के सहयोग से हेलीपोर्ट बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुदृढ़ कर पर्यटन, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मॉनसून सीजन के लिए सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें संबंधित विभागों को 2400 घंटे सहायता के लिए उपलब्ध होने के निर्देश है। प्राधिकरण ने आपात स्थिति में लोगों की सहायता के लिए राज्य आपदा सहायता नंबर 1070 और जिला आपदा सहायता नंबर 1077 जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर आपात स्थिति में सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। प्रदेश भर में बीते सप्ताह भर से मॉनसून सक्रिय रहा है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा का क्रम जारी रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और शिमला जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि 1 जून से अब तक सामान्य से 16% कम बारिश दर्ज की गई है।
4: 7 जुलाई को हमारा जो कांगड़ा जिला है, कांगड़ा के साथ मंडी, शिमला और सिरमौर जिले के कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। ऑरेंज अलर्ट हमने जो है भारी बारिश को ध्यान में रखते हुए जारी किया हुआ है। वहीं पे जो निचले मध्यवर्ती इलाके हैं, जैसे हमारा ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर या सोलन जैसे जिलों में भी मध्यम से भारी स्तर तक की बारिश की पॉसिबिलिटीज बनी है। बारिश का जो दौर है वो

0: को सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, रामपुर में बादल फटा, दो पंचायतों में तबाही, चंबा में चलती गाड़ी पर पत्थर गिरने से किशोरी की मौत। पंजाब केसरी के शब्द है, रामपुर में बादल फटा व सैंज में बाढ़ से तबाही, भरमौर में कार पर गिरा पत्थर, बच्ची की मौत। दैनिक जागरण का शीर्षक है, आज 9 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट। हिमाचल दस्तक ने खबर दी है, प्रदेश सरकार ने 20 जुलाई को बुलाई कैबिनेट की मीटिंग, जीएडी ने विभागों से मांगे एजेंडे। दिव्य हिमाचल की सुर्खी है, हिमाचल सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 18 आईएएस और 16 एचएएस ट्रांसफर। दैनिक भास्कर की एक खबर है, प्रदेश में साल दर साल घट रहा सेब का उत्पादन, इस बार केवल 2,18,00,000 सेब उत्पादन का अनुमान। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 10 जुलाई को एडवांस स्टडीज शिमला में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और वंदे मातरम एक यात्रा नामक प्रदर्शनी का करेंगे शुभारंभ। प्रदेश भाजपा कोर समिति की बैठक आज शिमला में होगी आयोजित, राजनीतिक, संगठनात्मक और चुनावी मुद्दों पर किया जाएगा मंथन। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीपोर्ट और हेलीकॉप्टर सेवाओं को बढ़ा रही सरकार, कुल्लू मंडी और चंडीगढ़ के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। प्रदेश में इस मॉनसून के सीजन के दौरान वन विभाग ने 8,000 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण का रखा लक्ष्य, और राज्य में मॉनसून की सक्रियता जारी, मौसम विभाग ने आज 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। अब इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ, हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार,
2: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान,
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
2: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए हेलो धर्मशाला कार्यक्रम का शेष भाग। हेलो,
5: मैं चिरमिरी कुरासिया कालदी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। जल्दी से अपने पसंद के गीत बताता हूँ, फिल्म का नाम है महबूबा, नहीं फिल्म का नाम है क्या बोलते हैं, अरे बता रहा फिल्म का नाम
4: फिल्में हैं हमारे पास फरेब, अनाड़ी, बाजीगर, तेरी मेहरबानियां, रुस्तम, स्ट्रीट डांसर, टॉयलेट एक प्रेम कथा, तुम्हारी सुलू, सोनू के टीटू की स्वीटी, शिकार, हीरा पन्ना, नीलाकाश, धनवान, बीवी हो तो ऐसी, बैराग।
5: धनवान का गाना है मैडम वो, ये आंखें देख के दुनिया भूल जाते हैं
4: जी। बताएं गाना तो आपने बता दिया, अपने बारे में कुछ बताएं हमें।
5: मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से निर्भान सिंह बोल रहा हूँ। मैं SECL में नौकरी करता हूँ, ड्यूटी पीरियड में हूँ, और ड्यूटी पीरियड में आपका कार्यक्रम में फोन किया हूँ कि नेटवर्क ना कटे
4: इसलिए जल्दी जल्दी से आपने फिल्म का नाम भी बता दिया, गाना भी बता दिया।
5: क्योंकि आपको आपने कहते हैं ना कि जल्दी बताइए क्योंकि नेटवर्क कट जाता है
4: जी, क्योंकि बहुत सारे लोग लगातार हमें कॉल मिला रहे होते हैं और इस प्रोग्राम की लिसनिंग इतने ज़्यादा है कि हर कोई चाहता है कि उनकी कॉल पहले लग जाए। तो चलिए कोई बात नहीं, आपने प्रोग्राम किया, आपकी पसंद का गाना आप तक पहुँचा रहे, शुक्रिया।

0: हेलो,
1: जी गुड मॉर्निंग
0: गुड मॉर्निंग। नाम बताएं अपना।
1: जी। योगेश जांगड़े पे मैं करा छत्तीसगढ़ से।
0: जी स्वागत। और गाना बता दीजिए।
1: फिल्म आशा से निकल गया क्या?
0: जी बिल्कुल, आशा का गाना हम सुनवा चुके हैं।
1: जी तो एक दो फिल्मों के नाम बता देंगे।
0: फिल्में हैं अनोखी अदा, वैराग, बीवी हो तो ऐसी, नीलाकाश, हीरा पन्ना, शिकार, सोनू के, टीटू की स्वीटी।
1: हीरा पन्ना से कोई भी प्यारा सा गीत सुनवा देंगे।
0: जी और करते क्या हैं आप?
1: जी
0: आप क्या करते हैं?
1: जी हमारा खेती बाड़ी का मूल काम है।
0: जी हीरा पन्ना में से कौन सा गाना सुनेंगे?
1: जी
0: हीरा पन्ना में से कौन सा गाना सुनेंगे? कोई
1: कोई भी प्यारा सा गीत सुनवा
0: जी,
1: दीजिए।
0: चलिए गाने इसमें से सुनवाएंगे। और खेती बाड़ी में आजकल क्या क्या लगा रखा है आपने?
1: अभी तो धान बुआई किए थे, बाकी 4-5 दिनों से लगातार बारिश हो रहा है।
0: तो धान किस तरह से लगाते हैं? उसकी उरी लगाते हैं या फिर इकट्ठा उसमें करके और उसकी गुड़ाई करते हैं किस?
1: वो सीड्रिल से ओनाई करते हैं
0: जी,
1: और कुछ किसान रोपाई भी करते हैं।
0: तो कौन सा बेहतर होता है, रोपाई करके या फिर जो इकट्ठे बीज खेतों में फेंक दिए जाते
1: देखिए
0: हैं?
1: रोपाई करने से थोड़ा सा बाद में कचड़ा वगैरह का परेशानी कम होता है, और बाकी बुआई में ओनारी में बाद में मजदूरों के माध्यम से कचड़ा को
0: घास
1: निकलवाना
0: बहुत
1: भी होता
0: ज़्यादा
1: है।
0: हो जाता है और उसकी पहचान करना भी शायद बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: जी
0: और जब हम रोपाई करते हैं तो रोपाई करते समय ऐसा होता है कि एक एक पौधा हम चुन चुन के लगाते हैं, तो उस समय घास भी निकाला जा सकता है। और जितनी दूरी पर वो लगना चाहिए पौधा, मुझे लगता है कि रोपाई के माध्यम से पैदावार अधिक होती है।
1: जी
0: और अगली बार जब आप उसकी गुड़ाई निराई जब करते हैं तो उसमें ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है।
1: जी जी बस वही जो है ना, कचरा वगैरह साफ करने का उतना दिक्कत नहीं होता, उसमें पहले से ही साफ हो जाता है।
0: तो जो ये धान के खेत हैं उसमें पानी कहाँ से लिया जाता है?
1: देखिए मूल रूप से तो बारिश का पानी ही निर्भर है, और अगर ज्यादा ही परेशानी हो तो नलकूप रहता है प्रायः सभी के पास।
0: तो
1: जी
0: माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैच द रेन जो है, वाटर हार्वेस्टिंग की
1: हाँ
0: बात कर रहे हैं, तो आपने भी कुछ इस तरह से अपने घरों की
1: जी
0: छतों पर
1: टॉप
0: लगा रखा है कि इसमें पानी इकट्ठा करके जल स्रोत बनाए जाएं?
1: छत पर तो नहीं है, मतलब हमारे यहाँ पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, बांध है बड़ा बड़ा, तो अगर कोई विशेष स्थिति आती है तो वो सिंचाई के लिए उपयुक्त हो जाता है।
0: जी, क्योंकि गांव में अक्सर लोग बड़ा सा तालाब बना देते हैं और जो
1: हाँ
0: पानी
1: जी
0: होता है
1: जी
0: बारिश का उसमें थम जाता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो हैंडपम्प के ज़रिए उस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। और वो
1: जी
0: जो पानी स्टोर किया जाता है, जो उसमें रखा जाता है, वो भूमि में जो पानी की सिंचित मात्रा है उसको भी बढ़ाता है, जो वाटर लेवल है उसको भी रेज करता है। तो मुझे लगता है कि आजकल बारिश का जो महीना चल रहा है उसमें पानी को जो कैच द रेन है या वाटर हार्वेस्टिंग की बात है, जिसमें मन की बात में की गई मोदी जी ने, तो उसको किया जाए तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि हमारी ज़मीन के नीचे जो जल स्तर है, क्योंकि हैंडपम्प के द्वारा या किसी और चीज़ों के द्वारा हम पानी निकाल तो लेते हैं, लेकिन जब उसका स्तर, जब कभी हैंडपम्प लगाया जाए तो स्तर कितना नीचे चला गया है वो हमें उस समय ज्ञान होता है कि पानी कितना नीचे चला गया है ना?
1: जी
0: जी, तो चलिए, प्रोग्राम में आपने कॉल किया, हीरा पन्ना फिल्म से गाना आपको सुनवा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

जी शो, तो आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपको मिलाना होगा हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर, और ये नंबर है 01892224391, 01892224391। ऐप के माध्यम से भी आप जुड़कर किसी भी राज्य से, किसी भी देश के कोने से आप हमें कॉल कर सकते हैं।

0: हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। नाम बताइए अपना।
1: मैडम जी, मैं पॉल बोल रहा हूँ जलंधर पंजाब से। गाना
0: स्वागत आपका। और बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज कार्यक्रम के माध्यम से।
1: मैडम सुना दीजिए, आशा फिल्म का सुना दीजिए
0: आशा फिल्म का
1: इंशाल्लाह।
0: गाना हम सुना चुके, और भी बहुत सारी फिल्में हैं हमारे पास। फिल्में हैं फरेब, अनाड़ी, बाजीगर, तेरी मेहरबानियाँ, रुस्तम, स्ट्रीट डांसर, टॉयलेट एक प्रेम कथा, तुम्हारी सुलू, सोने की टीटू की स्वीटी, शिकार,
1: शिकार का
0: नीलाकाश।
1: सुना दीजिए,
0: जी,
1: शिकार का सुना दीजिए। हाँ
0: और बताएं अपने बारे में कुछ हमें।
1: जी मैडम जी, हम इधर सिटी में रहते हैं, तो हमारी यहाँ सिटी में पेंट की शॉप है, जो घरों दीवारों को पेंट करते हैं।
0: तो
1: बिल्कुल
0: लोगों के घरों को आप खूबसूरत बनाते हैं रंगों से।
1: जी, हम घरों को खूबसूरत बनाते हैं रंगों रंगों से, आप दिलों को खूबसूरत बनाते हैं संगीत सुना के।
0: जी, और देखिए मिलकर जो है वो संसार चलता है। किस तरह से
1: बिल्कुल
0: रंग प्रकृति ने हमें बिखेरे हैं, उन रंगों को भी हमें देखना है। साथ ही में गाने भी हमने सुनने हैं, कार्यक्रम
1: बिल्कुल
0: भी
1: बिल्कुल
0: हमने प्रस्तुत करना है, और आप जो लोग काम कर रहे हैं उन तक मनोरंजन पहुंचाना है। और गीत संगीत जो है वो काम करने की रफ्तार को बढ़ा देता है, ऐसा मानते हैं आप?
1: ऐसा होता है जी, कई बार आदमी स्ट्रेस में होता है तो फिर गीत संगीत सुनता है ना, तो फिर उसका मन बढ़िया हो जाता, बिल्कुल फ्रेश हो जाता, ताजा हो जाता है फिर।
0: जी, तो किस तरह के गाने सुनना पसंद करते हैं आप?
1: गाने हमें पुरानी फिल्मों के कोई भी हो बहुत अच्छे लगते हैं हमें पुराने,
0: तो नए गाने नहीं सुनते?
1: नए भी सुनते हैं, लेकिन पुरानों में जो ऐसा है ना, या जो नए गाने हैं उसमें म्यूजिक बहुत ज्यादा उपजा होता है, तो पुराने गानों में म्यूजिक कम होता था, आवाज का ज्यादा दम होता था उसमें।
0: जी, अब रंगों की बात आई है तो आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह के रंग हमें अपनी दीवारों में इस्तेमाल करने चाहिए जो सालों साल तक रहें, मौसम
1: देखो
0: के
1: आजकल
0: हिसाब से?
1: तो
0: क्योंकि
1: बहुत,
0: कई जगह जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे धर्मशाला में हो गया, चेरापूंजी में हो गया, बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो ऐसे इलाकों में किस तरह के पेंट इस्तेमाल हमें करने चाहिए ताकि दीवारों में रंग जो है काफ़ी समय तक टिके रहें?
1: देखो मैं तो ये बात बोलता हूँ कि अभी ना आजकल मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत बहुत सारी कंपनियों ने ऐसे बनाए हैं कि आउटर पेंट है ना, जो बाहर करने वाले हैं वो वेदर शील्ड है, यानी वेदर के मुकाबले में होता है, कोई भी वेदर हो ना, किसी तरह का भी मौसम हो तो उसमें मौसम में वो परफेक्ट रहता है।
0: जी
1: आजकल
0: जी
1: सभी कंपनियों वालों ने ऐसे बनाया है, ऐसे मांगना चाहिए दुकानदार से जाके कि हमें वेदर प्रोडक्ट दो, जो किसी भी वेदर को, हर वेदर को प्रोडक्ट कर
0: जी
1: सके।
0: बहुत सारे कमरे ऐसे होते हैं, जैसे हमारे जो बाथरूम के आसपास की जो दीवारें होती हैं उसमें सीलन आ जाती है और पेंट की पपड़ियां जो हैं उतर जाती हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उसके लिए तो जैसा है ना, जो जो पपड़ियां उतरती है वो तो कई बार ऐसा होता है ना बाथरूम की साइड में अंदर, जो पानी लीकेज होता है कहीं ना कहीं से, तो
0: अगर लीकेज नहीं भी हो रहा हो तो उसके अलावा जो दीवारें हैं उसमें ऐसा
1: उसमें उसके इसको इसके अलावा ऐसा होता है ना।

0: दीवारों में जो कई बार दीवारें पुरानी हो जाती हैं, तो पुरानी दीवारें होने से भी ऐसे हो जाता है।
1: कई
0: तो
1: लोग
0: कई
1: ऐसा
0: बार
1: बोलते हैं कि जो प्लस्तर उस समय किया गया है दीवारों में, तो उसके जो सीमेंट है वो प्रॉपर नहीं सूखा है, उस पर पुट्टी कर दी गई है, तो ये
0: नहीं, ऐसे
1: मतलब
0: ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता मैडम।
1: ये
0: वो
1: कोई भ्रांति है
0: नहीं,
1: इस तरह से।
0: ऐसे नहीं है कुछ भी। वो तो सर गिले गिले के ऊपर हो जाए तो सर ज्यादा मजबूत रहता है।
1: तो आजकल कुछ इस तरह से भी चला है कि शीट लगाई जाती है, बोला पेंट से पहले, तो ये कितनी कामगार है हमारे लिए
0: वो
1: अगर
0: तो
1: हम।
0: कामगार है, शीट तो ज्यादा कामगार है। पहले ये जैसे अंदर शीट लग जाए ना, फिर ऐसा है ना, कई कई कई बार ऐसा होता है कि जो ईंटें बनती हैं, ईंटों में आजकल नमक डाल देते हैं लोग अपनी ईंटों को ज्यादा पक्का करने के लिए। तो उसमें पक्का करने के लिए जो नमक डालते हैं, तो नमक जो है ना, वो धीरे धीरे बाहर से रिश्ता है वे,
1: जी।
0: वो रिश्ता है। तो वे सीमेंट भी पहले को थोड़ा थोड़ा सीमेंट भी उखड़ता है, फिर पहले पेंट उखड़ जाता है, बाद में धीरे धीरे सीमेंट भी उखड़ने लग जाता है
1: चलिए,
0: वो।
1: इतनी अच्छी जानकारी आपने हमें दी, और गाना आपको शिकार फिल्म से सुनवा रहे हैं, प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मेहरबानी, शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार जी। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी भगवान जी स्वागत है। नाम लेने से ही मन बहुत तृप्त हो गया। और बताएं
1: धन्यवाद
0: कि
1: दीदी।
0: गाना कौन सा सुनेंगे?
1: दीदी फिल्म का नाम है बाजीगर और गाने के बोले दीवाना दिल हुआ दीवाना।
0: जी बाजीगर का गाना आपको सुनवाएंगे। बताएं क्या करते हैं आप?
1: दीदी खेती किसानी करते हैं और अभी हमारे इधर बरसात हो रही है दीदी। 12 दिन की फसल, 12-13 दिन की फसल भी हो गई है। हमने बो दी है दीदी फसल को, तो मक्का धान और सोयाबीन बोए हैं दीदी।
0: जी बाजीगर में जो गाने हैं वो हम आपको बता देते हैं। ऐ मेरे हमसफर, बाजीगर ओ बाजीगर, छुपाना भी नहीं आता, किताबें बहुत सी और तेरे चेहरे पे और ये काली काली आंखें। कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: दीदी पहला वाला सुना दीजिए।
0: ऐ मेरे हमसफर।
1: जी
0: जी गाना आपको सुनवाएंगे। और क्या क्या लगाया आजकल आपने खेतों में?
1: दीदी हमने मक्का सोयाबीन और धान बोया है और कुछ सब्जी भी बोई है दीदी अपने घर खर्चे के लिए।
0: जी तो मक्का जो आपने लगाया है, आजकल बाजारों में जो मक्का आ गया है, इस तरह से आपका भी तैयार है कि अभी आपने पौध
1: नहीं नहीं
0: लगाई
1: दीदी
0: है?
1: अभी तो हमने लगाया है। बाजारों में जो मक्का आया है वो 2 महीने पहले बोआ गया था दीदी गर्मी में, तो वो खाने के लिए जो रहते हैं ना वो मक्का आई है अभी।
0: जी तो जो अमेरिकन मक्की होती है जिसमें पॉपकॉर्न्स बनते हैं, उस तरह की मक्की भी आप
1: जी
0: लगाते हैं?
1: जी हाँ दीदी लगाते हैं, लेकिन हमारे इधर अभी 3 महीने बाद मक्का आएगी। 3 साढ़े 3 महीने लग जाएंगे आने में दीदी।
0: तो जो आम मक्का होती है और इस तरह का जो अमेरिकन पॉपकॉर्न है जिसमें वो बीज होते हैं जिससे पॉपकॉर्न बनते हैं, उसमें रेट के जो अंतर है वो बहुत अधिक होता है। अगर आपने कमर्शियल खेती करनी है तो इस तरह के बीज लगाए जा सकते हैं जिसे पैदावार करके आप ज़्यादा फायदा कमा सकते हैं।
1: जी हाँ दीदी हम ज्यादा पैदावार के मक्का बोते हैं क्योंकि वैरायटी वाली बोते हैं। 30 कुंडल, 28 कुंडल, 25 कुंडल से कम नहीं होती दीदी।

0: बाजार आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है इन्हें बेचने के लिए। हेलो जी जी अच्छी बात है। और हमारे जो माननीय मोदी जी हैं प्रधानमंत्री जी, वो उन्होंने भी किसानों के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने योजनाएं चला रखी हैं। मिनिमम जो उनका समर्थन मूल्य है उससे अधिक या उसके बराबर के रेट पर
1: दीदी, समर्थन मूल्य तो नहीं मिलता किसानों को कभी भी, जो समर्थन मूल्य उससे कमी रेट जाती है मंडियों में दीदी, कभी समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदते।
0: तो मंडियों में जो आपका सामान है वो समय से पहुंच जाता है, ऐसा तो नहीं कि?
1: बिल्कुल दीदी, समय पे पहुंचता है हमारा सामान।
0: चलिए अच्छी बात है। और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी फसलों को बहुत अच्छा मूल्य जो है वो मिल पाए। और प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद दीदी।

0: हेलो हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार जी, नाम बताइए अपना।
1: नमस्कार मैडम
0: जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं दर्द से प्रबोध कुमार, सासू जी तूने मेरी कदर ना जानी, बीवी जैसी।
0: जी आपकी सासू ने आपकी कदर नहीं जानी है?
1: जानी है मैम, बहुत अच्छी है वो। ऐसे गाना
0: तो गाना तो आपने बहुत सुना है इस तरह से। जी गाना इन्होंने बहुत अच्छा चुना है और गाना बिल्कुल सुनवाएंगे इस गीत के तुरंत बाद।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
4: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
3: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
4: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
3: वो कैसे?
4: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
3: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
4: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
3: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
4: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
3: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
4: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
5: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान, सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, कार्यक्रम बिल्कुल समाप्ति की ओर है। बता दें कि इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग हमें मिला सुनील शर्मा से, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। और अब मुझे यानी पवन शर्मा को दें इजाज़त, बस यही कहेंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुनते रहें FM धर्मशाला।

0: हेलो धर्मशाला, हेलो धर्मशाला,
1: अभी आप सुन रहे थे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो धर्मशाला। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों का कारवां। श्रोताओ गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कार्यक्रम है गीतों का कारवां और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सचिता। गीतों का कारवां में एक बार फिर से हम हाजिर हैं। आपको लेकर चलेंगे एक नए सफर पर। अब से लेकर ठीक 10:30 तक हम रहेंगे आपके साथ, लेकिन श्रोताओं आपके बिना गीतों का ये कारवां बहुत ही अधूरा है, तो आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सभी श्रोताओं से उम्मीद करते हैं कि वे हमारे साथ इस सफ़र पर चलेंगे। श्रोताओं वक्त की रफ्तार बहुत ही तेज़ है। कल जो नया था आज वो पुराना हो गया, लेकिन इस बदलती दुनिया में एक चीज़ है जो कभी नहीं बदलती, वो है हमारा एहसास। हमारे दिल की धड़कनें, हमारी तड़प, हमारी खुशी आज भी वही है जो बरसों पहले थी। आज के कारवां में श्रोताओं हम आपको ऐसे गाने सुनवाएंगे, दो ऐसे गाने, एक नया और एक पुराना, जिनमें दौर तो अलग है लेकिन भाव बिल्कुल एक जैसा ही होगा। तो चलिए हमारे साथ इस सफर को और भी खूबसूरत बनाते हैं। सफ़र की शुरुआत हम पुराने दौर के उस गीत के साथ करेंगे जहां पर पहली मुलाकात का जादू ही कुछ अलग होता था। किस तरह से होती थी वो पहली मुलाकात, इस गाने के माध्यम से आपको बता रहे हैं।

एक वो दौर था श्रोताओं, जब मुलाकात से पहले कई दिनों तक धड़कनें तेज रहती थी और मिलने के लिए जब दिल धड़कता था, वो दिन आता था तो उस दिन की बात ही कुछ अलग होती थी, क्योंकि उस समय शब्दों से ज़्यादा खामोशी बात करती थी। लेकिन बात करें आज के दौर की, तो आज के दौर की मुलाकात कुछ ऐसी होती है। आजकल के दौर की जो पहली मुलाकात होती है, उसमें तैयारियां बहुत दिनों से होती हैं और आजकल की मुलाकात में झिझक कम और उत्साह और प्लानिंग ज़्यादा होती है। तो श्रोताओं, आप खुद ही सुन लीजिए।

आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों का कारवां। और आज के इस सफर की हम सफर मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त सचिता। और अब हम बात करेंगे आंखों की। पुराने दौर में आंखों से प्यार का इजहार कुछ इस तरह से होता था।

पुराने जमाने में श्रोतो हम सभी जानते हैं कि मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, उस समय आंखों का इशारा ही इजहार माना जाता था। अब दौर बदल गया है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मोहब्बत वही है, आंखों की गहराई वही है। आज भी आंखें उसी एहसास को झलकाती हैं,

कार्यक्रम गीतों का कारवां इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। नए और पुराने दौर के गाने आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं। दौर चाहे अलग हो लेकिन गानों में भाव एक जैसा ही है। एक और खूबसूरत सा गीत आपको सुनवा रहे हैं।

तो दोस्तों, समय की सुइयां आगे बढ़ रही हैं और हमारे गीतों का कारवां का ये पड़ाव अब यहीं पर थमता है। आज हमने आपको दो अलग अलग दौर के गाने सुनवाए। हमने देखा कि कैसे दौर बदल गए, बातें बदल गई, पर जो एहसास था वो आज भी वही है और कल भी वही था। साज बदल जाते हैं, गाने बदल जाते हैं, पर दिल की धड़कनें आज भी वही पुरानी भाषा बोलती है। उम्मीद है कि इस सफ़र में आपने भी अपनी किसी खास को ज़रूर याद किया होगा।

0: हम चलते।
1: तो श्रोतों, मैं भी चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूंगी कि प्यार का वो एहसास जो आज भी हमें जोड़कर रखता है, उसे कभी फीका न पड़ने दें। चाहे आज का दौर हो या कल की यादें, जज्बात हमेशा जिंदा रहने चाहिए। आज के इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए श्रोताओं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी दिन इसी कार्यक्रम में होगी आपसे मुलाकात, एक नई कहानी और नए गानों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों का कारवां। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम पहाड़ों के सुर।

हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर लेकर हाजिर हैं हम और श्रोताओं, आज मैं हूं आपके साथ रीना। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अशोक चौधरी के गाए इस लोक भजन के साथ।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं वर्षा कटोच की आवाज में ये लोकगीत।

0: हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।
1: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
2: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
1: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
1: वो कैसे?
2: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
1: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
2: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
1: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
2: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
1: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
2: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
3: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति प्रदीप परदेसी व साथियों की आवाज में।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: धनी राम की आवाज में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 11 बजने को है। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान एडवांस स्टडीज शिमला में 10 से 12 जुलाई तक सरदार पटेल की दृष्टि, एकीकरण, एकात्मक और संघवाद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 10 जुलाई को शामिल होंगे और संगोष्ठी सहित वंदे मातरम एक यात्रा नामक प्रदर्शनी का भी शुभारम्भ करेंगे। संगोष्ठी का उद्देश्य सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र निर्माण संबंधी विचारों का समकालीन संदर्भों में पुनर्मूल्यांकन करना है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर अब स्कूलों में बच्चों को भी उपलब्ध सुविधाओं से वंचित रख रही है। उनका आरोप है कि मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के दियोरी स्कूल भवन का उद्घाटन 7 महीनों से लंबित है, जहां शिक्षा मंत्री को भी उद्घाटन से रोका गया है। उन्होंने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्कूल भवन के उद्घाटन के लिए सरकार राजनीति कर रही है, वहीं दो नालों के बीच स्थित स्कूल भवन में जोखिमपूर्ण स्थिति में बच्चे पढ़ाई को मजबूर है। आज कारगिल युद्ध के नायक और परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा का शहादत दिवस है। वर्ष 1999 में कारगिल के पॉइंट 4875 पर तिरंगा फहराते हुए उन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए थे। हिमाचल के वीर सपूत कैप्टन विक्रम बत्रा के शहादत दिवस पर उन्हें याद करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कारगिल की दुर्गम चोटियों पर कैप्टन विक्रम बत्रा का साहस और इतिहास स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। मातृभूमि के लिए उनका सर्वोच्च बलिदान हर पीढ़ी को देश सेवा के लिए प्रेरणा देता रहेगा। प्रदेश में मॉनसून सीजन शुरू होते ही वन विभाग भी सक्रिय हो गया है, क्योंकि यही मौसम रहता है जब प्रदेश में पौधारोपण को एक बड़े अभियान के तौर पर चलाया जाता है।

0: इस बार वन विभाग ने राज्य में 8000 हेक्टेयर भूमि पर 50 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश वन बल प्रमुख डॉक्टर संजय सूद ने बताया कि वर्ष 2030 तक राज्य के हरित आवरण को 32% बढ़ाने का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में पौधारोपण अभियान से लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभियान में जायका वानिकी परियोजना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
1: हिमाचल का जो हरित आवरण है वो लगभग 29.5% है, इसको बढ़ाने की हमारी चेष्टा है 32%। जो लक्ष्य हमने रखा है वो 7 से 8 हजार हेक्टेयर प्लांटेशन का है, जिसमें 50 लाख पौधे के आसपास रोपित किए जाएंगे। तो इसमें जो है लगभग 60% जो पौधे हैं वो लोकल फ्रूट स्पीशीज के भी होंगे। इसमें से जो मेन टारगेट है लगभग 5000 हेक्टेयर का, वो लोकल जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं या महिला मंडल्स हैं उनके थ्रू हम इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरे प्रक्रिया में जो स्थानीय लोगों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।
0: प्रदेश में जारी मानसून सीजन को देखते हुए सोलन जिला में निजी विकास के लिए पहाड़ियों के कटान निर्माण गतिविधियों अथवा गैर आवश्यक कार्यों के लिए सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर 31 अगस्त तक प्रतिबंध रहेगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष मनमोहन शर्मा ने मानसून सीजन में सुरक्षा और आपदा से बचाव के दृष्टिगत ये आदेश जारी किए हैं। हालांकि आपदा प्रभावित अधोसंरचना के पुनरुद्धार, सड़क निर्माण, जलापूर्ति, विद्युत जैसी आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति और आपातकालीन सुविधाओं के कार्यों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। प्रदेश भर में बीते सप्ताह भर से मानसून सक्रिय रहा है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा का क्रम जारी रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और शिमला जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि 1 जून से अब तक सामान्य से 16% कम बारिश दर्ज की गई है।
2: 7 जुलाई को हमारा जो कांगड़ा जिला है, कांगड़ा के साथ मंडी, शिमला और सिरमौर जिले के कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। ऑरेंज अलर्ट हमने जो है भारी बारिश को ध्यान में रखते हुए जारी किया हुआ है। वहीं पे जो निचले मध्यवर्ती इलाके हैं, जैसे हमारा ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर या सोलन जैसे जिलों में भी मध्यम से भारी स्तर तक की बारिश की पॉसिबिलिटीज बनी है। बारिश का जो दौर है वो लगातार 1 वीक तक रुक रुक के सभी जिलों में हमें देखने को मिलता रहेगा। इस साल हमें 1 जुलाई को मानसून देखने को मिला है और 1 जुलाई के बाद से लगातार जो है मानसून काफी एक्टिव बना हुआ है। अभी यानी कि 1 जून से लेकर के 5 जुलाई तक अगर बात करें तो इस बार हमें अभी तक 115 मिलीमीटर बारिश मिली है, जो कि अराउंड 16% कम बारिश है।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3:00 PM। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। कार्यक्रम का पहला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं बलदेव सांख्यान की आवाज में।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: उमा शंकर व साथियों को आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अगले लोकगीत में।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: गूंज पहाड़ों की कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। पिंकू देवी की आवाज में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम का अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं ओम प्रकाश व साथियों की आवाज में।

आधारित कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की अगली कड़ी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
1: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं
1: जी।
2: तो अजीत जी, क्यों न इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
1: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की
2: जी।
1: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
2: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने, बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
1: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया
2: जी।
1: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए।
2: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता
1: जी। तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की
2: जी।
1: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी
2: जी। सचमुच, तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
1: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है
2: जी।
1: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
2: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है, लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है
1: जी। हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
2: बिल्कुल,
1: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
2: जी।
1: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं
2: जी। ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृ वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए
1: जी। विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे

0: बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
1: जी,
0: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
1: श्रोताओं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं, जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं,
0: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
1: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
0: एक बात और श्रोताओं, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
1: जी,
0: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
1: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
0: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है, तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।

0: Your attention, please. Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention, please. Air India announces.
1: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
2: हाँ बेटा।
1: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
2: यहीं कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते हैं।
1: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
2: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरीनाम जाना पड़ गया था।
1: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
2: हो सकता है कि...
3: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
2: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
3: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊंगा। आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
2: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिली। और श्वेता, ये है अब्दुल कादिर मोहम्मद फादल।
1: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुंचा दो।
2: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो। आओ
4: आओ, चलो आओ।

0: मौका दे। तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है, जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है।

0: काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
1: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
0: हाँ
1: पापा पापा, वो देखो नील नदी है ना।
2: हाँ वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
0: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
2: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
0: नहीं अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा मैं चलता हूँ।
2: अच्छा अच्छा।

0: कादिर अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, क्या कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ जाना है।
1: फिर
2: ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।
1: हाँ।

0: पापा, यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है।

0: इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
1: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं।
2: चलिए पापा।
0: यहाँ गीजा में तीन पिरामिड हैं। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
2: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
0: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
2: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
0: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरो के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
1: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरो की कब्रें हैं।
0: कब्रें नहीं है, शव रखे जिन्हें ममी कहते हैं। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
2: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
0: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
1: कादिर, ममी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
0: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
1: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की ममी बनाई जाती थी?
0: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था।
1: ओ,
0: इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
2: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
0: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
2: किस लिए?
0: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
1: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
2: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
1: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
2: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
1: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
2: तो फिर चलिए।
1: हाँ तो आओ, चलो आओ, खा दे रहा हूँ।

0: कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल, देखिए काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती है।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही, तो बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: ओह शुक्रिया, मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
1: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
0: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहेली पूछो।
2: पूछिए।
0: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है, बताओ कैसे?
2: हर साल पानी चढ़ता है।
0: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
1: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
0: हाँ,
1: अजीब सी बात है।
0: हार गए?
2: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
0: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
1: अच्छा, वो कैसे?
0: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
2: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर...
1: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
0: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
2: कितनी बुरी बात है।
1: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
0: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
2: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
1: हाँ बेकादर, इस सवाल का जवाब दो तो जाने।
0: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं। मैं पूछकर बताऊंगा।
2: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
1: वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
0: इस स्टीमर से तो नहीं, कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
2: वहां क्या है अंकल?
0: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
1: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
0: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
1: आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर?
0: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवा कर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
2: पापा, मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
1: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
2: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
0: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली पूछ दो तो।
2: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार,
5: नमस्कार।
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजे हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सचिता। सैनिक भाइयों, शुरुआत हम कर रहे हैं साजन का घर फिल्म के इस खूबसूरत से गीत के साथ। इस गीत में आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
4: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
5: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
6: फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सैनिक भाइयों, जिगर फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। अभिजीत और साधना सरगम की आवाजों में

नाराज फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। कुमार सानू ने इस गीत को गाया था। सैनिक भाइयों, अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अंदाज से ये अगला गीत।

0: सूरत से ये पंक्तियाँ आप सभी श्रोता सखियों के लिए और इन्हीं के साथ हाजिर हैं हम कार्यक्रम आपका अपना पसंदीदा लेकर जिसका नाम है सुनो सखी। और आज के इस खूबसूरत सफर में मैं हूँ आपकी हम सफर, आपकी अपनी रेडियो सखी रीना। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो महिला महफिल जमने को तैयार है सखी, और इस महफिल में चार चांद लगाती हैं आपकी फ़ोन कॉल्स, और कितनी बेसब्री से आप इस कार्यक्रम का इंतज़ार करती हैं ये आपकी फ़ोन कॉल से ही हमें पता चल जाता है, क्योंकि अभी तक कार्यक्रम शुरू भी नहीं हुआ होता है और सखियां कॉल मिलाने लग जाती हैं। तो फिर भी जल्दी से अपने स्टूडियो का नंबर एक बार फिर से बता देती हूँ उन श्रोता सखियों के लिए जो अभी इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं और जिन्हें कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमारा फ़ोन नंबर नहीं पता। तो स्टूडियो का नंबर है 01892224391, जी हाँ 01892224391। और आज की जो हमारी चुनिंदा फिल्में हैं जिनके गीत आप इस कार्यक्रम के माध्यम से सुन सकती हैं, वो फिल्में हैं 3 इडियट्स, बिच्छू, चांदनी, दबंग, दिल है तुम्हारा, हीना, कभी अलविदा ना कहना, कच्चे धागे, कर्मा और राजा हिंदुस्तानी। तो सखी ये है हमारी आज की फिल्में, और देखते हैं आज की हमारी पहली कॉलर कौन है। हेलो।
1: हेलो
0: जी नमस्कार।
1: नमस्ते मैम जी।
0: जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैम अंजू बोल रही दार से।
0: जी अंजू जी कैसी हैं आप?
1: बस बढ़िया मैम।
0: और क्या कुछ चल रहा है आजकल?
1: बस मैम घर का काम कर रही हूँ।
0: घर का काम कर रही हैं अभी तक?
1: जी लगी रहती मैम।
0: जी बहुत अच्छी बात है, खुद को बिजी आप रखती हैं।
1: जी
0: मौसम
1: आप
0: किस
1: कैसे?
0: जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। और मौसम किस तरह का है आपके डार्ड में?
1: अभी तो धूप लगी हुई है, बादल भी हैं, धूप भी है। अच्छा है मौसम।
0: अच्छा है। और गर्मी?
1: गर्मी भी है मैम।
0: बरसात के मौसम की तो गर्मी बहुत
1: ऐसा ही
0: ही
1: होता है, थोड़ा ठंडी होती है सुबह शाम, फिर दिन में धूप आती है तो गर्मी लग जाती है।
0: जी हाँ बहुत तेज़ धूप लगती है, गर्मी लगती है, चिपचिपाहट वाली गर्मी है ना।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: जी अंजू और बताइए क्या कुछ कहना चाहती हैं?
1: बस मैम कुछ नहीं, ऐसे ही चल रही है दिनचर्या, और तो काम करो, बच्चों को भेजो, यही है।
0: एक जैसी रूटीन
1: मैंने
0: लगती है
1: काफी दिन के
0: कभी?
1: बाद मैम फोन किया, कम से कम 1-1.5-2 महीना है।
0: जी ऐसा क्यों?
1: ऐसा ही मतलब कभी फोन नहीं लगता था, फिर बिजी रहती थी। आज मैंने सोच के रखा हुआ था कि आज जल्दी से फोन लगाऊंगी और बात करूंगी।
0: और जल्दी से आप कब से ट्राई कर रही थी?
1: हाँ जी
0: जी तो बताइए अंजू आज कौन सी फिल्म का गीत सुन रही हैं?
1: मैम चांदनी का सुना दो, रंग भरे बादल से
0: टाइटल ट्रैक इसका आप सुनना चाहती
1: जी।
0: हैं? बहुत ही खूबसूरत गीत चुना है आपने। और चलिए
1: इसकी
0: आपको
1: जो फिल्म है ना मैम, ये फिल्म जो है मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, और जब भी लगती है ना मैं जरूर देखती हूँ।
0: जी कई कई फिल्में जो हैं वो बहुत ही मतलब फेवरेट होती हैं, और जब भी लगती हैं तो ज़रूर देखने का मन करता है, बोर नहीं होते हम, है ना।
1: नहीं नहीं मैम, ये तो पुरानी पुरानी फिल्में जो है ना, ये मतलब बड़ी ही अच्छी लगती है।
0: जी तो आपकी फेवरेट फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट पर है अंजू, साथ में सुनते हैं, और शुक्रिया फ़ोन करने के लिए।
1: थैंक यू।

0: हेलो,
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी। कौन बात कर रही हैं
1: कुछ नहीं मैडम जी, करते हैं।
0: जी? नाम बताइए अपना।
1: मैं तन्नू बोल रही हूँ नगरी से मैडम
0: जी तनु, नगरी से क्या करती हैं?
1: जी। बस घर का काम करे, बच्चे संभाले, और गर्मी बहुत ज्यादा है मैडम जी।
0: जी गर्मी बहुत है ना, लेकिन बारिश भी हो रही है उस बीच में।
1: हाँ, कल बारिश हुई थी तो मौसम ठंडा हो गया था, आज तो बहुत गर्मी है मैडम जी।
0: जी, और बाहर जब निकल रहे हैं तो पसीने से लथपथ हम हो रहे
1: हाँ,
0: हैं।
1: खाने को भी बहुत, खाना पकाने को दिल नहीं करता, इतनी गर्मी है ना।
0: जी, खाना बनाने का दिल नहीं करता लेकिन भूख तो लगती है ना, बनाना ही पड़ेगा।
1: हाँ, बच्चों के लिए, और कोई आ जाए घर में, गैस पे खाना तो पड़ता है ना।
0: जी बिल्कुल तनु। और कौन सा मौसम अच्छा लगता है वैसे आपको?
1: मैडम जी मुझे ना सर्दियों का मौसम ना बहुत अच्छा लगता है।
0: सर्दियों का मौसम?
1: हाँ, बहुत अच्छा लगता है, जितना मर्जी क्या बिजी हो कोई परवाह नहीं है। हाँ
0: चलिए,
1: जी
0: सबकी अपनी अपनी पसंद होती है ना
1: मैडम जी। मैडम
0: जी। और तनु, कौन सी फिल्म का गीत सुन रही हैं आज? कार्यक्रम सुनो सखी में।
1: जी, हिना फिल्म का सुना दो।
0: हीना फिल्म का कौन सा गीत?
1: मैं हूँ खुशी रंग हिना।
0: जी, आप भी टाइटल ट्रैक सुनना चाहते हैं?
1: हाँ जी मैडम जी।
0: जी, अच्छा लगता है ये गीत आपको?
1: हाँ अच्छा लगता है, इसके फिल्म के गाने ना बहुत अच्छे हैं
0: बहुत
1: मैडम
0: अच्छे
1: जी।
0: हैं, सभी गीत बहुत अच्छे हैं ना।
1: हाँ जी मैडम
0: तो
1: जी।
0: तनु, आपकी फेवरेट फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट पर है, साथ में सुनते हैं।
1: ओके
0: शुक्रिया फ़ोन करने के लिए।

0: जी हाँ, हिना फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं सखी, और कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ रीना, और देखते हैं हमारी अगली श्रोता सखी कौन सी हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार जी।
1: हाँ जी
0: जी, नाम बताइए अपना।
1: दर्शना कुमारी।
0: दर्शना जी, कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मुकेरिया, हर से मानसर से।
0: मुकेरिया से बात कर रही हैं। मुकेरिया का कैसा मौसम है आज?
1: बहुत गर्मी मैडम।
0: गर्मी है तो किस तरह ध्यान रख रही हैं आप?
1: ध्यान क्या रखना, ऐसे ही गर्मी में बैठना पड़ता है।
0: गर्मी में बैठना पड़ता है, पंखे के नीचे एसी के पास नहीं बैठना पड़ता?
1: हाँ
0: जी,
1: एसी तो नहीं लगाते दिन को, रात को लगाते हैं। दिन को तो पंखे के नीचे ही बैठते हैं, दुकान पे बैठते हैं ना।
0: अच्छा अच्छा,
1: दुकान है ना हमारी।
0: साथ साथ में कार्यक्रम भी सुने जाते हैं?
1: हाँ जी, हाँ जी मैडम जी।
0: जी तो कैसे लगते हैं कार्यक्रम?
1: बहुत बढ़िया।
0: बहुत बढ़िया। बहुत
1: मंगलवार का इंतजार ही करते रहते हैं पूरा हफ्ता।
0: जी, सिर्फ इसी कार्यक्रम में फोन करती हैं?
1: हाँ जी,
0: सिर्फ इसी कार्यक्रम में आप फोन करती हैं दर्शना जी? हाँ जी,
1: सखी से भी कौन सी है जी?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, सुनो सखी, और मैं पूछ रही हूँ कि क्या आप सिर्फ इसी कार्यक्रम का इंतजार करती हैं?
1: इसी का ही?
0: अच्छा जी,
1: आपके आपके मैं इंतजार करती हूँ, आपके प्रोग्राम का ही।
0: अच्छा जी, तो आज कौन सी फिल्म का गीत सुन रही हैं? आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है, बात आपकी हो रही है।
1: हाँ जी,
0: कौन सी फिल्म?
1: कच्चे धागे।
0: जी, कच्चे धागे का कौन सा गीत?
1: कच्चे धागे से बांध दिया जाए
0: जी।
1: टाइटल गाना।
0: अच्छा ठीक है, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत।
1: हाँ जी,
0: साथ में सुनते हैं, और शुक्रिया फोन करने के लिए।
1: हाँ ओके मैडम जी, शुक्रिया, थैंक यू।

0: इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा।
1: हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो, हाँ जी,
2: नमस्ते मैडम जी, मैं साक्षी बोल रही हूँ नूरपुर से।
1: जी साक्षी, नमस्ते जी, कैसी हैं आप?
2: ठीक हूँ, आप बताओ, आपसे बात हो रही तो बिल्कुल ठीक हो गई अब।
1: अच्छा, तो पहले क्या हुआ था आपको?
2: पहले पता क्या, गर्मी बहुत है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है ना।
1: अच्छा,
2: तो मेरे फोन की बैटरी भी काम में, मतलब मेरी बात हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बैटरी खत्म होने वाली है ना इसलिए।
1: अच्छा, इतना इंतजार कर रही थी बात करने का?
2: बड़ा इंतजार होता है मेरे
1: जी,
2: आपसे बात करने तो बड़ा मजा आता है मेरे को ना, इतना मजा कि मैं मैंने सोचा बात ही कर लेती हूँ, लाइट चली गई तो क्या हुआ।
1: हाँ, लाइट चलेगी तो क्या हुआ, फोन में बैटरी तो है ना।
2: बैटरी तो है, थोड़ी मती बचा के रखती हूँ आपसे बात करने के लिए।
1: जी बहुत अच्छी बात है, और शुक्रिया साक्षी इसके लिए। कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगी, जल्दी से बता दीजिए।
2: कौन कौन सी फिल्म है
1: जी? फिल्में हैं राजा, हिंदुस्तानी, कर्मा, कभी अलविदा ना कहना, दिल है तुम्हारा, दबंग, बिच्छू, थ्री इडियट्स।
2: दबंग फिल्म का,
1: दबंग फिल्म का गीत सुनेंगी आप?
2: हाँ जी।
1: कौन सा गीत?
2: कोई भी ना, अच्छा सा होना चाहिए कोई।
1: अच्छा सा
2: टाइटल सॉन्ग नहीं है कोई?
1: जी बिल्कुल, टाइटल सॉन्ग भी है तो वो सुनवाएं आपको।
2: टाइटल सुना दीजिए जी।
1: जी ठीक है, आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर है साक्षी, और साथ में सुनते हैं। शुक्रिया फोन करने के लिए।
2: जी
1: अपना ध्यान रखिए साक्षी, शुक्रिया।
2: हाँ जी, कोई नहीं
1: जी।

0: सजीव फोन इन कार्यक्रम घर, माफ कीजिए, सुनो सखी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और सखियों, आप भी कार्यक्रम में हमें कॉल कर सकती हैं। स्टूडियो का नंबर हैगा 01892224391। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते मैम जी।
0: नमस्ते जी, प्यारी सी आवाज़ किसकी है?
1: ये मेरी है मैम जी।
0: जी, नाम जानना चाह रही हूँ।
1: मेरा नाम है अनु।
0: अनु, कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं बात कर रही हूँ बिलासपुर।
0: बिलासपुर से पहली बार कॉल किया है अनु?
1: हाँ जी, हाँ जी मैम
0: जी। कैसे लगते हैं कार्यक्रम, सुन रही हैं?
1: यस मैम, काफी अच्छा लगता है।
0: अच्छा जी, और बताइए अपने बारे में कुछ।
1: बस मैम, अच्छा लगता है सब कुछ।
0: और आपकी जो ये मतलब बहुत चुस्त दुरुस्त आवाज़ है, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आपने

0: हमें कॉल किया।
1: अच्छा, थैंक यू मैम।
0: अपने बारे में बताइए ना कुछ, क्या करती हैं?
1: मैम मैं एक टीचर हूँ, बद्दी में बच्चों को पढ़ाती हूँ, छोटी क्लास वालों को। और अभी मैं बद्दी में करती हूँ वैसे जॉब, अभी मैं अपने ससुराल आई हूँ।
0: अच्छा,
1: हाँ जी।
0: छुट्टियाँ पढ़ी हैं अभी?
1: हाँ जी हाँ जी, बस 2 हफ्ते की छुट्टियाँ पड़ी हैं, फिर हमने बद्दी चल जाना है।
0: अच्छा, तो बद्दी का मौसम कैसा रहता है और क्या डिफरेंस रहता है यहाँ और वहाँ के मौसम में?
1: बहुत ज्यादा यहाँ पे काफी ठंड होती है, और बद्दी के मौसम बहुत ज्यादा लगो तो वहाँ पे तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है।
0: अच्छा।
1: हाँ जी
0: तो चलिए, मौसम के हिसाब से रहना पड़ता है ना।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: तो कौन सी फिल्म का गीत सुन रही हैं आज?
1: मैं सुनूंगी 3 इडियट्स का सॉन्ग।
0: थ्री इडियट्स का कौन सा?
1: हाँ जी,
0: ऑल इज वेल।
1: कोई सा भी।
0: नहीं, सभी गीत बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आपकी फरमाइश।
1: मैं कोई सा भी सुन लूंगी,
0: कोई सा भी,
1: ऑल इज वेल लगा दीजिए।
0: ऑल इज वेल।
1: हाँ जी
0: चलिए ठीक है, आपकी पसंद का गीत आपको सुनवा रहे हैं अनु, और शुक्रिया फोन करने के लिए। यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम, बाय।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
0: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है?
1: अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी।
0: बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: जैसे कि बहुत ही कम वक्त रह गया है, 12:55 और 24 सेकंड हो चुके हैं, और जल्दी से डायल करें स्टूडियो का नंबर 01892224391। हेलो,
7: नमस्कार मैम।
6: नमस्कार जी, कौन और कहाँ से बात कर रही?

0: हैं सविता
1: जी
0: जी।
1: सविता बोल रही हूँ मैम, रांगताल
0: जी जी
1: से।
0: सविता जी, पहचान ली आपको। जल्दी से बताइए क्या कर रही हैं और क्या कुछ चल रहा है आजकल।
1: जी कुछ नहीं कर रहे हैं, फ्री बैठे हुए हैं, गर्मी आज लग रही है थोड़ी।
0: गर्मी
1: हाँ
0: बहुत ज़्यादा है ना, और आपके साइड तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है
1: जी मैम।
0: जी। तो सविता जी जल्दी से अपनी फरमाइश आज बता दीजिए।
1: जी बिच्छू फिल्म का गाना सुनवा दीजिए मैडम, आखियां लड़ी बीच
0: दिल
1: बाजार।
0: टूटे टूटे हो गया।
1: हाँ जी मैम।
0: जी बिल्कुल, तो
1: और
0: सुनिए।
1: आप ठीक हो
0: हाँ जी
1: मैम?
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया हूँ, और आप सखियों से बातें करके और भी अच्छे हो जाते हैं, है ना
1: हाँ जी मैम,
0: जी। तो आपकी
1: हमें भी अच्छा लगता है मैम आपसे बात करके ना।
0: जी धन्यवाद सविता जी, और आपकी फरमाइश है आपके रेडियो सेट पर सुनते हैं। धन्यवाद कॉल के लिए।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू।

सखी इसी खूबसूरत गीत के साथ हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंत में। समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, और बहुत अच्छा लगता है आप सब सखियों के साथ जुड़ना, आपके साथ बातें करना और आपकी फरमाइश पूरी करना। और अब मुझे यानी रीना को दें कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति, इसी वादे के साथ कि फिर इसी कार्यक्रम में होगी आप सब सखियों से मुलाकात। तब तक स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, जुड़े रहिए हमारे साथ। हाय हाय, माफ़ी चाहूँगी उन कॉलर से जो इस समय फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि वक्त नहीं है कि आपसे बात की जाए। यही कहूँगी कि अगले मंगलवार ज़रूर समय से फ़ोन करें और अपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनें।

चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम को आपके घर द्वार तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग हमें दिया विकास पठानिया ने। कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है जितेंद्र पाल सिंह। प्यारी सखियों नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। एक बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित

0: के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में सुगमता आएगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिसे उन्होंने भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्र ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिन तांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का बिनतांग आदिपूर्णा सम्मान से सम्मानित किया जाना सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। इस दौरान कई सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि महिलाओं की भागीदारी को मजबूती प्रदान की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 132 अंक बढ़कर 78,417 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual

आन फिल्म का गाना आपने सुना। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ जो अभिनेत्री हैं वो हैं नादिरा। इससे पहले जो गंगा जमुना फिल्म का गाना हमने सुना, उसके बारे में हमारे एक साथी की ये बात है कि गंगा जमुना में उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा और लहजे को इतनी सहजता से निभाया कि पात्र बिल्कुल वास्तविक प्रतीत हुआ। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि वो कलाकार जैसे परिचय की कोई आवश्यकता नहीं, वो दिलीप कुमार के अलावा और कौन हो सकता है। वे हिंदी सिनेमा की बुनियाद थे, नींव थे। उनकी फिल्मों में मधुरता, उल्लास और उमंग का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। आज भी उनकी जब टीवी पर कोई फिल्म आ रही होती है तो हम सारे काम धाम छोड़कर बस उनके मोहपाश में बंध जाते हैं। वो उनकी उड़ती जुल्फें, हल्की सी मुस्कुराहट कयामत ढाने के लिए काफ़ी है। तो आपकी इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब अगला गाना सुनवा रहे हैं, कोहिनूर फिल्म का। ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

कोहिनूर फिल्म का गाना दिलीप कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया। कह सकते हैं कि जब संगीत की बात हो तो कुछ ऐसे गीत होते हैं जो सच में संगीत के कोहिनूर कहलाते हैं। आज गाने तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन आप ये जिक्र कर सकते हैं किसी भी गाने के बारे में या किसी भी सीन जो आपने देखा हो, दिलीप कुमार की फिल्म देखी हो, उनका कोई अभिनय किसी फिल्म में जो आपको पसंद आया हो, कोई दृश्य जो आपको पसंद आया हो, तो उसके बारे में आप जिक्र कर सकते हैं कि इस गीत में हमें ये चीज़ पसंद आई या ये जो सीन था इसमें हमें ये बात पसंद आई या इनके अभिनय में हमें ये बात बहुत ख़ास लगी। इन बातों का आप जिक्र कर सकते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा का इतिहास जब भी महान अभिनेताओं का जिक्र करेगा तो दिलीप कुमार का नाम सबसे पहले सम्मान के साथ लिया जाएगा। अपने सहज, गहरे और भावपूर्ण अभिनय से उन्होंने हर किरदार में ऐसी जान फूंकी कि पर्दे पर अभिनय नहीं बल्कि जीवन दिखाई देता था। यही कारण है कि उन्हें ट्रेजेडी किंग के साथ साथ अभिनय का विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि दिलीप साहब की कितनी ही नई पुरानी फिल्में देखी हैं पर मशाल फिल्म का वो दृश्य मस्तिष्क पर अंकित हो गया जिसमें अपनी पत्नी की बीमारी की अवस्था में सड़क पर भटकते हुए जब वो मदद की गुहार लगाते हैं वो एकदम जीवंत और मार्मिक अभिनय हमें लगा। अब आपको सुनवाते हैं नया दौर फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी और बलबीर की आवाज़ों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीत किसका है ये आप हमें बताइए। और जो बात हमने आपसे कही कि किसी गाने का जिक्र आप कर सकते हैं, किसी दृश्य का जिक्र आप कर सकते हैं जो आपको बहुत मार्मिक लगा हो, बहुत जिसमें हास्य आपने अनुभव किया हो या जो आपको बहुत पसंद आया हो या उसकी क्या खासियत आपको लगी है, इसका जिक्र आप कर सकते हैं।

ओपी नैयर के संगीत से सजा नया दौर फिल्म का ये गाना एक जोश भर देने वाला गाना है। अगर हम कभी सो भी रहे हों और ये गाना अगर कानों में पड़े तो हम उठकर खड़े हो जाते हैं और सुनने को मजबूर हो जाते हैं, और अगर देखने को मिल जाए तो जो एक्टिंग के साथ गाने को सुनने का मज़ा और भी दोगुना हो जाता है और मन एकदम प्रफुल्लित होकर के जोश से भर जाता है। तो ऐसे ये गीत हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि मेरी नज़र, यदि दिलीप कुमार के अभिनय की बात हो तो उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है मुग़ल-ए-आज़म। इस फिल्म में उन्होंने शहजादा सलीम की भूमिका निभाई थी और यही भूमिका उनके अभिनय कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। एक साथी लिख रहे हैं कि मधुमती का सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, ये गाने की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि मनोज कुमार की क्रांति फिल्म में दिलीप कुमार जी ने बहुत अच्छा रोल निभाया था और ये यादगार रहा। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि 1960 की सदाबहार फिल्म कोहिनूर का गीत दो सितारों का जमीन पर, ये एक कालजयी रोमांटिक गीत है। संगीतकार नौशाद और शकील बदायूनी और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की। संगम को सुनकर आज भी प्यार और उमंग का एहसास होता है। एक साथी हमारी ये बात लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार भारतीय फिल्मों के ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपने अभिनय से फिल्म इंडस्ट्री की परिभाषा ही बदल दी। सुपरस्टार कैसे बनते हैं ये दिलीप कुमार जी ही अपने अभिनय से उन्होंने बताया। फिल्मों में गंभीर भूमिकाओं के अलावा दिलीप कुमार जी ने कई फिल्मों में कॉमेडी रोल भी किए और दर्शकों को उन्होंने बहुत हंसाया भी। चलिए अब मधुमती फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना। संगीत किसका है आप बताइए।

मधुमति फिल्म का गाना, संगीत सलील चौधरी का। हमारे साथी लिख रहे हैं कि राम और श्याम फिल्म में उनके एक्टिंग के सभी शेड्स देखने को मिलते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार और संजीव कुमार की एक फिल्म संघर्ष मैंने देखी है, उसमें एक गाना है कोई पैरों में घुंघरू बंधवा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, उसमें दिलीप कुमार का डांस बहुत ही अच्छा लगा और फिल्म भी हमें बहुत अच्छी लगी। एक साथी लिखते हैं कि फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन के पिता का रोल दिलीप कुमार जी ने बखूबी निभाया है, एक सशक्त पुलिस इंस्पेक्टर का। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि नया दौर में तांगे की दौड़ वाला दृश्य केवल जीत हार का नहीं बल्कि उस विश्वास का प्रतीक है कि हौसला और मेहनत परिस्थितियों से बड़ी ताकत होते हैं। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मुगल-ए-आज़म फिल्म का प्रसिद्ध गीत जब प्यार किया तो डरना क्या राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित आमेर किले के शीश महल में फिल्माया गया था। हम जब भी आमेर जाते हैं तो इस गाने की याद हमें आती है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मुझे दिलीप कुमार की क्रांति, विधाता और सौदागर पिक्चर बहुत अच्छी लगी। आइकॉनिक फिल्म सौदागर में दोस्त भी के ऊपर है और क्रांति पिक्चर देख के ऊपर है, ऐसा कुछ थोड़ा सा आप अगर स्पष्टता से लिखें तो अच्छा होगा। एक साथी लिख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व मैंने दिलीप कुमार जी की फिल्म यहूदी देखी। फिल्म में उनका अभिनय वाकई बेहतरीन था, उनकी रोमन वेशभूषा और भारी भरकम उर्दू संवादों की अदायगी लाजवाब थी। सबसे ख़ास बात यह थी कि उन्होंने अपनी आँखों और चेहरे के हाव भाव से प्यार, तड़प और लाचारी के दर्द को जिस तरह बयां किया वो सीधे दिल को छू जाता है। इसे देख कर ही महसूस होता है कि क्यों उन्हें आज भी सर्वश्रेष्ठ उनका अभिनय कहा जाता है। चलिए अब हम अगला गीत सुनवाते हैं, बैराग फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये आप बताइए।

बैराग फिल्म का गाना आपने सुना। हमारे साथियों ने लिखा है कि इस गाने में अभिनेत्री है लीना चंदावरकर और अन्य अभिनेत्री है सायरा बानो। एक साथी लिख रहे हैं कि मैंने बचपन में हमारे पड़ोस में ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न पर पहली हिंदी फिल्म देखी थी, वो दिलीप कुमार की थी और वो फिल्म थी गोपी, जो इन्हें बहुत पसंद आई। और एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार जी ने अलग अलग प्रकार के अभिनय जैसे देशभक्त, प्रेमी, जेलर, कुल 57 फिल्मों में उन्होंने काम किया है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सौदागर में राजकुमार और दिलीप कुमार के आमने सामने के कई दृश्य, उनकी आवाज़, संवाद आज भी याद किए जाते हैं, जैसे कि दुश्मनी जब तक निभाओ शान से निभाओ, लेकिन अगर दोस्ती करो तो उसे भी दिल से निभाओ। ये बात इन्होंने लिखी। एक साथी लिख रहे हैं कि वे आँखों से अभिनय किया करते थे, इसका सबसे अच्छा उदाहरण राम और श्याम का दिया जा सकता है। प्राण साहब के हाथ में हंटर होता है और विरोध में दिलीप साहब का सिर्फ चेहरे का क्लोजअप दिखाया जाता है, वहाँ सिर्फ उनकी आंखें बोल रही है, आंखों से गुस्सा, बदला और चिढ़ का अनोखा अभिनय वहाँ देखने को मिलता। यूं ही नहीं उन्हें बादशाह कहा जाता है अभिनय का। चलिए अब हम आपको संघर्ष फिल्म का गाना सुनवाते हैं, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

एक साथी ने लिखा है कि फिल्म संघर्ष का ये जो गीत है, दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या नहीं किया और जब दिल से दिल टकराता, ये दोनों गाने अपनी नायिका को जुनून की हद तक प्यार करना, मुझे नायक का ये किरदार बहुत पसंद आया था। एक साथी लिख रहे हैं कि बैराग का यह गीत, जिसके संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, इसमें दिलीप कुमार जी ने पहली बार तिहरी भूमिका निभाई थी, मेरी लिस्ट का ये पाँचवा गीत था जो आपने शामिल कर लिया है। और एक साथी लिख रहे हैं कि वो नायाब कलाकार हैं, हम सब के चहेते दिलीप कुमार साहब, यूं तो उनकी हर फिल्में और हर सीन याद रह जाता है मुझे। एक सीन का जिक्र करना चाहूँगा, मुंबई में रात के सन्नाटे में सड़क पर वे अपनी धर्म पत्नी, जो इसमें जो कलाकार हैं वो वहीदा रहमान हैं, उनके साथ जा रहे होते हैं। अचानक वहीदा जी के पेट में दर्द होने लगता है और वह तड़पने लगती हैं। उस समय दिलीप साहब मदद के लिए गुहार लगाते हैं और इक्का दुक्का कार वाले उनकी परवाह के बिना निकल जाते हैं। अरे कोई मदद करो, मर रही है बेचारी, बदहवास होकर वे सड़क पर मदद मांगते हैं, लेकिन व्यस्त शहर के लोग उनकी ओर ध्यान नहीं देते और अंत में वहीदा जी वहीं पर दम तोड़ देती। ये सीन आज भी मुझे याद आता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिलीप साहब को मैं सलाम करता हूँ। चलिए, धन्यवाद आपका। लीडर फिल्म का गाना आइए अब सुनते हैं।

लीडर फिल्म का ये गाना था। एक साथी लिखते हैं कि कर्मा फिल्म में जब दिलीप साहब देशद्रोही बने अनुपम खेर को थप्पड़ मारते हैं, वो दृश्य इतना प्रभावित करता है कि मैं थिएटर में कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हो गया था। एक साथी लिख रहे हैं कि वैसे तो उनका हर किरदार लाजवाब होता था, लेकिन फिल्म देवदास का किरदार मुझे बेहद पसंद है। दिलीप साहब के बाद कोई देवदास न बन सका, क्योंकि उन्होंने वो किरदार निभाया नहीं था बल्कि जिया था। किरदार तो बहुत अभिनेता निभा लेते हैं, लेकिन किरदार को जी लेना उनसे सीखना चाहिए। एक साथी ये लिख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा का इतिहास लिखे और दिलीप कुमार का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा गया, पर यह उपाधि उनके अभिनय को एक फ्रेम में बांध नहीं पाती। उनका अभिनय दर्द तक सीमित नहीं था, वो हर किरदार में इंसान की पूरी जिंदगी जी लेते थे। वो संवाद से पहले आँखों से बात करते थे, चीखना चिल्लाना नहीं, गाल पर एक आंसू और टूटी हुई सांस, यही उनका ट्रेजिक फॉर्मूला था। संक्षेप में कहें तो दिलीप कुमार ने हमें सिखाया कि असली अभिनय शोर में नहीं सन्नाटे में होता है। एक निगाह, एक रुकी हुई सांस और सहज अंदाज में बोला गया संवाद, बस इतने में वो उस किरदार की पूरी जिंदगी पर्दे पर जी जाते थे। धन्यवाद आपका। चलिए आज़ाद फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर के साथ एक और जो आवाज़ है वो किसकी है वो बताइए हमें, और दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये भी बताइए।

आज़ाद फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर के साथ, जो आवाज़ है वो चितलकर यानी कि सी रामचंद्र की है और अभिनेत्री हैं मीना कुमारी। एक साथ ही लिख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा के एक ऐसे युग पुरुष जिन्होंने पर्दे पर आम इंसान के संघर्ष और स्वाभिमान को जीवंत किया। उनका बुलंद व्यक्तित्व और चुंबकीय अभिनय दर्शकों को सम्मोहन में बांध लेता था। उन्होंने एंग्री यंग मैन बनकर समाज की विसंगतियों पर प्रहार किया तो अपनी भावुक भूमिकाओं से हर आँख नम भी की। संवाद अदायगी के वो बेताज बादशाह जिनकी मखमली आवाज़ आज भी दिलों को छूती है। चलिए अगला गाना दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का ये गाना है और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत, दिलीप कुमार के साथ जो अभिनेत्री हैं वो है वहीदा रहमान।

सचमुच गीत में सागर की गहराइयाँ नज़र भी आती है और कानों में वो महसूस भी करवाती है। चलिए एक हमारे साथी की बात की, फिल्म अमर महबूब खान दिलीप कुमार ने एक ऐसे नैतिक रूप से भ्रष्ट नायक का किरदार निभाया है दर्शकों को हैरान और असहज कर देता है। उनका ये अभिनय बहुत साहसी था क्योंकि उस दौर के सिनेमा में हीरो को हमेशा आदर्श पुरुष महान माना जाता था। फिल्म का नायक पढ़ा लिखा संभ्रांत परिवार का गलत कर बैठता है जिससे उसकी चरित्र की का नैतिक पतन होता है। उस पश्चाताप को बेहद गहराई और संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर उतारा है। उस समय एक नायक को खलनायक के रूप में पर्दे पर उतारना हिंदी फिल्म का एक दुर्लभ प्रयोग था। दिलीप कुमार जैसे सुपरस्टार ने एक नकारात्मक कृत्य करने वाले व्यक्ति की भूमिका चुनी। अपनी सूक्ष्म भाव भंगिमाओं से अमर के नायक ने दर्शकों को मजबूर किया कि वे उस चरित्र के पछतावे और अंतर्मन के संघर्ष को समझ सके। धन्यवाद। अगला गाना यहूदी फिल्म से मुकेश की आवाज़।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं। ये गीत शायद हम आपको पूरा ना सुनवा पाए, लेकिन गीत की झलक तो आपको सुनवा ही सकते हैं। आदमी फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

राहें चाहे पुरानी हो जाए, लेकिन दिलीप कुमार जैसे जो कलाकार होते हैं उन्हें हम आवाज़ कैसे न दें, ये तो संभव ही नहीं है। हर युग में, हर पीढ़ी में ऐसे कलाकारों को याद किया जाता रहेगा। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरी यानी मंजू द्विवेदी के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी नाम पर। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। समय के साथ लोगों के नाम, चेहरे और बाहरी पहचान धुंधली पड़ जाती है। आज जो व्यक्ति प्रसिद्ध है, हो सकता है आने वाली पीढ़ियां उनका नाम भी ना जाने, लेकिन उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य, उनके विचार और उनकी मधुर वाणी लोगों के मन में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। मनुष्य अपने जीवन में नाम, यश और प्रसिद्धि पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें पहचाने, उनकी प्रशंसा करें, लेकिन समय की धूल बड़े बड़े नामों को भी ढक देती है। कई ऐसे लोग हुए जिनके नाम भले ही कम लोग जानते हों, लेकिन उनके कार्य आज भी समाज को प्रेरणा देते हैं। सुंदर चेहरा और बाहरी आकर्षण स्थायी नहीं होते। उम्र के साथ चेहरा बदल जाता है, लेकिन व्यक्ति का चरित्र, उसका व्यवहार और उसकी अच्छाई लोगों के हृदय में अमिट छाप छोड़ जाती है। इसलिए हमें अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाने पर अधिक ध्यान देना नहीं चाहिए। केवल बाहरी रूप को संवारने पर हमें ध्यान देना

जब कोई व्यक्ति बार बार किसी का नाम लेता है तो वो नाम उसके लिए मात्र एक संबोधन नहीं रह जाता, बल्कि उसकी भावनाओं, स्मृतियों और अनुभूतियों का केंद्र बन जाता है। सांसारिक जीवन में भी किसी प्रिय व्यक्ति का नाम मन में बार बार आना स्वाभाविक है। जब कोई व्यक्ति हमारे हृदय के बहुत निकट होता है तो उसका नाम हमारी सोच, हमारी बातों और हमारी यादों में बार बार उभरता है। ये प्रेम और आत्मीयता का प्रतीक हो सकता है। हालांकि जीवन का संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है, ताकि किसी एक व्यक्ति या भावना में इतना ना डूब जाए कि अपने कर्तव्यों और उद्देश्यों को भूल जाए। वास्तव में किसी का नाम जपते रहना उस व्यक्ति के प्रति सम्मान, स्नेह, श्रद्धा या प्रेम का संकेत हो सकता है।

माता पिता का सपना होता है कि उनकी संतान जीवन में कुछ ऐसा करे जिससे उनका सर गर्व से ऊंचा हो जाए। जब कोई बच्चा मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, तब लोग उसके साथ साथ उसके परिवार की भी प्रशंसा करते हैं। नाम रोशन करना केवल बड़े पद या धन प्राप्त करने से नहीं होता है। एक अच्छा इंसान बनकर, दूसरों की सहायता करके, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलकर भी व्यक्ति अपने परिवार और समाज का नाम उज्जवल कर सकता है। इतिहास में अनेक महान व्यक्तियों ने अपने कर्मों से अपने माता पिता और देश का नाम रोशन किया है।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में

0: पेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
1: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
2: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008

0: के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति AY कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
1: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
2: 6300 हेक्टेयर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
3: जनजाति समूहों का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा, जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन

0: और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो करते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, तामिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों, ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत है मियां बीवी राजी। इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल, संगीत है SD बर्मन का।

जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं बहुरानी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज़ है, गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार सी रामचंद्र।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम ऊंचे लोग।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपके लिए लेकर आए हैं सारंगा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, भरत व्यास का लिखा हुआ गाना, संगीत है सरदार मलिक का।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ों में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, सलील चौधरी का संगीत, फिल्म का नाम छाया।

लीजिए अब सुनिए नवरंग फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को लिखा भरत व्यास ने, धुन बनाई सी रामचंद्र ने।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुन

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर दोपहर के 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदिपूर्णा रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो ने एक समारोह में प्रदान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की और व्यापार, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को भारत इंडोनेशिया संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।

0: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया तथा रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। टीबी उन्मूलन के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण का आह्वान करते हुए नड्डा ने सभी मंत्रालयों से अपने प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया और टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय अभियान को गति देने के लिए माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना और राष्ट्रीय कैडेट कोर से स्वयंसेवकों को सक्रिय रूप से जुटाने का भी आह्वान किया। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को लंबित पड़े विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि स्थानीय लोगों को लाभ मिल सके। वे आज कल्पा में विकास कार्यों को लेकर आयोजित एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जगत सिंह नेगी ने कृषि व बागवानी अधिकारियों को कीटनाशक, फफूंदनाशक व सेब की नवीन किस्मों पर सटीक जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिए ताकि जलवायु परिवर्तन के दौर में छोटे व सीमांत बागवानों को आधुनिक तकनीकों की जानकारी मिल सके। सोलन जिला के परवाणु के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी भूपिन शर्मा ने हाल ही में श्रीलंका में आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में रजत पदक अपने नाम किया है। भूपिन शर्मा ने कहा कि ये पदक जीतकर वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं को खेल गतिविधियों में हिस्सा लेकर नशे से दूर रहने का आग्रह किया है।
1: मैं भूपिन शर्मा, इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर। मैंने अभी अभी श्रीलंका में आयोजित होने वाली इंटरनेशनल सिलोन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था और मेरा वहां पे सिल्वर मेडल आया है 35+ सिंगल्स कैटेगरी में, और मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूं, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा और युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि फिट रहें, मोटिवेटेड रहें और नशों से दूर रहें और अपने देश का नाम ऊंचा करें।
0: मॉनसून की सक्रियता से आज भी प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश का क्रम रुक रुक कर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार के अनुसार आज कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और शिमला जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।
2: 7 जुलाई को हमारा जो कांगड़ा जिला है, कांगड़ा के साथ मंडी, शिमला और सिरमौर जिले के कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। ऑरेंज अलर्ट हमने जो है भारी बारिश को ध्यान में रखते हुए जारी किया हुआ है। वहीं पे जो निचले मध्यवर्ती इलाके हैं जैसे हमारा ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर या सोलन जैसे जिलों में भी मध्यम से भारी स्तर तक की बारिश की पॉसिबिलिटीज बनी है। बारिश का जो दौर है वो लगातार 1 वीक तक रुक रुक के सभी जिलों में हमें देखने को मिलता रहेगा। और 1 जुलाई के बाद से लगातार जो है मानसून काफी एक्टिव बना हुआ है अभी तक, यानी कि 1 जून से लेकर के 5 जुलाई तक अगर बात करें तो ये इस बार हमें अभी तक 115 मिलीमीटर बारिश मिली है, जो कि अराउंड 16% कम बारिश है।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
3: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। अब सुनिए हमीरपुर जिला की चिट्ठी। इसके लेखक हैं हरीश नंदा, वाचक स्वर राजकुमारी चंदेल का है।
4: हमीरपुर की उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि किसी भी बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिन यानी गर्भ से लेकर उसके दूसरे जन्मदिन तक का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी दौरान उसके मस्तिष्क व शरीर का सर्वाधिक विकास होता है। भोरंज उपमंडल की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लदरौर और मुंडखर में पोषण अभियान के तहत महिला व बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं, आंगनवाड़ी और आशा वर्करों को संबोधित करते हुए गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि बच्चे के सही पोषण के लिए मां का जागरूक होना बेहद जरूरी है। हमीरपुर में जिला स्तरीय समीक्षा समिति व बैंक सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त गंधर्वा राठौर द्वारा सभी सरकारी व गैर सरकारी बैंकों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अधिक से अधिक लोगों को ऋण योजनाओं से जोड़ने के लिए पंचायत जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के सहयोग से नियमित रूप से विशेष जागरूकता व ऋण आवंटन शिविर लगाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को बैंकों की ऋण योजनाओं से लाभ मिल सके। हमीर भवन में जिला प्रशासन, परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने

0: बताया कि सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों के लिए पीएम राहत योजना के तहत सभी सरकारी अस्पतालों और अन्य सूचीबद्ध अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक के मुफ्त व कैशलेस इलाज की सुविधा का प्रावधान किया गया है। सड़क दुर्घटना के बाद 24 घंटे के भीतर अस्पताल में दाखिल होने पर यह सुविधा मिलेगी और घायल व्यक्ति का अधिकतम 7 दिन तक कैशलेस इलाज किया जा सकता है। कोई भी सूचीबद्ध अस्पताल घायल को दाखिल करने से मना नहीं कर सकता है। ईडार, ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सड़क दुर्घटना से संबंधित संक्षिप्त जानकारी अपलोड करते ही घायल व्यक्ति का कैशलेस इलाज शुरू किया जा सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मेरा युवा भारत हमीरपुर द्वारा जिला युवा अधिकारी दीपमाला की अध्यक्षता में करियर पॉइंट विश्वविद्यालय हमीरपुर में एक विशेष पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण और सतत विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के डायरेक्टरेट ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज NSS और NCC इकाइयों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। जिला हमीरपुर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों विशेषकर छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्वयंसेवी संस्था वीनस फाउंडेशन और प्रसिद्ध ऑनलाइन कोचिंग संस्थान फिजिक्स वाला के सहयोग से एक विशेष पहल की गई है। इस संबंध में हमीरपुर में आयोजित शिक्षा व ग्रामीण उद्यमिता सम्मेलन नव दिशा में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ संवाद के दौरान उपायुक्त गंधर्वा राठौर ने बताया कि जिला प्रशासन ने वीनस फाउंडेशन के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत वीनस फाउंडेशन जिला हमीरपुर के चयनित प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को 11वीं कक्षा से फिजिक्स वाला का ऑनलाइन पैकेज निःशुल्क उपलब्ध करवाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला हमीरपुर के अणु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। आयुष विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं और बच्चों सहित लगभग 2000 लोगों के साथ करीब 45 मिनट तक योगाभ्यास किया। उन्होंने IDY यानी इंटरनेशनल डे फॉर योगा से संबंधित एक पुस्तिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने जिला हमीरपुर के जोलसप्पड़ में डॉ. राधा कृष्ण राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के नए परिसर में लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने इसी परिसर में नवनिर्मित अस्पताल ब्लॉक और अकादमिक ब्लॉक व अन्य निर्माणाधीन भवनों के कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने CPWD, PWD और मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों को अस्पताल ब्लॉक व अकादमिक ब्लॉक को मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को सौंपने तथा कॉलेज व अस्पताल के विभिन्न विभागों को जोलसप्पड़ शिफ्ट करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिला हमीरपुर में सघन पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान के दौरान निर्धारित लक्ष्य से अधिक बच्चों को पोलियोरोधी दवाई पिलाई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय अत्री ने बताया कि जिला हमीरपुर में 5 वर्ष तक की आयु के 29,924 बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि जिला में कुल 31,099 बच्चों को ये दवाई पिलाई गई।
1: आप सुन रहे थे हमीरपुर जिला की चिट्ठी। इसके लेखक थे हरीश नंदा, वाचक स्वर राजकुमारी चंदेल का था। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

0: कहाँ खो गई? कमेंट, लाइक कमेंट में,
1: लाइक कमेंट में, और ये देखने के लिए कि जो बातें अभी हमने अपने श्रोताओं से की क्या वो हमें मैसेजेस भेज रहे हैं या नहीं।
0: अच्छा अच्छा वैसे अगर हमारे श्रोता कमेंट नहीं करेंगे तो हम उन तक उनकी बात कैसे पहुंचाएंगे? तो इसलिए उनकी टिप्पणियों का तो हमें इंतजार रहता है, लेकिन वो नशा नहीं बनना चाहिए लाइक कमेंट का।
1: कुछ कभी ऐसा हो जाता है, पूरा ध्यान एकदम ऐसा होता है ममता जी कि आज

0: इस वाले विषय पर कुछ आए हैं, बात आई है या नहीं आई है, कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, क्या लिखा है, तो ये उत्सुकता बढ़ तो जाती है।
1: तो
0: और
1: अब,
0: जी अब एक और उत्सुकता है कि ये जो हमारी संस्थापक है हार्दिका शाह किनारा कैपिटल की, कैसे बनी, क्या इनकी जीवन का परिचय हुआ, दरअसल किस तरह से वो आगे बढ़ी।
1: क्या होता है दीपा जी कि हम कुछ ऐसी महिलाएं अपने देश में हैं, कुछ प्रवासी भारतीय भी हैं, उन महिलाओं से बहुत सारी प्रेरणा मिलती है
0: जी,
1: बहुत सारे प्रेरक प्रसंग उनके जीवन में घटित हुए हैं। उन घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं या पढ़वाते हैं या जानकारी देते हैं तो उससे बहुत सारी सखियों को प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, और हर ज़्यादातर उन कामयाब महिलाओं के पीछे के लंबी संघर्ष की कहानी होती है। तो उन कहानियों को सुनना, जानना, बताना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो हम अपने श्रोताओं को इसलिए हार्दिका शाह के बारे में आज जानकारी दे रहे हैं।
0: जी, ये ऐसा नाम है ममता जी जिन्होंने इस बात को सही साबित किया कि व्यापार का असल उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं है बल्कि समाज में उन वर्गों तक भी पहुंचना है जहां अक्सर लोग पहुंच नहीं पाते या उन तक कोई भी वित्तीय व्यवस्था पहुंच नहीं पाती है।
1: जी।
0: तो एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार की हैं हार्दिका शाह, वहीं पली बढ़ी और अपने माँ को और अपने छोटे व्यवसाय के लिए उन्होंने बहुत पूंजी जुटाते हुए देखा, तो खूब संघर्ष करते हुए उन्होंने बचपन में अपनी माँ को देखा।
1: संघर्ष इतना था कि 17 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अमेरिका के इलिनोइस स्थित नॉक्स कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई करने के लिए घर छोड़ दिया। कोलंबिया के बहुत प्रसिद्ध बिजनेस विश्वविद्यालयों के संयुक्त कार्यक्रम से MBA पूरा करने के बाद उन्होंने एक प्रसिद्ध कंपनी में काम करना शुरू किया। साथ ही वो विदेश के बहुत जाने माने विश्वविद्यालय सहित अन्य तमाम कार्यक्रमों में निशुल्क मार्गदर्शक के रूप में भी वे काम करने लगी।
0: बिल्कुल, और वहाँ उन्हें अक्सर जो अपनी माँ, उनकी माँ जो पूंजी जुटाती थी ना, इकट्ठा करती थी, वो सारी चुनौतियां उन्हें अक्सर याद आया करती थी। तो मध्यम वर्गीय परिवार की वो थी, उस नाते दृष्टिहीन लेकिन महत्वाकांक्षी पिता और उद्यमी माँ की परवरिश में उन्होंने बचपन से ही बहुत संघर्ष देखा। लेकिन उनके पिता और गुजरात के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, वे बॉम्बे विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के एक सफल प्रोफेसर बने और आज भी वे पढ़ाते हैं।
1: बहुत सारे संस्थानों में कार्य करते हुए उन्होंने महसूस किया कि भारत के छोटे उद्यमियों, विशेषकर सूक्ष्म और लघु व्यवसाय के लिए पूंजी तक पहुंचना बहुत कठिन है। इसी विचार ने उनके भीतर परिवर्तन का संकल्प जगाया। वर्ष 2011 में उन्होंने एक कैपिटल की स्थापना की, किनारा कैपिटल। इस संस्था का उद्देश्य उन छोटे व्यापारियों, महिला उद्यमियों और सूक्ष्म व्यवसायों को सरल और त्वरित ऋण उपलब्ध कराना था जिन्हें पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती थी।
0: जी, और उन्हें यह विश्वास था कि यदि कोई व्यक्ति सही समय पर आर्थिक सहयोग मिल जाता है तो केवल अपना जीवन ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों का भविष्य भी बदल सकता है। और उनके नेतृत्व में किनारा कैपिटल जो उनकी कंपनी है, आधुनिक तकनीक और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय स्थापित करता है। संस्थाओं ने हजारों छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता देकर उनके सपनों को एक नई उड़ान दी है।
1: तो ये हम सबके लिए प्रेरणा की बात है। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा।
0: जी,

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली
2: जी। और अपनी कंपनी जो हम बात कर रहे थे हार्दिका शाह के बारे में, उनकी कंपनी के हर विकास कार्यक्रम के माध्यम से वो महिला उद्यमियों को सशक्त बना रही हैं, वो जो कंपनी के CRO CSR कार्यक्रम के माध्यम से महिला सूक्ष्म उद्यमियों को सहयोग देने के लिए बहुत प्रतिबद्ध है। उनका संघर्ष, दूरदर्शिता, समाज के प्रति समर्पण आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे इस विश्वास की एक जीवंत मिसाल हैं कि दृढ़ संकल्प, अथक परिश्रम और सेवा भाव से असंभव भी हम संभव कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। तो ये अपने जहन में ज़रूर रखें, जब भी किसी काम की शुरुआत करें तो ये जहन में रखें कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं
2: जी।
0: तो काम सफल होता है। अब दीपा जी देखिए ना, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में जो गाना सुनवाया था वो सजना बरखा बाहर आई फिल्म परख का, और उस पर एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गाना इतना अच्छा लग रहा है कि इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे वो दिन और समय याद आ जाता है। वह यूं कि गांव के तालाब में नहा कर आया था, ये आजकल के बरसात के दिन थे। वहां तालाब पर मैंने पपीहे को भी देखा था और घर आया तो ताऊ जी के रेडियो पर यही गीत बज रहा था तो मुझे वो दिन समय ये गीत याद आ गया। तो देखिए ना, रेडियो से बजते हुए गाने हमें कहां कहां पहुंचा देते हैं।
2: बिल्कुल। और हर एक के जीवन में जो रेडियो का प्रेमी है, कहीं ना कहीं किसी न किसी गीत के साथ कोई याद तो उनकी जुड़ी ही है।
0: तो चलिए फिर बात गाने की है, सुन लेते हैं गाना।
2: चलिए।
3: हाय राम।

0: ममता जी, आज का समय कुछ ऐसा हो गया है ना कि प्रसिद्धि पाने की लालसा हर एक के मन में कुछ हावी सी होने लगी।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और
0: कई बार ऐसा भी होता है कि वो सही या गलत का फर्क उस चक्कर में भूल जाते हैं कई लोग, है ना।
1: और आजकल सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट्स और फॉलोअर्स की संख्या अब कई लोगों के लिए आत्मसंतुष्टि का पैमाना बन गई है।
0: जी बिल्कुल।
1: कितने फॉलोअर्स हैं, कितने बढ़े, कितने नए घटे, ये भी देखते रहते हैं। अरे घट गए तो लोग तनाव में आ जाते हैं कि अरे बाप रे अब क्या करें। और दूसरी ओर वायरल पोस्ट लोगों को और अधिक लोकप्रियता की चाह में लगातार नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रही है। कई बार ऐसी बातें सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए फैला दी जाती हैं जो ठीक नहीं होती हैं, सोशल मीडिया पर वो भी वायरल हो जाती हैं। वायरल से मतलब प्रसिद्धि है,
0: प्रसिद्धी
1: और
0: है।
1: कुछ चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए उसे भी लोग अपनी प्रसिद्धि के तहत वायरल कर देते
0: बिल्कुल।
1: हैं।
0: बिल्कुल। और एक कोई पोस्ट अगर डाली और उस पोस्ट पर अगर उन्हें वो एक अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो निराशा बढ़ने लग जाती है, तनाव बढ़ने लग जाता है। किसी ने अगर जवाब नहीं दिया आपके पोस्ट, आपने कोई पोस्ट डाली और उस पर अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो इंसान एकदम लगता है किसी ने कुछ देखा नहीं, हमारे मेरे बारे में कोई जानना नहीं चाहता या मेरे इस लिखी हुई चीज़ को कोई पढ़ना नहीं चाहता, ये क्या हो गया, क्यों हो गया। और दोस्तों को फ़ोन लगा के पूछ भी लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है।
1: यहाँ तक हो गया है कि अभी कई लोगों को ये देखा जाता है कि लोग आधी रात को, आप देखिए आधी रात को भी लोग सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया पर, आप ऑनलाइन दिख जाते हैं, हरी बत्ती आपको दिखाई दे जाती है
0: जी, तो और पड़ जाता है।
1: रात को उठ के 2:30-3 बजे भी देखते हैं कि किसने हमारी पोस्ट को लाइक किया, किसने कमेंट किया और किसने दिल का साइन लगाया।
0: हाँ,
1: वो भी अब एक अलग पैमाना बन गया है कि अरे उसने तो सिर्फ लाइक करके छोड़ दिया, दिल का साइन नहीं लगाया। और अब लाइक करने के बाद जो कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स करने वाले ये भी उम्मीद करते हैं कि उनके कमेंट्स को भी लाइक किया जाए।
0: जी।
1: फिर वो ये भी कहते हैं कि हमारे कमेंट्स को लाइक आपने नहीं किया, तो कमेंट्स को भी लाइक करने की एक प्रथा चल पड़ी है। तो इस प्रवृत्ति का सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि कई लोग समाज कानून और अपनी सुरक्षा की अनदेखी कर बैठते हैं। सड़क पर स्टंट, सार्वजनिक स्थानों पर अनुचित हरकतें और केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाई गई भ्रामक सामग्री डाल देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। इससे न केवल व्यक्ति स्वयं जोखिम में पड़ता है बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है।
0: कई बार सड़कों पे आप देखते हैं कि युवक युवती बैठे हैं बाइक पर और बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, और हमने ये देखा कि पीछे जो महिला बैठी है वो फ़ोन हाथ में लिए हुए है और आगे बाइक की तरफ से कुछ इस तरह से वो कैमरा का सेटिंग करते हैं फ़ोन का कि वो चलती हुई गाड़ी नज़र आए, बाइक नज़र आए। तो ये खतरा दूसरों के लिए भी है, खुद के लिए सबसे ज़्यादा है। कब कहाँ बैलेंस बिगड़ सकता है इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता है ये सड़क पर इस तरह के स्टंट करके इस तरह से कुछ अलग ही तरीके से वीडियो डालना, ये शायद हमें और किस पता नहीं किस प्रसिद्धि की किस पीढ़ी तक लेके जा सकता है।
1: तो दीपा जी, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इस पर चर्चा और करेंगे और श्रोताओं की टिप्पणियाँ भी बहुत सारी आ रही हैं। एक गाना सुन लेते हैं,
0: चलिए
1: फिर उसके बाद चर्चा करेंगे।

0: बेचारा दिल क्या करे भाई, लाइक कमेंट देखे तो ना देखे कैसे, बेचारा दिल क्या करे, दिल पर वश नहीं होता है इस मामले में कि लोग कितना भी खुद को समझा लें।
1: देखिए जी बिल्कुल, हम कितना भी समझा लें लेकिन हमारी भी नज़र जब कार्यक्रम रहता है ना, चलता रहा होता है ममता जी, तो हम ये देखते हैं कि और कितने कमेंट्स आए, और कितने कमेंट्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो अच्छे से अच्छे जो कमेंट्स अपने
0: श्रोताओं तक पहुँचाएँ
1: हम।
0: लेकिन यहाँ पर उद्देश्य अलग है ना, लेकिन जो उद्देश्य गलत होता है अपनी प्रसिद्धि पाने का, वो एक अलग मुद्दा है। अब और बातें करेंगे, फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं।
1: चलिए।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और बातें हम कर रहे थे गाने से पहले और इस ब्रेक से पहले कि वायरल होने के जुनून में लोग न जाने क्या क्या करते हैं,
1: कम समय में कम समय में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया भर में हमारा नाम हो जाए।
0: अब यही बात हमारे एक श्रोता ने भी लिखी है, देखिए इन्होंने लिखा है, आजकल वायरल होने की दौड़ में लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी पहचान कुछ पल की लोकप्रियता नहीं बल्कि अच्छे कर्म और अच्छा चरित्र है। जो चीज कुछ दिनों के लिए वायरल होती है वो समय के साथ भूल भी जाती है, लेकिन इंसान की अच्छाई, संवेदनशीलता और सादगी

0: कि कई बार लोग बड़ी दुखद खबर पोस्ट करते हैं,
1: जी
0: वहाँ लोग जाकर हंसी का इमोजी लगा देते हैं भूल से,
1: जी
0: हड़बड़ी में, और ये देखना भी नहीं चाहते कि वो पोस्ट क्या है। कई बार लोग बिना पढ़े बिना जाने लाइक कर देते हैं कि फलाने की पोस्ट है तो यहाँ पे लाइक कर देते हैं। पता चलता है कि उससे आपकी सहमति नहीं असहमति थी,
1: जी
0: और किसी जो वो बंदा मुसीबत में है तो आप भी मुसीबत में फंस गए क्योंकि आपने उसे लाइक किया था।
1: बिल्कुल
0: कई बार सोशल मीडिया पर ये चर्चा भी होती है, कुचर्चा भी होती है, कई विवादास्पद बातें उस पर पोस्ट होती हैं, कई जैसे संगीत के बारे में, साहित्य के बारे में कुछ ऐसी पोस्ट लिखी जाती है जहां आपकी सहमति है ही नहीं, लेकिन आप लाइक करके आगे बढ़ जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ये बात तो आपको मुसीबत में डाल गई
1: मुसीबत में
0: है।
1: डाल देते हैं, और कई बार बड़े अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उन्हें क्या लगता है इस तरह का हम लिख करके हमारे ऊपर ज़्यादा ध्यान लोगों का जाएगा, हम पर ज़्यादा आकर्षित होंगे लोग, और इस तरीके से हम कुछ अलग सा लिख दें, अलग सा लिखने में वो समझ ही नहीं पाते कि भाषा हम क्या इस्तेमाल कर रहे
0: कुछ
1: हैं।
0: लोग ये भी करते हैं कि जो बात किसी ने कही नहीं उसे अपने नाम पर पोस्ट करते
1: हाँ, ये
0: हैं
1: बात भी होती है।
0: कि फलाने ने हमें ऐसा कहा और इतना बुरा भला कहा, मेरी निंदा की, और हम तो हमेशा कटघरे में खड़े होते हैं, जबकि किसी ने कोई चर्चा ही नहीं की है।
1: जी
0: तो ये भी एक तरीका है लाइक कमेंट पाने का, लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ सकारात्मक पहलू भी है। जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था तो जैसे कुछ अगर हम पढ़ने लिखने की बात करें, साहित्य की बात करें, संगीत की बात करें, तो
1: जी
0: किताबें जो छपा करती थी, प्रकाशित होती थी, तो अखबार पत्रिकाएं उसका माध्यम थी जानने के लिए,
1: जी
0: और
1: जी
0: उसके माध्यम से लोग जानते थे और चर्चा होती थी उन किताबों की। लेकिन अब ये आसान हो गया है कि अगर मान लीजिए किसी की चर्चित किताब है और अच्छी उत्कृष्ट किताब है, तो आप जल्दी से सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइक कमेंट्स के माध्यम से
1: जी
0: जान
1: जान
0: लेते हैं
1: लेते हैं।
0: कि हाँ, ये
1: जी
0: किताब चर्चित है, तो चलो हम भी खरीद लेते हैं, पढ़ लेते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। तो अगर कहीं पे बुराई है तो अच्छाई भी है, तो हमारे लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी बातों को अपना करके उसमें आगे बढ़ें, और जो नकारात्मक पक्ष है उस तक ना पहुँचे, ना ही लोगों को उसके लिए, उस तरफ जाने के लिए प्रेरित करें। एक और संदेश आया, वो हम यहाँ पढ़ना चाहेंगे, कि ये कहते हैं वायरल होने का जुनून, जो कि एक वायरस का ही प्रकार है। जैसे वायरल बीमारियाँ फैलती हैं, उसी तरह सोशल मीडिया रूपी शक्तिशाली ये जो वायरस है, उसके कई लोग शिकार हो रहे हैं अपनी खास पहचान बनाने के चक्कर में। उस चक्कर में जब बाहर नहीं निकल सकते, तब खुद की गरिमा को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकते हैं लोग, इस तरह का इनका ये कहना है।
0: जी बिल्कुल। तो वायरल होने के कुछ नुकसान ज़्यादा हैं और फ़ायदे कम हैं, तो जो फ़ायदे वाला हिस्सा है उसे ग्रहण कर लें, नुकसान वाला, जब वायरल होना आपका जुनून बन जाता है, पैशन बन जाता है, वो नुकसानदेह होता है, और
1: बिल्कुल
0: क्योंकि वो जुनून एक बीमारी का रूप ले रही है। और ये हर वर्ग के लोगों में, ऐसा नहीं कि युवा वर्ग को, हम कहते रहते हैं कि अगली पीढ़ी एडिक्शन की शिकार है, लेकिन हमने देखा है कि बड़े बुजुर्ग भी उसमें शामिल हैं।
1: जी
0: अभी जो हमारे घरों में दादी नानी और चाची, जिन्हें बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल नहीं आता था, वो अपने बच्चों से, अपने नाती पोतों से सीख कर बाकायदा अपनी रील पोस्ट करती हैं, और
1: जी
0: कुछ लोग
1: और
0: अपना
1: कई
0: डांस
1: तो
0: का
1: लोकप्रिय भी हो रहे हैं जैसे
0: डांस
1: आप
0: का
1: बता,
0: वीडियो
1: जी
0: ये
1: जी
0: दिखाते हैं कि हमें देखो, हम इतनी उम्र में डांस करने में सक्षम हैं, और कोई गाना गा के पोस्ट कर रहा है, कोई अपनी कविताएं पढ़ रहा है, कोई कहानी का टुकड़ा, कहानी का हिस्सा पढ़ के पोस्ट कर रहा है, मतलब कोई नई तो रेसिपी ही बता रहा है,
1: जी
0: और किचन के टिप्स बता रहा है, योगा के बारे में, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में,
1: बहुत सारे विषयों
0: मतलब
1: पर वो
0: मुझे तो
1: लोग
0: लगता है कि दुनिया का कोई हिस्सा बाकी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं बाकी, कोई ऐसा विषय नहीं है जो वायरल नहीं है सोशल मीडिया
1: सोशल
0: पर।
1: मीडिया पर नहीं आया है, और जिसको जिसमें हुनर हासिल है ना, वो उसी कला को चाहता है कि अब दुनिया तक पहुंचा, और उनके लिए सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया का
0: और
1: इस्तेमाल
0: इसमें
1: करना।
0: नुकसान क्या है कि कई बार जो नुस्खे बताए जाते हैं कि सुबह सुबह उठ के ये बीज खा लो, ये पानी पी लो, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फिर कई लोग ये बताते हैं कि फला एक्सरसाइज, उंगली, पांचों उंगलियों को उस पर प्रेशर डालो तो आपके सिर दर्द ठीक हो जाता है, ये करो तो पेट दर्द ठीक हो जाता है। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई बार इस गफलत में आपकी बीमारी बहुत बड़ी बड़ा रूप ले लेती है।
1: जी
0: तो अब हमारी बातें कहीं बहुत बड़ी, बहुत दूर तक न जाएं, इससे पहले हम यहाँ पर विराम देते हैं अपनी बात को, और सुनवाते हैं अपनी सखियों और सखाओं को ये गाना, बारिश वाला गाना। जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है उनके लिए सुकून देगा ये गाना, इसलिए भी ये गाना।

0: दीपा जी, हर चमकती हुई चीज अनमोल नहीं होती, ये हमारी एक सखी कह रही हैं कि आज सोशल मीडिया पर वायरल होना आसान हो सकता है, लेकिन किसी के दिल में सम्मान की जगह बनाना कहीं ज्यादा बड़ी बात है। इसलिए ऐसा काम कीजिए जिस पर समय भी मुस्कुराए और आने वाली पीढ़ियां भी गर्व करें।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि काम ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से सकारात्मकता हर तरफ फैले, है ना।
0: कुछ लोग लिख रहे हैं कि लोग वायरल होने के लिए अश्लील वीडियो भी डालते हैं, ये भी गलत है, बहुत गलत है। और अब देखिए ना, एक और मुद्दा है, वो है मोल भाव करने का। कुछ लोगों की आदत होती है कि किसी भी दुकान में गए तो मोल भाव ज़रूर करते हैं, जैसे कि कुछ फिक्स रेट की दुकानें हैं, कुछ ब्रांडेड चीज़ें जहाँ पर मिलती हैं, जहाँ पर एक पैसा भी नहीं
1: कम किया जाता है
0: कि 99 रुपए है तो वो 1 रुपए भी आपको अदा करना पड़ता है, लेकिन वहाँ भी लोग मोल भाव करते हैं। अरे 1 रुपए भी नहीं कम हो सकता है क्या, अरे 20 रुपए तो कम कर दो। तो ये कुछ लोगों की आदत सी बन जाती है, जहाँ पर ये भावना नहीं होती कि इससे बचत हो जाएगी, वो आदतन मोल भाव करते हैं।
1: उन्हें पता भी नहीं होता है ममता जी, उन्हें लगता है कि नहीं, अगर हमने ये 10 रुपए या 20 रुपए कम नहीं कराए तो ये तो मेरे कुछ खिलाफ सी बात हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि कोई 50 रुपए में चीज है और अगर मैं 30 में नहीं करके लेकर आई तो कहीं कुछ ऐसा लगता है कि मैंने तो कहीं कुछ कमी कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है कि भाव मैंने नहीं किया, ऐसा हो जाता है।
0: और बहुत देर तक वो सोचती रहती है कि हम तो ठग गए, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मनोवैज्ञानिक रूप से मोल भाव करने से खरीदार को यह एहसास होता है कि उसे बेवकूफ नहीं बनाया गया है और उसने एक समझदारी भरा फैसला किया है। मोल भाव करना शुरुआत में एक आदत के रूप में शुरू होता है, लेकिन जब आप इसमें माहिर हो जाते हैं तो ये एक कला बन जाती है। ये केवल पैसे बचाने का जरिया नहीं, बल्कि ये मानव स्वभाव और संवाद का एक सुंदर

0: हिस्सा है। मोल भाव करना दोनों पक्षों के बीच एक मानसिक कसरत भी है, ये समझने की कला है कि सामने वाले की सीमा क्या है। कई बार लोग जहां पर मोल भाव नहीं करना चाहिए वहां भी करते हैं, जैसे सब्जी वाले, सब्जी वालों से अगर उसने कहा कि ये 50 रुपए में आधा किलो या 1 किलो हम सब्जी दे रहे हैं जो भी है, तो वो ज़रूर कहेंगे कि अच्छा 50 रुपए में आधा किलो, तो ठीक है हम 1 किलो लेते हैं, कितने पैसे कम करोगे। तो सब्जी वाले भी आनंद लेते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है ले लो 5 रुपए कम दे देना। तो सब्जी वालों से आप मोल भाव क्यों कम कर क्यों कर रहे हैं? वो सड़क पर सब्जी बेच रहे हैं, उनको बेच के घर जाना है, मुझे लगता है कि उनसे कम से कम मोलभाव नहीं करना
1: चाहिए। नहीं करना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा देखने में आता है सब्जी वालों से होती ही है।
0: बिल्कुल,
1: ये भाव ताव तो चलता ही, अगर उसने वो गठरी बना के रखी है, मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि ये 15 रुपए की है गठरी, तो वो बोलेंगे नहीं 10 रुपए में दो या 15 की दो में गठरी दो। इस तरह की बातें तो अक्सर देखने को मिलती हैं। और एक संदेश ये कह रहा है कि मोल भाव करना आदत है या कला। मोल भाव करना, वैसे इसको करने में कोई बुराई तो नहीं है, मोल भाव करना ही पड़ता है, पर कुछ सामान इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते हैं। उनकी हर जगह की रेट फिक्स होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं भी कम या ज़्यादा नहीं होते, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीद कर लाता हूँ, 2-3 दुकानों पर भाव पूछने से ही पता चल जाता है, ज़्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की मैं आदत नहीं रखता हूँ।
0: हमारी एक सखी ने लिखा है कि मोल भाव करना मेरी तो आदत है, मैं चाहती हूँ कि ये छूट जाए पर जाती ही नहीं। जब भी मार्केट जाती हूँ घर से सोच कर निकलती हूँ कि आज वो भाव मिलेगा उसी में शॉपिंग करूँगी, पर वहाँ जाते ही आदत जोर मारना शुरू कर देता है। भाई ये बड़ी ईमानदारी से इन्होंने अपनी बात लिखी है, और हम चाहते हैं कि हमारे सभी होता ऐसी ईमानदारी से बेबाकी से अपनी बात रखें।
1: जी, एक गीत सुन लेते हैं ममता जी, करें
0: सुनते हैं
1: जी।

अब दीपा जी, हमारे श्रोता तो मूल भाव पर तुल गए, मूल भाव पे लगे हुए, मतलब मूल भाव किए जा रहे हैं। अब एक श्रोता ने लिखा है कि हम महिलाएं मूल भाव करने के लिए बदनाम होती हैं, मूल भाव करने की आदत भी होती है। सब्जी वाले से जब तक धनिया और हरी मिर्च फ्री में न डलवा ले तब तक चैन नहीं पड़ता है। और भी शॉपिंग में बहुत सारे मूल भाव करती हैं, सच में पता नहीं क्या मिलता है उन्हें कि थोड़ी मिर्ची और डाल दो ना, अच्छा करी पत्ता भी डाल दो। वो फ्री में लेने में क्या मिलता है ये आज तक मुझे भी नहीं समझ में आया। मैंने भी देखा है बहुत सारी महिलाओं को। और एक श्रोता ने लिखा है कि मोल भाव करना आदत या कला, भाव करना कोई बुराई तो नहीं है, मोल भाव करना भी पड़ता है, पर कुछ सामान तो इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते, उनकी हर जगह एक ही रेट होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं कम कहीं ज़्यादा होते हैं, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है।

0: है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीदता हूँ तो दो या तीन दुकानों पर भाव पूछने से पता चल जाता है। ज़्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की आदत नहीं रखता हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि बदनाम महिलाएं हैं मोल भाव करने के लिए, लेकिन पुरुष भी कम नहीं है मोल भाव के लिए।
1: ये बात तो सही है, आपने बिल्कुल सही कहा।
0: और आप जरा बताइए कि ये क्या कर रही हैं, डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही हैं?
1: बिल्कुल।

0: की बात को बहुत सारे हमारे
1: मुर्गे
0: श्रोताओं ने
1: की
0: लिख भेजा
1: एक
0: है कि
1: टांग, ये भी एक
0: हाँ
1: मुहावरा
0: ये
1: है।
0: भी एक
1: अब एक श्रोता ने लिखा है,
0: परा से जुड़ा है। ऐसे में डेढ़ चावल की खिचड़ी का अर्थ बहुत ही कम मात्रा में भोजन या एक छोटे समूह से है। जब कोई व्यक्ति समूह में शामिल न होकर खुद को अलग थलग कर देता है, तब इस मुहावरे द्वारा उस व्यक्ति को अंकित करते हैं कि भाई ये देखो, ये आ गया डेढ़ चावल की खिचड़ी वाला।
1: अब हमारी एक सखी है जिन्होंने अलग ही खिचड़ी पकाई है। अब सारे श्रोता तो ये कह रहे हैं कि डेढ़ चावल की खिचड़ी, मतलब कि सबकी अलग अलग राय रखना और
0: जी
1: अपनी अपनी राय ऊपर रखना, मतलब ये। अब हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि डेढ़ चावल की खिचड़ी का मतलब कि किसी बात को एक एक ने दूसरे के कान में कहा, दूसरे ने तीसरे के और तीसरे ने चौथे के, हर एक ने एक दूसरे को कहा, ये बात सिर्फ मैं तुमसे बता रही हूँ, तुम किसी से न कहना। मगर जब वो बात एक कान से होते हुए चौथे कान तक जाती है तो बात न होकर कुछ और ही हो जाता है, सीधा मतलब बात का बतंगड़ बन जाता है। कहा तो छोटे से शब्द में या अर्थ में, मगर जिसने सुना उसने दूसरा ही अर्थ लगाया, और जिसको कहकर अपनी बात परोसी वो दूसरे ही अर्थ में कह दी। तो बात तो थी छोटी सी, लेकिन एक से दूसरे तक जाते अर्थ का अनर्थ हो गया, या फिर कह सकते हैं कि बातों की ऐसी जुगाली हुई कि डेढ़ चावल की खिचड़ी बन गई। दरअसल मुहावरे का ये अर्थ भी सही है। कई बार हम ये भी कहते हैं, जब हम छोटे थे तो जब माँ और दादी सुनाती थी नानी की
0: जी
1: इस तरह के मुहावरे, तो वहाँ पे अर्थ भी बताती थी। तो उसका यही अर्थ होता है कि क्या डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही हो, तो मतलब ये कि बातें जब उलट पलट हो जाती हैं और उसका एक अपना अपनी मतलब अपना मंतव्य हो जाता है, अपनी राय हो जाती है,
0: जी
1: तो अर्थ बदल जाता
0: अर्थ
1: है।
0: बदल जाता है। और देखिए यहाँ पर एक और खिचड़ी पक रही है। ये संदेश आया है कि हमेशा मिलजुल कर काम करना सफलता की कुंजी है, लेकिन कुछ लोग हर बात में डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाते हैं। वे दूसरों की राय को महत्व नहीं देते हैं और अपनी ही मनमानी करते हैं। ऐसे व्यवहार से टीम में मतभेद पैदा हो जाते हैं और काम भी प्रभावित होता है। इसलिए हमें अपनी बात अवश्य रखनी चाहिए, लेकिन सबकी राय का सम्मान करते हुए मिलकर निर्णय लेना चाहिए। यही समझदारी है और अच्छे व्यक्तित्व की पहचान भी है।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि पता है हमें एक पुरानी बात याद आ गई। तब कुछ लेना होता था तो कुछ सहेलियों या घर की मौसी या चाची साथ होती थी, पर हम एक दूसरे का मुंह देखते थे कि पहले कितना कम करवाएंगे, मोल भाव के लिए इन्होंने लिखा है, और
0: जी
1: फिर इशारे में बात करके बोलते थे, फिर खुश हो जाते थे कि इतना कम करवाया हो गया, फिर बोल के चले जाते थे कि इतने में दो दो, फिर मुड़ के देखते, दो नहीं तो हम नहीं लेंगे, फिर मुड़ मुड़ के देखते थे वो बुला तो नहीं रहा, जाओ जाओ, पर अब नहीं करते, सब्जी वालों से तो बिल्कुल भी नहीं, फिर फिक्स रेट की शॉप पर भी जाना पसंद करते हैं। ये अक्सर जब पहले दुपट्टे का फैशन था, बहुत सारा तरह
0: जी
1: तरह के
0: जी जी
1: डिज़ाइनदार दुपट्टे हुआ करते थे, तो मैंने भी कई बार लड़कियों को देखा है कि दुपट्टे खरीद रही हैं और दुकानदार से कह रही हैं कि ठीक है इतने में दो, नहीं तो जा रहे हैं, और जा रहे हैं पूरी की पूरी झुंड में हैं लड़कियाँ, और मुड़ मुड़ के देख रही हैं, फिर वो बुला रहा है, आइए भाभी जी आइए ले लीजिए लड़कियाँ औरतें, फिर वापस लौट के आ रहे हैं, फिर 10 रुपये दे दिया एक्स्ट्रा। तो
0: बिल्कुल
1: ऐसे
0: ऐसे शहर, कई शहरों में ऐसे कुछ जगह होते हैं ममता जी, जहाँ पर कि आपको भेजते हैं ना, या हम जाते हैं जैसे कोई बड़े शहर में घूमने गए, तो हम किसी जो पहले ही जाकर आ चुका है, हम पूछते हैं कि कहाँ पर बार्गेनिंग होगी और कितनी होगी ये भी बता देना। तो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो बताते हैं, देखो वो अगर तुम्हें 200 रुपये बोले ना, तो तुम 40 या 50 रुपये से शुरू करना, इतनी बार्गेनिंग होती है।
1: तो 100 रुपये में मिल जाएगा।
0: जो 100 रुपये में मिल
1: आज
0: जाएगा।
1: तो हम सबकी हम आप भी खिचड़ी ही पका रहे हैं, कभी मोल भाव कर रहे हैं तो कहीं
0: कभी
1: खिचड़ी पका
0: खिचड़ी
1: रहे
0: पक रही
1: हैं। अब कहीं हमारी एक श्रोता ने लिखा है, कारे कारे बादरा, सचमुच अब तो चला जाए तो अच्छा, सूरत गुजरात में कल से बहुत तेज़ तूफानी बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है। दरअसल मुंबई में भी बहुत भारी बरसात हो रही है, शहर के देश के तमाम हिस्सों में बारिश हो रही है,
0: जी
1: लेकिन जहाँ पर बरसात नहीं हो रही है वहाँ के लिए क्या है, वो गर्मी से जहाँ परेशान हाल हैं तो उनके लिए गाना ही सुकून देगा। तो सुन
0: जी
1: लेते हैं ये
0: चलिए सुनते
1: गाना।
0: हैं।

0: इस गाने के साथ हम यही शुभकामना कर रहे हैं कि पूरे देश में बरखा दुल्हनियाँ आए और इतनी संतुलित बारिश लेकर आए कि किसी को कोई परेशानी ना हो। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार, नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: की सहेली।
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजने को हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता विपुल देशपांडे से। इनसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने और ये है इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में ऐसे कलाकार पधारे हैं जो आपके घर में भी आपसे मिल चुके हैं, आप सिनेमा हॉल में जाएं तो वहां भी आपसे मिल चुके हैं, और आपने अपने लैपटॉप के पर्दे पर या टीवी के पर्दे पर जब कभी OTT प्लेटफॉर्म पर आप गए होंगे तो वहां भी आपकी इनसे मुलाकात हुई होगी। जी हाँ, एक ऐसे अभिनेता जो सेल्यूलॉइड का कोई भी जरिया हो, कोई भी मीडियम हो, वहां अपना नाम रखते हैं और अपनी जगह उन्होंने बनाई है। आइए स्वागत करते हैं विपुल देशपांडे का। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार सभी श्रोताओं को भी।
1: विपुल जी, कहाँ से शुरू करें, शुरू से बात करते हैं, कैसे शुरुआत हुई, आप कहाँ के रहने वाले?

0: पैदाइश कहाँ की है और बचपन कहाँ बीता आपका?
1: वैसे मेरे पेरेंट्स मुंबई में ही रहते थे, तो मेरी
0: जी
1: पैदाइश आप कह सकते हैं कि मुंबई में ही हुई,
0: अच्छा
1: लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड तक मेरी पढ़ाई के बाद में हम लोग शिफ्ट हो गए मुंबई से नागपुर।
0: अच्छा
1: तो नागपुर ये मेरा वैसे विदर्भ में हम लोग का घर है,
0: जी
1: वहीं पे सब रिलेटिव्स हैं, और एंसेस्ट्रल अगर बोला जाए तो अमरावती के पास अकोलखेड़ नाम की एक जगह है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं।
0: जी जी
1: बट अभी हाल ही में सभी लोग जॉब के सिलसिले में सब बाहर आए, और पिताजी बैंक में थे और मेरी माँ जो है वो लेक्चरर थी, तो उन लोगों ने फिर नागपुर में अपना जो है परमानेंट एड्रेस बनाया और मेरा स्कूलिंग नागपुर में ही हुआ।
0: अच्छा
1: मैं पिताजी का पहले से हॉबी था कि वो स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग ये सभी जरिए में अपना एक पैशन कायम रखा,
0: जी
1: और मुंबई में ये सब करने के लिए बैंक में जॉब करते हुए पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने नागपुर चुना।
0: अच्छा
1: हालांकि एग्जैक्टली उल्टा मैंने किया कि मुझे मुंबई चुनना पड़ा वापस तो
0: जी
1: मैं वहां से वापस आया, बट वहां से आते आते बहुत समय लग गया। तो हालांकि मैं चाहता जरूर था कि मैं पढ़ाई करूं एनएसडी में या फिर ड्रामेटिक्स पढ़ूं या एफटीआई में जाऊं,
0: जी
1: बट एक्सपोजर कम होता है मुंबई के
0: बाकी शहरों में
1: मुकाबले
0: जी
1: इस क्षेत्र के लिए
0: जी जी
1: स्पेशली। इसे हम लोग करियर नहीं मानते, मतलब एक्टिंग ये हॉबी करके देखी जाती है। मैं
0: बिल्कुल
1: जिस शहर से आता हूँ वहाँ पे, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा क्रांतिकारी रवैया अपनाया था कि नहीं मुझे यही करना है,
0: हाँ हाँ
1: लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि नहीं बेटा ऐसा है पहले पढ़ाई भी कर लो,
0: जी
1: ताकि बड़ी अनसर्टन फील्ड है,
0: हाँ
1: आप नॉलेजेबल रहोगे तो आप कुछ कर पाओगे बाद में अगर ऐसा कुछ समय आया तो। बहुत अच्छी बात थी, तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग के लिए सपोर्ट किया, देन मैंने एमबीए किया। फिर जॉब करते करते ऐसा हो गया कि वो एक होता है ना 99 का पढ़ा बोलते हैं, आदमी फंस
0: हाँ
1: जाता है, तो उसमें
0: हाँ
1: फंस सा गया था।
0: अच्छा
1: बट देन फिर मैंने कहा कि नहीं यार करना तो पड़ेगा, तो फिर शुरू में नागपुर में जो भी थिएटर कर पाए हम वो मैंने किया,
0: जी
1: वहाँ पे कुछ महानाट्य थे, कुछ नॉर्मल नाटक थे, वो मैंने किए। लेकिन हालांकि मुंबई आना ही एक रास्ता था, तो मैं एक बार आके गया।
0: अच्छा
1: मैं 2000 में मुंबई आया था, तो आज से 26 साल पहले की बात है,
0: जी
1: तब मैं 20 साल का था। लेकिन तब कुछ मुझे समझ नहीं आया क्योंकि कोई चीज़ का एक्सपोजर नहीं था, कुछ चीज़ के
0: हाँ
1: बारे में मालूमात नहीं थी, तो मुझे एक महीने बाद वापस जाना पड़ा। मैंने सोचा कि यार यहाँ पे बिना किसी नॉलेज के कुछ करना पॉसिबल नहीं है। देन आई वेंट बैक, आई कम्प्लीटेड माई इंजीनियरिंग, आई कम्प्लीटेड माई एमबीए,
0: अच्छा
1: उसी के साथ कैंपस प्लेसमेंट हुआ, मैंने गोवा में एक साल जॉब किया। फिर मैं कैसे तो भी करके मतलब मिन्नतें करके मैंने कंपनी से बात की कि मुझे मुंबई जाना है, मालूम था कि मुंबई में ही करना पड़ेगा जो करना है, तो वो हुआ नहीं, वीडियोकॉन से ट्रांसफर नहीं मिली, सो आई टुक अ स्विच, मैं यहाँ पे हाइपर सिटी में जॉब करने आया।
0: अच्छा
1: सो 2-2.5 साल लग गए, उसके बाद में फिर कहीं जाके एक जगह मैंने
0: मतलब
1: ऑडिशन
0: पहली
1: दिया
0: बार आए तो एक नौकरी के लिए आए।
1: नौकरी के लिए।
0: अच्छा
1: मुंबई में मैंने 2007 से लेकर 2009 तक नौकरी की, 2009 से मैंने स्विच किया, रिसेशन हिट हुआ था उस दौरान, नौकरियां सभी की थोड़ी सी डामाडोल में थी,
0: जी
1: तो फिर 2000 मैंने स्विच किया बिरला में, बिरला एजुटेक में मैं काम कर रहा था, 2 साल ऑलमोस्ट वहां पे काम किया, और उसी दौरान मैंने एक ऑडिशन के बारे में पता किया जो कि फोर इडियट्स नाम की एक फिल्म थी, जो पता चला।
0: जी ये मुंबई की जो आपकी अभिनय की यात्रा है और उसकी अब यहाँ शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि नागपुर में जो आपने थिएटर किया तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, किस तरह के नाटक वो हुआ करते थे जिनमें आपने अभिनय किया?
1: एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है एक कलाकार के लिए जब वो स्टेज पे जाता है या
0: जी
1: स्टेज से जुड़ी कोई भी हरकत करता है,
0: हाँ
1: लेकिन सीखने के लिए बहुत ही लिमिटेड वहाँ पे स्कोप था,
0: जी
1: क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग थे या तो यहाँ पे आके वापस जा चुके थे कि उनका यहाँ पे शायद ना हो पाया हो, या फिर वहाँ से आए ही नहीं है और वहीं पे एक अपनी दुनिया बसा ली है,
0: हाँ
1: एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी करने की बात जहाँ पे होती है।
0: हाँ
1: तो नाटक नो डाउट बहुत अच्छे
0: एक
1: थे।
0: उम्र होती है जब हमें एहसास होता है कि भाई हाँ हम अभिनय की दुनिया में कुछ कर सकते हैं,
1: जी
0: और एक वो समय होता है कि जब हमें हमारे घर से प्रोत्साहन मिलता है या हमारे किसी शिक्षक ने हमें कहा कि चलो तुम तो बड़ा अच्छा कर सकते हो, तो वो हमें स्टेज पर धक्का दे देते हैं एक तरह से। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ?
1: अभिनय मैं कुछ कर सकता हूँ ये मेरी, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं एक्टर ही बनना चाहता
0: क्या
1: था,
0: बात है क्या
1: तो आई नेवर इमेजिनड एनी अदर
0: बात वाह वाह
1: प्रोफेशन,
0: वाह
1: बट जरिया नहीं मिल रहा था तो नाटक
0: हाँ
1: हम करते रहते थे। फिफ्थ स्टैंडर्ड से नाटक हर साल मेरे स्कूल में करता था,
0: हाँ
1: जो स्नेह सम्मेलन गैदरिंग होता है
0: हाँ
1: उसमें हर साल करता था, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पे करता था। और जैसे कहा आपने कि लोग सराहना करते हैं तो आपको अच्छा लगता है,
0: जी
1: आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो वही है कि आप एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक होता है कि हाँ भी लोग जब बोल रहे हैं तो समझ जाते हैं आपके, हाँ आप कर सकते हैं अच्छा, तो ये फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया,
0: जी
1: बिकॉज यू हैव परफॉर्म्ड वेल पीपल हैव अप्रिशिएटेड,
0: बिल्कुल
1: उन्होंने
0: बिल्कुल
1: वो सराहना की और फिर आगे बढ़ती गई।
0: और फिर मुंबई आके अपने आप को

0: आजमाना, ये जो मन की एक इच्छा है, बाकी सारे काम करते हुए, नौकरी करते हुए या पढ़ते हुए भी हम जो है वो इच्छा मन में कुलबुलाते रहती है,
1: बहुत ज्यादा।
0: ये
1: मैं
0: कितने तने दिनों तक चला?
1: ये सर बहुत चला, ये बेसिकली अगर बात करें तो 2006 में मेरा एमबीए जब मेरा पास आउट हो गया,
0: जी
1: मैं
0: जी
1: पहली बार जॉब करने गया तो मैंने मेरे बॉस को कहा कि मुझे सर मुंबई में आप प्लेसमेंट दे दो। तो
0: अच्छा
1: मैं चाहता था कि जॉब करते हुए मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे,
0: हाँ
1: लेकिन उस दौरान मुंबई में था नहीं। तो वो मेरा 1.5 साल जो है औरंगाबाद, 6 महीने, और फिर 9 से 10 महीने गोवा में, ऐसा मेरा बीता। और रोज रात को, इसलिए क्योंकि दिन भर काम आपका समय कट जाता है, फिर जो आपको समय मिलता है शाम को 7-8 बजे, देन यू फील कि मैंने आज जो दिन भर किया, क्या वो मुझे जो पसंद था वो किया,
0: अच्छा
1: या फिर बस करना है इसलिए किया, सर्वाइव करने के लिए किया। तो वही एक बड़ी मशक्कत और बड़ा ही एक द्वंद्व होता था कि
0: जी
1: यार ये नहीं करना चाहता हूँ, ये खुशी नहीं मिल रही है, लेकिन करना पड़ रहा है।
0: ओह
1: तो कुछ तो भी करके भगवान की दया से मुझे वो स्विच करना पॉसिबल हुआ और फिर मुंबई आया।
0: तो ये मुंबई का जो सफर है, हम उसकी बात करेंगे, मगर हमारे बातों के बीच में आपकी पसंद के गाने भी हम सुनेंगे। तो कौन सा गाना होगा सबसे पहला जो आपको पसंद है?
1: मैं जिंदगी के वो जिस नजरिए से देखता हूं, उस नजरिए से अगर बात करें
0: हाँ
1: तो जिंदगी को एक लाइट लिए और एक हंसते खेलते जितना पॉसिबल हो बिताना चाहिए, किसी को तकलीफ ना देते हुए, शायद वो ज्यादा जरूरी है। तो बच्चन साहब का एक गाना है,
0: हाँ
1: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल,
0: वाह,
1: इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं,
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया
1: ये
0: गाना
1: एक
0: है,
1: बहुत खूबसूरत सा गाना है।
0: आइए सुनते हैं।
2: जिंदगी

0: ये हंसने गाने के लिए है पल दो पल, और ये जिंदगी जो अभिनय यात्रा के रूप में आपकी मुंबई में शुरू हुई, तो वो कैसी शुरुआत थी?
1: सर, मैं जब नागपुर में था 2 साल
0: हाँ
1: के लिए,
0: हाँ
1: मैंने जॉब छोड़ के मैं नागपुर में 2 साल के लिए मैंने एक पॉज लिया था कि एक नौकरी की आदत होती है, 1 तारीख को सैलरी आती है,
0: हाँ हाँ
1: वो तो वो तोड़नी थी मुझे आदत,
0: हाँ
1: क्योंकि यहाँ पे आके कोई गारंटी नहीं थी कि रोज़ काम मिले। तो मैंने वहाँ पे एक बिज़नेस हमारा था, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो मेरी माँ के अंडर बड़ा हुआ था पूरे अच्छे
0: जी
1: से।
0: जी
1: तो क्योंकि मम्मी लेक्चरर थी और रिटायरमेंट के बाद में शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ दिस, तो फिर वो हमने थोड़ा सा एक्सपांड किया, 25 सेंटर्स हमने उसके बनाए नागपुर में। और फिर मैं यहाँ पे आने की मेरी जो एक बात हुई, तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, मैंने सोचा कि जाते काम कैसे मिलेगा।
0: अच्छा
1: तो आई नेवर हैड अ मुस्टैश इन माई लाइफ। यहाँ पे मैंने देखा कि क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, पुलिस फाइल्स, ऐसे कुछ क्राइम शोज आ रहे थे उस दौरान, जो कि बहुत हिट होते थे और हमेशा नए एक्टर्स उसमें दिखाई पड़ते थे और रिपीट भी होते थे कुछ।
0: जी
1: तो मैंने सोचा कि यार ये एक सही है, इन लोगों को नए नए बंदे लगते होंगे, तो यहाँ पे जाते हैं। और फिर मैंने सोचा कि मेरी हाइट है 6 फिट 2 इंच, भगवान ने दी हुई, तो उसका फायदा कॉप के रोल में किया जा सकता है, तो एटलीस्ट कॉप रिपीट भी ज्यादा होते हैं। सेम
0: हाँ
1: थिंग हैपेंड, बट इट टुक ऑलमोस्ट 7 to 8 months
0: अच्छा
1: टू लैंड इन अ पर्टिकुलर रोल। वो रोल ऐसे आसानी से नहीं मिल पाया, उसके लिए लाइन में लग के इंट्रोडक्शन देना पड़ा बहुत बार, कभी
0: जी
1: लाइन में लगने के बाद नंबर भी नहीं आता था।
0: हाँ
1: तो वो सब करते करते, बट मैंने मूंछ बढ़ाई और मैं थोड़ा
0: अच्छा
1: फिजिक उस हिसाब से किया कि मैं एक ऑथोरिटेटिव कैरेक्टर में जा सकूं,
0: जी जी
1: और वही हुआ कि फिर उसके बाद क्राइम पेट्रोल, साउथर्न इंडिया, इसमें मैं रेगुलर तौर पे पुलिस ऑफिसर के दौर में दिखने लगा।
0: अच्छा
1: तो एटलीस्ट मुझे पहले से कोई सीखने वाला, मैं ना कहीं जा पाया सीखने के लिए और कुछ कर पाया, बट कैमरा मुझे सीखने को वहाँ से मिला।
0: अच्छा
1: मैंने बहुत करीब से इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया
0: जी
1: और बहुत अच्छे एपिसोड्स हुआ करते थे क्राइम पेट्रोल के पहले। सुब्बू सर उनको ऑप्टिमिस्टिक के थ्रू डायरेक्ट करते थे या देखते थे,
0: जी
1: तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो वो मुझे समझने काफ़ी मिला। आजकल सटल एक्टिंग ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं,
0: जी जी
1: जिसको एक नैसर्गिक तरीके से हम लोग, जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं, तो
0: सहज और स्वाभाविक
1: सहज और स्वाभाविक
0: अभिनय जिसे
1: अभिनय
0: कहा
1: जिसको
0: जाता है।
1: कहते हैं,
0: जी
1: तो वो मुझे वहाँ से ज़्यादा अच्छे से सीखने को मिला। ऐसा लगता नहीं था कि अभिनय किया जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अभिनय ना करो, आपको करना पड़ता है कि वैसा लगे ना कि वो अभिनय हो रहा है, तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट
0: जी
1: थिंग। तो
0: जी
1: ये मुझे वहाँ से सीखने को मिला और ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, वो कंटिन्यू रही। तो दैट वॉज माई स्टार्ट इन द मुंबई।
0: क्या बात है। और उन शुरुआती दिनों में आप मराठी में भी कुछ देख रहे थे कि कुछ करने को मिले ऐसा?
1: मैं सभी चीज़ों के लिए ओपन था, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो। इंग्लिश तो खैर अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं होते, मराठी मेरी मदर टंग है,
0: जी।
1: मी मराठी है। बट यही था कि जब आया तो मुझे सामने यही चीज़ें मिली हिंदी लैंग्वेज की, तो मैं हिंदी में फिर काम करता रहा। मराठी में मैंने एक दो बार ट्राई किया जहाँ जहाँ मुझे लगा, जैसे मैंने आने के बाद में वो 4 इडियट्स जो फिल्म की थी उसके बेसिस पे, जस्ट गम्मत नाम की एक फिल्म की, लेकिन एक बड़ा ही छोटा सा किरदार मैंने निभाया जो कि शायद ही किसी को ध्यान में रहा हो,
0: जी
1: और बाकी जगह शायद ये लॉबी, लॉबी तो हर जगह है, ऐसा नहीं कि कोई गलत बात है, लॉबी मतलब एक ग्रुप जो साथ में मिलकर काम करता है,
0: हाँ
1: अब वो एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल हो जाता है इसलिए वो साथ में काम करता है।
0: जी
1: तो ये थोड़ी स्ट्रांग लगी मुझे रीजनल के दायरे में, तो
0: जी
1: वहाँ पे मेरी एंट्री ज़्यादा नहीं हो पाई। आज भी शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं मराठी अभिनेता हूँ, मैं मराठी कर सकता हूँ,
0: जी
1: बट आई वुड लव टू एक्सपांड माई थिंग। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे कुछ अच्छे किरदार मिले
0: जी
1: जो मराठी में भी नहीं हो पाऊँ, बट
0: हाँ
1: हिंदी में हमेशा मुझे साथ सबका मिला और हिंदी में मैं अब तक काम करते आ रहा हूँ रेगुलर, सो
0: अच्छा
1: दैट इज थिंग।
0: चलिए यहाँ पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का। कौन सा गाना होगा?
1: एक मैं कंपेनियनशिप, एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर पे बहुत बिलीव करता हूँ,
0: जी
1: वो कितना पॉसिबल होता है सबकी लाइफ में ये अपने अपने नसीब की बात है, लेकिन जब कोई बात बिगड़ जाए, ये एक मेरा बहुत फेवरेट
0: ओहो
1: गाना है।
0: बहुत

0: सभी चीज़ों के लिए ओपन था, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो. इंग्लिश तो खैर अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं होते, मराठी मेरी मदर टंग है
1: जी जी,
0: मी मराठी है. बट यही था कि जब आया तो मुझे सामने यही चीज़ें मिली हिंदी लैंग्वेज की, तो मैं हिंदी में फिर काम करता रहा. मराठी में मैंने एक दो बार ट्राई किया जहाँ जहाँ मुझे लगा, जैसे मैंने आने के बाद में वो फोर इडियट्स जो फिल्म की थी उसके बेसिस पे जस्ट गम्मत नाम की एक फिल्म की, लेकिन एक बड़ा ही छोटा सा किरदार मैंने निभाया जो कि शायद ही किसी को ध्यान में रहा हो.
1: जी,
0: और बाकी जगह शायद ये लॉबी, लॉबी तो हर जगह है, ऐसा नहीं कि कोई गलत बात है. लॉबी मतलब एक ग्रुप जो साथ में मिलकर काम करता है.
1: हाँ.
0: अब वो एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल हो जाता है इसलिए वो साथ में काम करता है.
1: जी,
0: तो ये थोड़ी स्ट्रांग लगी मुझे रीजनल के दायरे में, तो वहां पे मेरी एंट्री ज्यादा नहीं हो पाई. आज भी शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं मराठी अभिनेता हूँ, मैं मराठी कर सकता हूँ. बट आई वुड लव टू एक्सपांड माई थिंग. मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे कुछ अच्छे किरदार

0: मिले
1: जी
0: जो मराठी में भी नहीं हो पाऊँ।
1: हाँ
0: बट हिंदी में हमेशा मुझे साथ सबका मिला और हिंदी में मैं अब तक काम करते आ रहा हूँ रेगुलर।
1: अच्छा,
0: दैट इज थिंग।
1: चलिए यहाँ पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का, कौन सा गाना होगा?
0: एक मैं कंपेनियनशिप, एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर पे बहुत बिलीव करता हूँ।
1: जी
0: वो कितना पॉसिबल होता है सबकी लाइफ में ये अपने अपने नसीब की बात है, लेकिन जब कोई बात बिगड़ जाए ये एक मेरा बहुत फेवरेट
1: ओहो,
0: गाना है।
1: बहुत

0: जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़
1: हाँ
0: जाए। ये मुश्किल पड़ने वाली बात संघर्ष के दिनों में तो कदम कदम पे जो है इसका सामना होता
1: जी
0: है ना।
1: जी
0: कैसे मुश्किलों का सामना होता था उन दिनों में, क्योंकि एक तरफ आप काम तो कर रहे थे,
1: जी
0: मगर एक ही तरह की वो टेलीविजन सीरीज थी जिसमें पुलिस की ही भूमिकाएं ज्यादा होती थी,
1: हाँ
0: और उसमें टाइपकास्ट होने का बड़ा डर था।
1: जी,
0: कैसा था वो संघर्ष?
1: ये फील्ड ही ऐसी
0: किसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे तब कि कोई फिल्म मिल जाए बस। हाँ, तो
1: हाँ
0: वो वही वाकया जो है कि पहली
1: जी,
0: फिल्म कैसे मिली?
1: ये बेसिकली संघर्ष जो है, जैसे मैंने कहा था कि अब बोलने जा रहा था कि बच्चन साहब के जमाने में सुना हुआ था कि संघर्ष तो जिंदगी भर रहेगा, अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो डाय वो कोई संघर्ष नहीं रहेगा। तो
0: बराबर
1: जब तक हम इस जिंदगी में हैं, इस दुनिया में, तब तक संघर्ष रहेगा। उसको हम
0: जी,
1: कितनी खूबसूरती से अपने मार्ग को क्रमण करते हैं उस पर
0: हाँ
1: डिपेंड है।
0: यस,
1: तो संघर्ष हमेशा रहा और शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा रहा। कभी कभी ऐसा हुआ कि 3 3 महीने मेरे पास काम नहीं था।
0: हो
1: तो एक एक्टर के लिए जब 3 महीने काम नहीं है तो आप 3 महीने कुछ नहीं कमा रहे हो, वो एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी। लेकिन ऊपर वाले की दया है कि बीच बीच में फिर उसके बाद कुछ ना कुछ काम आता गया और सस्टेन करता रहा, हैंड टू माउथ
0: अच्छा
1: वो चीज़ें चलती रही। और टाइपकास्ट आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फिर उस दौरान लोगों को ऐसा होता है कि वो आपके डेटाबेस में ही फीड करके रखते हैं कि इंस्पेक्टर में ये 10 लोग हैं, पहला फोन जाएगा तो आपको इंस्पेक्टर के लिए आएगा, अगर
0: हाँ
1: डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए ये 20 लोग हैं।
0: जी
1: तो ये चलता रहा काफ़ी दिन, फिर हमें नहीं बोलना पड़ा। बहुत बार मुझे नहीं बोलना पड़ा कि मैं नहीं करूंगा, और वो बहुत बड़ी बात होती थी कि आपको मालूम है आपको काम मिल रहा है, उसी से आपका घर चलने वाला है,
0: लेकिन मना करना
1: लेकिन
0: पड़ता
1: मना
0: था।
1: करना पड़ रहा है क्योंकि यार उसके अलावा कुछ दे ही नहीं रहे हैं। एक अभिनेता के तौर पे अगर मैं
0: जी
1: वेरिएशन ना दे पाऊं
0: जी जी
1: तो कुछ खास मजा नहीं आता है जिंदगी में। तो वो नहीं करते करते कभी हाँ कभी नहीं, जब जरूरत है उस हिसाब
0: हाँ
1: से हमने काम किया। फिर कहीं ना कहीं लैंड हुए, हमने ये भी सोचा था कि कोई फिल्म

0: जो है वो एटलीस्ट अच्छे इसमें मिल जाए।
1: जी
0: तो इट हैपेंड। और ये जैसे मैं वर्क ग्रेनरी पे मतलब बिलीव करता हूँ।
1: अच्छा
0: वर्क ग्रेनरी मतलब जैसे धान्य का कोठार होता है,
1: जी, अनाज का
0: अनाज का
1: कोठार।
0: कोठार होता है, उसमें एक बहुत बड़ा मतलब जो जो 20-20, 25-25 फीट के कोठार होते हैं, जो
1: जी
0: पहले किले पे भी हुआ करते थे,
1: हाँ
0: जहाँ पे लोग आके उस पर धान्य डालते थे। कि मेरे एक भाई जैसे दोस्त ने मुझे बताया
1: हाँ
0: कि काम आप करते हो आप उसमें डालो, वैसे एक धान्य का जैसा वर्क ग्रेनरी है, तो उसमें आप डालोगे एक बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार कुछ नहीं होगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो जो अनाज है वो उसका लेवल तक भर जाएगा।
1: जी
0: फिर आप जो भी डालोगे, एक भी छोटा गड़वा आप उसमें डालोगे
1: जी
0: अनाज, तो बाहर आएगा। सो वर्क ग्रीनरी, आप पहले कितने काम करो शायद उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जब वो अनाज का जो कोठार है वो भर जाएगा, तो आप छोटा भी कुछ करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा।
1: आह
0: तो इट इज लाइक दैट। तो शायद वो मेरे और सभी केस में काम करता है। तो पहली फिल्म मुझे जो मिली वो ऐसे ही बहुत जगह ऑडिशन, इंट्रोडक्शन, ऑडिशन,
1: अच्छा
0: इंट्रोडक्शन दे दे के एक जगह से कॉल आया। और एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे जिन्होंने अर्जुन रेड्डी नाम की फिल्म साउथ में की थी,
1: जी
0: उनका नाम था संदीप सर, संदीप वांगा रेड्डी। उन्होंने मेरा वो ऑडिशन देखा,
1: अच्छा
0: मुकेश छावड़ा साहब के यहाँ से वो ऑडिशन आया था, एंड ही लाइक्ड इट फॉर द कैरेक्टर ऑफ द डीन ऑफ द हॉस्पिटल वेयर कबीर सिंह जहाँ काम करता है। और फिर वो फिल्म में मुझे एक किरदार मिला जो कि बहुत अच्छा किरदार था, सीन्स शायद कम थे लेकिन एक नोटिस करने लायक किरदार था।
1: जी
0: और वो फिल्म इतनी बड़ी हुई तो एक छोटे से छोटे किरदार को भी आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है।
1: बिल्कुल
0: तो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म दैट हैपेंड इन माय लाइफ। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद कबीर सिंह के नाम से मुझसे जानते होंगे।
1: हाँ, बड़े सेलिब्रेट पर्दे का ये जो पहला अनुभव था,
0: नहीं
1: इसमें सारे बड़े नाम,
0: बहुत
1: तो कहीं किसी तरह का प्रेशर महसूस किया आपने या इन सब के साथ काम करते हुए क्या अनुभव क्या था?
0: मैं मेरे आर्ट से बहुत प्यार करता हूँ सर, तो मुझे बिल्कुल प्रेशर फील नहीं होता जब मैं परफॉर्म कर रहा होता
1: क्या बात, बहुत बड़ी बात आपने कही है, और मतलब जो भी इस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सही बात है कि समझे इस बात को कि आप अपनी कला से कितना प्रेम करना चाहिए।
0: हूँ। बस वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी वही है।
1: हाँ
0: अगर
1: हाँ
0: आप आपकी कला में निपुण हो, आपने उसे सफिशिएंट टाइम दिया है,
1: जी
0: तो सामने मतलब मैं बच्चन साहब के साथ भी रूबरू हुआ हूँ पर मुझे कभी प्रेशर नहीं आया।
1: ओह
0: तो और यही सब लोग हैं जो इस लेवल पे जा चुके हैं, जैसे बच्चन साहब को तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं।
1: जी
0: जब मैं उनके साथ पहली बार रूबरू हुआ, वागले की दुनिया के हमारे शो के थ्रू एक्सचेंज हुआ था,
1: हाँ हाँ
0: हमारा शो और उनका शो KBC, और वो हम
1: जी
0: लोग,
1: जी
0: तो हमें नसीब प्राप्त हुआ उनके इर्द गिर्द बैठने का, उनसे बात
1: हाँ
0: करने का।
1: हाँ
0: तो मुझे प्रेशर नहीं लगा, मुझे लगा कि अपना ही कोई एक सीनियर, एक बहुत बड़ा,
1: जी
0: अभी मेरी आंखों में पानी आ रहा है, वो फील था वो अलग ही था। तो वो उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा, और उनसे मैंने बात भी की, मैंने उनको कहा, आई रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर कि मुझे 1 मिनट अलग से बात करनी है। जैसे
1: अच्छा
0: अरे आप दिन भर साथ में थे सर, क्या प्रॉब्लम है, बोले 1 मिनट बात करनी है।
1: हाँ
0: तो वो आए, बटन साहब बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत ही अच्छे दिल से वो आए, उन्होंने कहा हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैंने बोला सर एक प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में।
1: हाँ हाँ
0: अरे क्या हो गया?
1: अच्छा
0: अरे सर वो बचपन से आपको देखते देखते बड़े हुए हैं,
1: हाँ
0: तो अभी जब भी एक्टिंग करते हैं तो मेरा कोई ना कोई दोस्त या कोई डायरेक्टर ऐसा बोलता है कि यार खुद से थोड़ा बच्चन कम कर ले। ही लाफ्ड द सेम वे द वे यू
1: ओह
0: लाफ्ड।
1: अच्छा।
0: डर वाला मुझसे होता नहीं है।
1: हाँ। यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि एक गाना चुनो तो आप बच्चन साहब की फिल्म का गाना चुनेंगे? हाँ
0: बिल्कुल, मुझे उनका एक बहुत खूबसूरत गाना आता है और जो मैं गाता भी हूँ बहुत सारे गेट टुगेदर्स में,
1: हाँ
0: शराबी फिल्म का दे दे प्यार दे,
1: ओहो
0: आई लव दैट सॉन्ग। इट स्टार्ट्स विद हम बंदे हैं प्यार के, तो एक बहुत खूबसूरत गाना है जो मैं हमेशा
1: क्या बात,
0: पसंद।
1: चलिए सुनते हैं।

0: शराबी फिल्म का गीत हम सुन रहे थे, दे दे प्यार दे। और ये प्यार जो आपने मांगा इंडस्ट्री से, वो आपको मिलता गया, बढ़ता गया ये प्यार। और इस प्यार की अब इंतहा होना बाकी है, मगर इस प्यार के बढ़त में जो अगला स्टेप है, वो कौन सी फिल्म थी, कौन सा प्रोजेक्ट था?
1: इस दौरान काफी फिल्म, एके वर्सेस एके नाम की अनिल कपूर और अनुराग कश्यप जी के साथ एक फिल्म थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी।
0: हाँ हाँ,
1: वो मैंने एक फिल्म की, बहुत अच्छी फिल्म थी। अनिल जी और अनुराग जी के साथ काम करने का मौका मिला, दोनों इतने महान एक्टर्स भी हैं।

0: अपने आप में एक बहुत बड़ा यूट्यूब स्टार है आज के दुनिया में,
1: जी
0: तो उसके साथ की थी वो दोनों सीजन मैंने उसमें किए, तो उसमें भी मेरा प्राइमरी करेक्टर रहा। नेगेटिव शेड है, ग्रे शेड है। पहले सीजन में विलन थे जड़ी चक्रवर्ती साहब,
1: जी
0: जो कि साउथ से सत्या मूवी आई थी, उन्होंने सत्या का करेक्टर
1: हाँ
0: किया।
1: हाँ हाँ
0: और दूसरे में थे जावेद जाफरी साहब,
1: जी
0: तो ये दोनों के साथ मैंने वो कैरेक्टर किया था जो कि ग्रे शर्ट था, लेकिन काम करते हुए बहुत मजा आया। फिर बीच में गांधी गोड से एक युद्ध,
1: हाँ
0: जो राजकुमार संतोषी साहब की फिल्म थी, उसका किस्सा बड़ा खूबसूरत है। हुआ ये कि मैं रणजीत कपूर सर के साथ नाटक किया करता था।
1: अच्छा
0: रणजीत कपूर सर जो अन्नू कपूर साहब के बड़े भाई हैं, 9 साल बड़े,
1: हाँ
0: वो थिएटर की वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पर्सनैलिटी होंगी आज इंडिया में।
1: जी
0: तो उनके साथ में नाटक करता था, चेखव की दुनिया, शेर अफगन भी हम करने वाले थे। तो सर को मैं बहुत मानता हूँ। लॉकडाउन ख़त्म होते ही मैंने सोचा कि मैं वापस आ जाता हूँ, फैमिली मेरी नागपुर में ही थी,
1: हाँ
0: लेकिन मैं आ गया, एटलीस्ट थोड़ा बहुत काम चालू हुआ था।
1: जी
0: मैं रंजीत सर को मिलने गया। रंजीत सर ने कहा कि विपुल कल आ जाओ, उस दौरान जो है वो सोसाइटीज़ लॉक हुआ करती थी, सबको एंट्री नहीं होती थी। बोले तुम्हारे पास गाड़ी है तो मुझे तुम छोड़ देना, मुझे जाना है जुहू,
1: अच्छा
0: तब हमारी रास्ते में बात भी हो जाएगी। मैंने बोला सर ठीक है। मैं गया, सर को पिकअप किया मैंने। हम जाते जाते बातें कर रहे थे, जो कुछ बातें थी मैंने भी एक फिल्म लिखी थी मैंने सर को बताई,
1: अच्छा
0: बातें हुई। मुझे पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा जू चलो,
1: अच्छा
0: बच्चन साहब के घर के सामने से जाएंगे। तो मैं वहाँ ले गया गाड़ी। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मेरी मंजिल आ गई, मैं उतरता हूँ,
1: हाँ
0: मिलते हैं बाद में। मैं बोला ठीक है सर। तो उन्होंने उतरते वक्त पूछा तुम राज जी से मिले हो? मैंने बोला कौन राज जी सर?
1: हाँ
0: अरे राजकुमार संतोषी।
1: अच्छा
0: अरे मैंने बोला सर मैंने तो नाम ही सुना है, आप राज जी से मिले हो, कैसे मैं मिलूंगा? अच्छा तो आ जाओ चलो। फॉर मी इट वॉज लाइक गूस बम्प,
1: ओ
0: इतने बड़े इंसान से आ जाओ चलो मिलने।
1: हो
0: मैंने तुरंत मैंने ठीक है आता हूँ, मैंने गाड़ी लगाई, उनके साथ ऊपर गया।
1: हाँ
0: ऊपर गया तो राज जी नहीं थे, बाहर गए हुए थे।
1: अच्छा
0: उन्होंने कहा कि थोड़ी देर आप इंतजार कीजिए, और वो चले गए अंदर किसी वर्कशॉप टाइप डिस्कशन के लिए।
1: अच्छा
0: अब वो बहुत बड़ा सा फ्लैट टॉप फ्लोर पे मैं था, मैं वहां पे जाके, टेरेस ओपन था, वहां पे जाके बैठ गया। और एक इंसान बड़ा खूबसूरत ख्यालों में खो जाता है। मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, मेरे लंबे बाल हुआ, लॉकडाउन में मैंने कंधे तक बाल बढ़ा लिए थे।
1: अच्छा
0: मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, राज जी की एंट्री होती है, राज जी बोलते हैं अरे यार ये कौन है, इसको ले लेते हैं। ऐसे मैं कुछ सोच रहा था। हालांकि राज जी आए थोड़ी देर बाद, उन्होंने मुझे देखा नहीं, बाद में मुझे मिलाया गया उनसे।
1: हाँ
0: और एक कैरेक्टर उनके दिमाग में था, जो उनके एसोसिएट ने आके मुझे बताया
1: हाँ
0: कि डीएसपी राणा नाम के एक उस दौरान के अच्छा कैरेक्टर था।
1: जी
0: तो उनको बताया कि ये है विपुल देशपांडे। रंजीत सर ने बताया कि मेरा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, थैंक्स टू रंजीत सर फॉर दैट। और उन्होंने कहा कि आप इससे जो भी आपके पास काम हो आप कराइए, बहुत बढ़िया कलाकार है। तो उन्होंने कहा यार डीएसपी का कैरेक्टर है लेकिन इतने खूबसूरत बाल बढ़ा रखे हैं,
1: हाँ
0: काटने पड़ेंगे। मैंने बोला सर मैं काट लूंगा, बालों का टेंशन नहीं है, अब काम करना जरूरी है।
1: बराबर
0: देन ही गिव मी दैट कैरेक्टर एंड आई
1: अच्छा
0: वर्क विद हिम। इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम ऑल्सो।
1: ओटीटी की वेब सीरीज के लिए, फिल्मों के लिए आपने काम किया, टेलीविजन के लिए सीरीज की है और बड़े पर्दे पर भी काम किया है। ये तीनों अलग-अलग मीडियम है मगर इसके शूटिंग की जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट एक जैसी होती है।
0: जी
1: कुछ फर्क आपने एक एक्टर के रूप में महसूस किया है इसमें?
0: फिल्म और ओटीटी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि इसके

0: एक तयशुदा तारीख है कि उस दिन वो एपिसोड तो टेलीकास्ट होना ही है,
1: होना ही है।
0: जी,
1: तो जैसा आपने कहा कि एक तयशुदा तारीख, तो उस वक्त आपको पहुंचाना है। और आपके पास में बहुत सारा काम होता है।
0: जी जी,
1: बिकॉज महीने में अगर वो 28 दिन टेलीकास्ट हो रहा है, 28 दिन आपको काम करना पड़ेगा, 28 स्टोरीज आपको लगेंगी।
0: जी,
1: तो मेरा एक बहुत ही बड़ा काम जो मैंने किया है आज तक, वो था वागले की दुनिया।
0: हाँ जी,
1: मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि जेडी सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, जेडी मजेठिया सर, आतिश कपाड़िया सर, ये दोनों प्रोड्यूसर्स हैं। मुझे मौका मिला सुमित राघवन जैसे इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ भाई के करेक्टर में काम करने का। तो सुमित दा मेरे मेंटर जैसे हैं।
0: क्या बात है।
1: दो और हमारे आइकॉन थे, भारती मौसी, भारती आचरेकर
0: जी,
1: और अंजन सर, अंजन श्रीवास्तव, जो कि सीनियर कपल थे वागले। ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है,
0: बिल्कुल,
1: इनसे सीखने को बहुत मिलता है। तो ये तीनों के साथ काम करने में बड़ा मजा आया, मुझे बहुत सराहना भी मिली इन लोगों के साथ काम करते हुए, बहुत सीखने मिला। ये मेरा पहला डेली शो था।
0: अच्छा,
1: तब तक मैं फिल्म्स और ओटीटी ही करना चाहता था, तो मैं उसी पे फोकस ज्यादा कर रहा था। बट ये कैरेक्टर बड़ा है अपने आप में, मुझे
0: ये मुझे लगता है 2022 की बात है।
1: जी जी, 2022 की बात है, आज से 4 साल पहले।
0: हाँ,
1: तो ये मुझे फोन आया, जैसे मैंने कहा वर्क ग्रीनरी, उसी कॉन्सेप्ट में मुझे कॉल आया। ये होता है कि आप जैसे कोई न्यू कॉमर भी आता है, वो सोचता है यार मैं अभी ये ऑडिशन क्यों दूं, वो क्यों दूं। मुझे लगता है हर एक ऑडिशन जो आपके पास आता है वो कुछ ना कुछ मीनिंग लेके आता है।
0: हाँ,
1: वो शायद कहीं ना कहीं ऐसे सर्कल में जाएगा जहां से आपको बाद में फ्यूचर में काम मिलेगा।
0: अच्छा,
1: क्योंकि सबको चाहिए अच्छे काम करने वाले। तो कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, दे नीड गुड पीपल। तो आपके पास जो भी मौका, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, आप उसको छोड़ो मत। आपके पास में भले ही आपको लग रहा है कि ये इतना मजा नहीं आ रहा है, बट आप उसको शूट करके भेज दो।
0: जी,
1: आजकल तो बहुत आसान हो गया है। पहले मैं जब आया था 2013 में, ये ऑनलाइन वीडियो बना के भेजने वाली बात नहीं थी।
0: बिल्कुल,
1: आज ऐसा हो गया है कि आपको स्क्रिप्ट आती है, आपका मोबाइल में अच्छा कैमरा है, आप उसको स्टैंड पे लगाओ और खुद ही घर पे बैठ के शूट कर लो,
0: अपना
1: ऑडिशन भेज दो, सही लगा तो वो बुलाएंगे। ये पहले नहीं हुआ करता था। पहले एक भी ऑडिशन क्यों ना हो, जाना पड़ता था जहां जहां बुलाया जा रहा है, वहां पे लाइन में खड़ा होना पड़ता था।
0: दर दर भटकने वाली बात है।
1: बिल्कुल, हमने दर दर की ठोकरें खाई है। और बहुत जगह से बाहर से ही निकाला जाता था कि यहाँ कुछ काम नहीं है। कुछ जगह पूछा जाता था कि आपकी अपॉइंटमेंट है, नहीं सर पता करने आए, कुछ काम है क्या, नहीं नहीं कोई कोई काम नहीं है। तो ये भी बहुत बार, बहुत साल हुआ है मेरे साथ। तो लेकिन उसका अपना एक मजा था।
0: हाँ,
1: वो सफर है।
0: अच्छा,
1: मंजिल पे पहुंचने का मजा तभी आता है जब सफर अच्छा हो।
0: हाँ,
1: अगर सफर आप डायरेक्ट चले गए तो क्या मतलब।
0: बराबर।
1: तो एक अलग मजा रहा है, अभी भी मैं एंजॉय करता हूँ, स्ट्रगल अभी भी खत्म नहीं हुआ।
0: हाँ,
1: अभी भी ऐसे बहुत सारे किरदार है जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन शायद वहां तक पहुंचने के लिए अभी समय होगा। बट जब भी मिलेगा ये सफर आनंददायी ही रहेगा।
0: क्या बात। कोई ऐसा गाना जो आपके इस संघर्ष के दिनों में बार बार आपके जहन में गूंजता हो?
1: देवानंद साहब का जो एक गाना मैंने उन पे फिल्माया हुआ गाना देखा था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला।
0: क्या बात है।
1: और फिक्र को धोए में उड़ाता।
0: हम दोनों फिल्म का गाना है।
1: हाँ जी,
0: बेहद लोकप्रिय गीत,
1: बेहद लोकप्रिय।
0: आइए सुनते हैं।
2: मैं जिंदगी

0: विपुल जी, जिंदगी का साथ निभाते निभाते आप वागले की दुनिया तक पहुंचे।
1: जी
0: हम उसकी बातें और थोड़ा विस्तार से करना चाहेंगे।
1: जी
0: अंजन जी जैसे वरिष्ठ और श्रेष्ठतम कलाकार के साथ काम करना, भारती जी आचरेकर और सुमित दादा के बारे में आप बता रहे थे, सुमित राघवन जी, कैसा इंटरेक्शन होता था ऑफ द कैमरा, कैसे सब माहौल होता था?
1: एक बहुत ही खूबसूरत बात सुमित दादा के साथ ये होता था
0: जी
1: कि मैं जब तक सेट पे जाऊं और हम लोग रिहर्सल करें
0: जी
1: तब तक मैं उसको बोलता था कि सुमित दा ये करते हैं, सुमित दा ये करेंगे, हाँ ये करेंगे।
0: हाँ
1: जैसे ही एक्शन होता है वो दादा मुझे बोलता था
0: जी,
1: क्योंकि
0: आपने बड़े भाई का रोल
1: मैंने
0: किया,
1: उनके बड़े भाई का रोल किया था।
0: मनोज नाम था
1: मनोज
0: उसका,
1: वागले मेरा
0: उसका नाम
1: मनोज वागले मेरा नाम था।
0: जी।
1: तो बड़ा एक अजीब सा वो लगता था, मुझे
0: हाँ
1: बड़ा मजा आता था उसमें सुनते हुए कि
0: हाँ
1: जब तक एक्शन नहीं हो रहा है तब तक मैं उनको दादा बोल रहा हूँ, सभी हम लोग सभी से
0: जी
1: सीनियर है। और फिर उसके बाद में जैसे ही एक्शन हो गया तो सुमित दादा की यहाँ से आवाज आती थी, अरे
0: हाँ
1: दादा। खैर ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन जहां तक उनके साथ काम करने का सवाल है, सुमित दादा को भी 40+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो बहुत
0: जी
1: बचपन से काम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: फास्टर फेने वो
0: हाँ
1: शो किया करते थे 80s में शायद,
0: बिल्कुल
1: और अंजन जी और भारती मौसी का तो क्या ही कहना, मतलब वो मेरे फर्स्ट रील मदर फादर थे और
0: हाँ,
1: उन्होंने उतना ही प्यार दिया।
0: आपको वो पहला शॉट याद आ रहा होगा अंजन जी के साथ जो दिया था आपने।
1: अमेजिंग इट वाज, मतलब
0: हाँ
1: पहला शॉट सुमिता के साथ भी, अंजन जी के साथ भी। तो हालांकि सुमिता के साथ तो मेरा मॉक शूट भी हुआ था,
0: अच्छा
1: क्योंकि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जिनको प्रोडक्शन बुलाता है, चैनल बुलाता है, एक ऑडिशन होता है, उसके बाद में देखा जाता है कि इनके साथ में केमिस्ट्री होगी कि नहीं होगी।
0: हाँ
1: तो मुझे बुलाया था मेरे ऑडिशन के बाद में, शॉर्टलिस्ट होने के बाद में प्रोडक्शन ने मॉक शूट के लिए।
0: अच्छा
1: तब सीन ये था कि माँ मतलब भारती मौसी एडमिट है
0: अच्छा
1: और ये जो करेक्टर है मनोज वागले का, ये थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड करेक्टर है
0: ओके
1: मेरा, जो करेक्टर मैंने जो प्ले किया था, और उतना ही कूल और उतना ही शांत सुलझा हुआ है राजेश वागले जो कि सुमित दादा प्ले करते थे।
0: हाँ
1: तो इतना उसमें डिफरेंस दिखाना था कि माँ के हॉस्पिटल में वो उधर बजर बजा रही, कोई आ नहीं रहा है और ये भड़का हुआ है, और फिर नर्स को बुलाता है, नर्स को झाड़ता है और वो डर के चली जाती है। इस टाइप का एक वो सीन था। मैं सीन प्रिपेयर करके आया, सुविधा को भी मैं पहली बार मिला था। तो बड़ी प्लीजेंट पर्सनालिटी है, जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं उतने ही डाउन टू अर्थ होते हैं, उतने ही दिल के खूबसूरत होते हैं, मैंने देखा हुआ है। ये तभी तो एक अच्छी एक्टिंग कर सकते
0: बिल्कुल
1: हैं, इंसान
0: बिल्कुल,
1: अगर दिल से अच्छा नहीं है तो कुछ
0: बहुत
1: नहीं
0: बड़े
1: है।
0: कलाकार इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छे और बड़े इंसान हैं
1: जी,
0: और बहुत विनम्र होते हैं।
1: बहुत विनम्र होते हैं, इनको कभी भी आप देखेंगे नहीं कि अननेसेसरी शॉर्ट टेम्पर हो किस पे चला रहे हैं कुछ भी।
0: जी।
1: तो ये बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो सुमित दा के साथ वो भी मैंने जो एक मॉक शूट किया, एक्शन होने के पहले तक मैं बिल्कुल उस जोन में नहीं जाता,
0: जी
1: लेकिन एक्शन के बाद मैं चाहता हूं कि इंसान वही रहे जो कैरेक्टर है, वही मैं फील करूं अंदर से। और ये मुझे वहां सीखने को मिला। हमारे डायरेक्टर थे समीर कुलकर्णी सर, अमित कानेरे सर,
0: जी
1: दीपेश शाह, ये तीन डायरेक्टर्स थे वहां पे। इन तीनों ने भी जब तक सीन ओके नहीं होता तब तक वो आगे नहीं भेजते थे।

0: मेरे ख्याल से ऊपर से आया हुआ है, जीडी सर से तू आया है कि यार ये चीज करनी है तो अच्छी करनी है, छापना नहीं है कि हाँ चलो हो गया आगे बढ़ो। हालांकि वहां पे जाके कोई रोक ही लेगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं ये सीन नहीं है, आप भी रोजमर्रा के आर्टिस्ट आप रोज कर रहे हो चीजें तो हो जाती है, लेकिन जो मूड आया है वो हम करते थे। जैसे अंजन सर मुझे मोस्ट ऑफ टाइम अगर मेरा और उनका सीन है वो मुझे उनके रूम में बुला लेते थे।
1: अच्छा
0: कि यार विपुल आ जाओ अपना सीन है, रूम में बैठ के रिहर्सल करते हैं। वो भी थिएटर आर्टिस्ट है, मैंने भी थिएटर किया है, मुझे बड़ा पसंद है, तो वो बुला देते हैं और मैं और अंजन सर फिर हम लोग रूम में ही उनके वैनिटी में ही पहले रिहर्स करते थे क्या मूड रहेगा। सिर्फ लाइन्स ही नहीं होती है एक आर्टिस्ट के लिए, न्यूएंसेस जो छोटे छोटे उसमें की हरकतें होती है
1: जी
0: वो ज्यादा मैटर करती है।
1: बिल्कुल,
0: पॉजेस मैटर करते हैं। टीवी जो है आपके छोटे से छोटे एक्सप्रेशन को पकड़ लेता है, आई मूवमेंट हो, चाहे आपने कहीं बीच में हल्का सा कान मूव किया है या मराठी में आवंडा गेड़ा समझते अपन,
1: एक घूंट लेने की जो एक प्रक्रिया
0: वो है, तो ये छोटी छोटी बातें जो है कैमरा नोटिस करता है आपकी, तो ये चीज सीखने को मिलती थी। भारती मौसी के साथ इमोशनल सीन करने में बहुत कष्ट लगा था,
1: प्रयास करना
0: पड़ता था कि उस लेवल तक कैसे उसके आजू बाजू पहुंचा जाए। लेवल तो पहुंचने की बात ही नहीं करता, शी इज सो सीनियर। तो भारती मौसी के साथ जब इमोशनल सीन एक माँ बेटे वाला होता था, और बहुत ज्यादा उनके साथ ही रहे इनिशियली
1: जी,
0: बाद में फिर अंजन जी के साथ भी रहे, लेकिन पहले माँ के साथ वो बेटे का बॉन्डिंग दिखाना था, तो एक अलग जोन में चले जाता था फिर मैं। मैं उतना जरूर समझता कि ये चीज उस राइटर ने इतने प्यार से लिखी है, इतने इमोशन सोच के लिखी है, मैं करने वाला हूँ एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट के साथ
1: जी,
0: तो वो उस लेवल पे जाना ही चाहिए तो ही मजा आएगा। तो आई यूज टू हैव इट फॉर एन आर टू आर, मैं लिखता था, खुद मैं लिखता हूँ जितने भी लाइन्स आती है, वैसे तो स्क्रिप्ट मिलती है, बट आई यूज टू राइट इन माय वर्ड्स एंड देन रिपीट इट ऑन रेगुलर बेसिस। ये मैंने सीखा है शायद नाना पाटेकर साहब से भी सुना था, आमिर खान साहब से भी सुना था, कि वो खुद लिखते हैं एंड देन वो रिहर्स करते हैं 20 बार 25 बार।
1: जी जी,
0: उसी से फायदा होता है, आपके पास जो भी है वो स्क्रिप्ट है
1: जी,
0: वो स्क्रिप्ट में ही चीजें मिलेंगी आपको जो डिलीवर करनी है
1: जी।
0: तो ये इन तीनों के साथ मैंने सीखा है और बहुत मजा आया। बाकी भी मेरे जितने भी को एक्ट्रेस थे, मेरी वाइफ थी विद्या वागले, सुकन्या ने वो किरदार किया था, फिर हमारे पड़ोसी थे अमित और दीपक पारिक, और उनके साथ भी करने में बड़ा मजा आता था, एक अलग ही जोन में वागले जो है चलता रहा। वागले ने मुझे बहुत कुछ दिया
1: जी जी,
0: घर घर में पहचान मेरी मनोज वागले के नाम से।
1: हाँ, मैं अभी उसी सवाल पे आने वाला हूँ कि घर घर में आप पहुंचे, मगर ये वागले का शूटिंग करने के बाद जब आप अपने घर नागपुर पहुंचे तो कैसा रिएक्शन था?
0: मेरे बहुत सारे दोस्तों को पता तो था ही कि मैं ऑलमोस्ट 7-8 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने मेरे काम देखे थे, क्राइम पेट्रोल साउथ इंडिया, लेकिन वो छोटे मोटे काम थे जो ज्यादा दिखते नहीं थे।
1: अच्छा,
0: तो वागले करने के बाद जब घर घर में शील पहुंची तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी बताना चालू किया, ये हमारा दोस्त है, तो लोग यकीन नहीं करते थे कि ये तेरा रोज कहाँ से आ गया। नागपुर का तो नागपुर में होगा, या ऐसा थोड़ी होता है। बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते थे। एक बहुत ही मजाक किया सीन हुआ मेरे साथ।
1: अच्छा,
0: मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, 2023 की बात है, हॉस्पिटल में हम लोग थे। एक बार मैं नीचे से, मैं और मेरी शायद माँ थी मेरे साथ, हम लोग नीचे से लिफ्ट में ऊपर के फ्लोर पे जा रहे थे। वहां पे एक इंसान आए, उन्होंने मुझे थोड़ी देर घूर के देखा, फिर अपने आप में कुछ सोचा।
1: अच्छा,
0: और थोड़ी देर में बोलते हैं, आप ही के जैसा एक आर्टिस्ट है।
1: अच्छा,
0: दिखता बिल्कुल आपकी तरह।
1: अच्छा,
0: मतलब किसमें? वो बहुत बड़ा एक शो है, वागले की दुनिया।
1: हाँ।
0: उसमें मनोज वागले का कैरेक्टर करता है।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल हूबहू आपकी तरह दिखता है। धन्यवाद। अच्छा।
1: जी जी,
0: मैंने बोला, सर काम अच्छा करता है क्या?
1: हाँ।
0: अरे बहुत अच्छा, बहुत उमदा।
1: अच्छा,
0: अच्छा। चलो नाम तो नहीं खराब कर रहा है। I like that thing. फिर किसी ने बताया, शायद कोई और भी थे लिफ्ट में, उनको बताया कि ये वही है, बट उन्होंने बिलीव नहीं किया। कि आप क्या करोगे आप?
1: ये बिल्कुल रोवेन एटकिंसन जैसा हो गया, वो कई बार अपने इंटरव्यूज में बता चुके हैं
0: जी,
1: कि कई लोग उनसे मिले हैं और वो उनसे पहली बार यही कहते हैं कि क्या आपको पता है आप मिस्टर बीन जैसे दिखते हैं।
0: ट्रू ट्रू।
1: जी जी जी, तो ऐसा ही वाक्य आपके साथ?
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हाँ। और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि उसने बोला कि यार काम अच्छा करता है।
1: हाँ।
0: एक कलाकार के लिए सबसे जरूरी वही बात,
1: और क्या चाहिए,
0: और क्या चाहिए,
1: क्या बात है।
0: तो ये घर घर में नाम उसी वजह से पहुंचा, मेरे जितने भी रिश्तेदार है उनको भी अच्छा लगा।
1: हाँ,
0: दोस्त हैं उनको अच्छा लगा, और मैं जहाँ भी जाता था वो बड़े ही प्राउडली मुझे इंट्रोड्यूस भी कराते थे।

0: गाते भी थे। तो ये एक प्यार है, अपनों का प्यार
1: क्या
0: है।
1: बात
0: मैंने
1: है।
0: एक फिल्म देखी थी, टॉपिक निकला नागपुर का इसलिए
1: हाँ
0: कि आर माधवन साहब की एक फिल्म थी, राम जी लंदन वाले। ये
1: अच्छा हाँ
0: बहुत खूबसूरत फिल्म है। उसमें ये कुक होते हैं इंडिया में, उन्हें यूएस में लिख के जाया जाता है किसी फैमिली के थ्रू काम में।
1: अच्छा
0: अब वहाँ पे उनके साथ जो स्टोरी होती है वो तो अलग, लेकिन वहाँ के शेफ कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं
1: अच्छा
0: और वर्ल्ड शेफ टाइटल जीत लेते हैं।
1: ओहो
0: उन्हें वहां पर रेस्टोरेंट दिया जाता है खरीद के, उनको वहां पर सब दिया जाता है।
1: हाँ
0: पर वो बोलते हैं कि यार ये सब मुझे आप मत दो, मैं तो वापस जाऊंगा ना। तो बोलते हैं अरे सर, आपको इतना बड़ा रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क में, ये वो सब दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है,
1: हाँ
0: गाड़ी रहेंगी आपके पास में। बोले क्या मतलब वो गाड़ी का, अगर मैं अपने दोस्तों को ना घुमा पाऊं, मैं
1: हाँ
0: अगर मेरे फैमिली के साथ चक्कर ना मार पाऊं, मैं वो सब सब चीज़ों को शेयर ना कर पाऊं अपने लोगों के साथ, तो
1: हाँ
0: मज़ा तो वही है।
1: बिल्कुल
0: तो मुझे वही अच्छा लगता है कि जाओ तो एक अपने लोग मिलें, उन्हें अच्छा लगे, दैट
1: क्या बात है।
0: इज मोर इम्पोर्टेंट।
1: तो अब उन अपने लोगों के लिए जो नागपुर में बसते हैं, आपके दोस्त, आपके घर वाले, परिवार वाले, उनके लिए आप कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: वैसे अलग से तो बहुत सोचा नहीं, लेकिन देवानंद साहब का ये जो गाना था, है अपना दिल तो आवारा,
1: हो आइए सुनते हैं।
0: जी।

अभिनेता विपुल देशपांडे से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी
2: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी पर श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के पास विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के अपार अवसर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया संयुक्त कार्य समूह तंत्र के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
4: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
3: श्री मोदी ने एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों में अब देरी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि भारत उपग्रह प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इंडोनेशिया को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। आपातकालीन ऋण गारंटी

0: योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सबसे अधिक लाभान्वित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई हुए हैं। उन्हें 98% गारंटियां प्रदान की गई हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को कपास उत्पादन मिशन की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने भारत के कपास क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए मिशन की समग्र कार्ययोजना की सराहना की। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एकड़ कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य तैयार करने की आवश्यकता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झारखंड से 2 मीट्रिक टन आम्रपाली आम की व्यावसायिक निर्यात दुबई के लिए कराया है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने कहा कि यह निर्यात आदिवासी और महिला किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज केरलम के स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन के साथ एक वर्चुअल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें राज्य में प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों और जन स्वास्थ्य पहलों के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा की गई। श्री नड्डा ने विभिन्न स्वास्थ्य पहलों को लागू करने में राज्य द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और केरलम के स्वास्थ्य सेवा तंत्र को और मजबूत करने के लिए केंद्र से निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। केरलम के वायनाड जिले के कलाडी में आज वायनाड सुरंग सड़क परियोजना के निर्माण स्थल पर भूस्खलन होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं जबकि 7 अन्य लापता हैं। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने बताया कि बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य पुलिस तथा अग्निशमन एवं बचाव सेवा टीमें तैनात की गई हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ईरान के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi addressed a joint session of the Indonesian Parliament in Jakarta this afternoon. Highlighting the growing partnership between the two nations, Mr. Modi said India and Indonesia have immense opportunities to deepen cooperation across a wide range of sectors. He noted that when India and Indonesia stand together, they reinforce the world's faith that democracy creates opportunities and builds trust. The Prime Minister said history will be made when India's 140 crore people and Indonesia's 29 crore people move forward together in pursuit of shared progress.
2: आने वाले 25 वर्ष हम दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं यह संकल्प लेकर आया हूँ कि भारत और इंडोनेशिया मिलकर पूरी मानवता को एक नई ऊर्जा से भर सकते हैं। जब भारत के 140 करोड़ नागरिक, इंडोनेशिया के 29 करोड़ नागरिक साझा प्रयासों से मिलकर आगे बढ़ेंगे तो दुनिया एक नया इतिहास रचते हुए देखेगी।
1: The Prime Minister said India and Indonesia are working closely to counter terrorism through the Joint Working Group mechanism. He reaffirmed India's commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific and stressed the importance of ensuring freedom of navigation in the region. Prime Minister Modi also expressed gratitude after being conferred Indonesia's highest civilian honour, Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia.
2: मैं इंडोनेशिया के लोगों के इस स्नेह को हृदय से, नम्रता से स्वीकार करता हूं। ये सम्मान हम दोनों देशों की डेमोक्रेटिक वैल्यू

0: गैर फिल्मी भजन अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लखवीर सिंह लखा का गाया ये भजन।
1: श्री रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी क्या तेरे मन में भी राम है। हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी भजन, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:23 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युवा मंच।

हेलो, गुड इवनिंग युवा दोस्तों और हमारे तमाम श्रोताओं का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में और आज के संग में। मैं हूँ आपके साथ आपके रेडियो दोस्त रेनुमन कोटिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेगमेंट की जो हर उम्र के लोगों के लिए

खुशी, सुकून और नई ऊर्जा लेकर आता है। जी हाँ, भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति अपने काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त हो जाता है कि खुद के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सैर सपाटा न केवल हमें रोजमर्रा की भागदौड़ से कुछ समय के लिए दूर ले जाता है, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी तरोताजा कर देता है। सैर सपाटा केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह ज्ञान और अनुभव बढ़ाने का भी एक बेहतरीन माध्यम है। जब हम किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति, भाषा, खान पान, रहन सहन, इतिहास और परंपराओं को करीब से जानने का अवसर मिलता है। यही अनुभव हमारे व्यक्तित्व को समृद्ध बनाते हैं। क्यों युवा दोस्तों, सही है ना? भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा सा समय निकाल के घूमना भी जरूरी होता है। भारत जैसे विविधताओं के से भरे देश में घूमने के लिए असंख्य सुंदर स्थान हैं। उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय, दक्षिण में समुद्री तट, पश्चिम के विशाल रेगिस्तान और पूर्वोत्तर की हरी भरी वादियां, हर क्षेत्र अपनी अलग पहचान रखता है। हमारे अपने हिमाचल प्रदेश में भी

युवा दोस्तों, यात्रा की सही योजना पहले से बना ली जाए तो सफर अधिक सुरक्षित और आनंददायक बन जाता है। मौसम की जानकारी, आवश्यक दवाइयां, पहचान पत्र, पर्याप्त पानी, बजट और सुरक्षा संबंधी सावधानियां पहले से ही तय कर लेना हमेशा लाभदायक होता है। आज डिजिटल युग में ऑनलाइन बुकिंग, डिजिटल मैप और मोबाइल ऐप्स ने यात्रा को पहले की तुलना में काफ़ी आसान बना दिया है। फिर भी यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत करना और उनकी संस्कृति को समझना सबसे अनमोल अनुभव होता है। सैर सपाटा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि जीवन को नए नजरिए से देखने का अवसर है। यह हमें प्रकृति के करीब लाता है, तनाव कम करता है, नई यादें देता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। तो आइए जब भी अवसर मिले अपने परिवार और मित्रों के साथ किसी सुंदर स्थान की सैर का आनंद लें और यह संकल्प लें कि जहां भी जाए वहां की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने में अपना योगदान अवश्य देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और आज हम आपको लेकर चलते हैं, जी हाँ, अगर आप प्रकृति, रोमांच, शांति और यादगार यात्रा का सपना देखते हैं तो लेह लद्दाख आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए। जी हाँ, आप अब समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको लेकर चल रहे हैं लेह लद्दाख। जी हाँ, ये स्थान समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रमुख शहर है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां, नीला आसमान और शांत वातावरण हर पर्यटक का मन मोह लेते हैं। अगर घूमने की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है पेंगोंग झील का, जो अपने बदलते रंगों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके बाद नुब्रा घाटी, खारदुंगला, मैग्नेटिक हिल, शांति स्तूप, ले पैलेस, हेमिस मठ और जानसंकर नदी जैसे पर्यटन स्थल लेह लद्दाख की यात्रा को यादगार बना देते हैं। चलिए, बातों के साथ साथ मनोरंजन करना हम कैसे भूल सकते हैं, तो आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
2: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
1: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
1: वो कैसे?
2: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
1: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
2: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
1: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
2: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
1: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
2: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।

0: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: युवा मंच कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत हमारे तमाम श्रोताओं का, हमारे युवा दोस्तों का। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं लेह लद्दाख की। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा स्थान है ये घूमने के लिए। लेह लद्दाख की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और बौद्ध संस्कृति, यहाँ के प्राचीन मठ, रंग बिरंगे प्रार्थना झंडे और शांत वातावरण मन को नई ऊर्जा से भर देते हैं। लेह लद्दाख घूमने के लिए मई से सितंबर का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। ऊंचाई अधिक होने के कारण पहले एक दो दिन आराम करें ताकि शरीर वहां के वातावरण के अनुसार खुद को ढाल सके। पर्याप्त पानी पिएं, गर्म कपड़े साथ रखें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार आवश्यक दवाइयां भी रखें। यात्रा के दौरान स्थानीय संस्कृति, पर्यावरण और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। प्लास्टिक का उपयोग कम करें और प्राकृतिक सुंदरता को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। युवा दोस्तों, अगर इस बार छुट्टियों में कुछ अलग, कुछ रोमांचक और कुछ यादगार अनुभव करना चाहते हैं तो लेह लद्दाख की यात्रा ज़रूर करें। यकीन मानिए, यहाँ की वादियाँ, शांत वातावरण और रोमांचक सफ़र आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा।

इसी खूबसूरत गीत के साथ आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे युवा मंच के एक नए और रोचक विषय के साथ। चलते चलते आपको बता दें, कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला अंकित धीमान से और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। अब अपने रेडियो दोस्त रेनुमन कोटिया को दीजिए अनुमति। युवा दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:55 और 40 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी, साथ ही कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी भी।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ। मोजां ग्राइंदियां ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:23 पर। विषय रहेगा प्रधानमंत्री भूजल योजना। शाम 7:10 पर सुनेगा कार्यक्रम किसान वाणी। आज इस कार्यक्रम में बातचीत का विषय रहेगा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। साथ ही होंगी भेंट वार्ता, होंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी और आपके मनोरंजन के लिए कुछ लोकगीत। रात्रि 8 सुनिएगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। देश गान सुनवाए जाएंगे रात्रि 8:30 पर। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार पेश किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में आप सुनिएगा गायिका KS चित्रा के गाए कुछ चुनिंदा गीत। रात्रि 9:30 से रात्रि 10:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम धाम गीतांदे प्रसारित किया जाएगा। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 10:30 पर। आकाशवाणी शिमला से शाम 6 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 न्यूज 8:09। रात्रि 11 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। कल सुबह 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना प्रसारित किया जाएगा। कल सुबह 7:10 पर कार्यक्रम सुबह सुहानी में जानकारियों के साथ होगा संगम मनोरंजन का भी। महिलाओं के कार्यक्रम सुनो सखी, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12:23 पर। ये थी विस्तृत जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की और कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर हम

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, उसके लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

एल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से धर्मशाला में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के नए कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस कार्यालय के धर्मशाला में खुलने से कांगड़ा सहित आसपास के जिलों के लोगों को अब शिमला नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कांगड़ा जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है और इसी दिशा में कई सरकारी कार्यालयों को कांगड़ा स्थानांतरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी अन्य सरकारी कार्यालयों को कांगड़ा जिले में स्थानांतरित करने की योजना है।
1: धर्मशाला हमारी पर्यटन राजधानी के रूप में हमने घोषित किया है। जब यहाँ कुछ ऑफिस जाएंगे, काफी बिल्डिंग यहाँ खाली पड़ी है, तो यहाँ के लोगों के रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आएगी। तो अभी काफी बिल्डिंग यहाँ खाली है। मेरा तो विचार है कि कुछ और ऑफिसों को भी यहाँ आने वाले वक्त में शिफ्ट किया जाए और निश्चित रूप से जो ओबीसी का कार्यालय यहाँ खुला है, ओबीसी वर्ग को जो उनके अधिकार है वो मिलने चाहिए।
0: भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कोर ग्रुप की एक बैठक आज शिमला स्थित पार्टी कार्यालय दीप कमल में आयोजित की गई। बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद अनुराग ठाकुर, सुरेश कश्यप, हर्ष महाजन, सिकंदर कुमार सहित कोर ग्रुप के सभी सदस्य मौजूद रहे। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि कोर ग्रुप ने प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज व शहरी निकाय चुनावों के परिणामों और आगामी संगठनात्मक मुद्दों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। बिंदल ने कहा कि बैठक में कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों, अधूरी गारंटियों और प्रशासनिक विफलताओं के खिलाफ प्रदेशव्यापी जन आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 3.5 वर्षों के कार्यकाल की विस्तृत चार्जशीट तैयार कर उसे जनता तक पहुंचाया जाएगा। कांगड़ा जिला के गग्गल हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। प्रभावित परिवारों को मुआवजा और R&R की राशि देने के बाद 15 दिन में घर खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं। प्रभावित गांव के लोगों ने ऐसे नोटिस जारी करने पर नाराजगी जताते हुए आज उपायुक्त हेमराज बैरवा से मुलाकात कर मकान बनाने के लिए कम से कम 1.5 वर्ष का समय देने की मांग की।
2: मेरा नाम रोशन लाल प्रधान, ग्राम पंचायत से है। हमारी जमीन जो विस्तारीकरण के अंदर गई है, तो उसमें RR का जो डुबू लॉन्च है वो हमें मार्च अप्रैल में मिला है। तो इस वजह से हम मकान तैयार ना कर सकते। 50 साल में लाल से भी तो कोई जमीन नहीं मिल रही है, इस वजह से लेट हुए हैं। DC साहब से इसी प्रश्न की है कि हमें कम से कम 1.5 साल का टाइम दिया जाए।
3: का है पैसा बताया गया ना, उसके बाद RNR का पैसा बताया गया कि हमें कितना मिलेगा। एंड मौके पे जब पैसा डल रहा है तब हमें पता लग रहा है कि कितना पैसा पड़ रहा है। उसको जब हमसे NOC साइन करवाई गई थी तब हमें वहाँ के जो ऑफिशियल आए थे उन्होंने बोला था कि आपको RNR मिलने के बाद 1.5 साल का टाइम मिलेगा। तो अभी ये सब क्यों हो रहा है?
0: इस मामले पर उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि कानून के अनुसार मुआवजा मिलने के बाद तय समय सीमा के भीतर कब्जा लेना जरूरी होता है, लेकिन प्रशासन पूरी प्रक्रिया में प्रभावितों की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर निर्णय लेगा।
4: एयरपोर्ट का

0: सिचुएशन हुआ है उसमें अब हमारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। कंपनसेशन भी दिया जा चुका है, R&R भी दिया जा चुका है। तो उसकी प्रक्रिया के तहत जब पूरा कंपनसेशन और R&R किसी परिवार को मिलता है तो एक्ट के मुताबिक उस जगह का कब्जा लेना होता है। सो कानून इमीडिएट पोजीशन की बात करता है, लेकिन वस्तुस्थिति को देखते हुए इसमें आगे बढ़ने का प्रयास हम सबका होगा ताकि लोगों को समय भी मिले और लोग जिस एक भाव के साथ इस एक्विजिशन में सबने अपना साथ दिया है वो भाव भी उनका बरकरार रहे।
1: प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत व बचाव कार्यों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में लाहौल स्पीति जिला के मुख्यालय केलंग में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को आपदा के समय ड्रोन के प्रयोग को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
2: लाहौल स्पीति में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लोड केयरिंग ड्रोन संचालन पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष किरण बढ़ाना ने की। प्रशिक्षण में अधिकारियों को आधुनिक PX6 92300 ड्रोन के सुरक्षित संचालन और आपदा के समय इसके उपयोग की जानकारी दी गई। ये ड्रोन अधिकतम 75 किलोग्राम तक भार उठाकर सड़क संपर्क टूटने की स्थिति में दवाइयां, खाद्य सामग्री और अन्य राहत सामग्री दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचाने में सक्षम है। उपायुक्त किरण भराना ने कहा है कि लाहौल स्पीति जैसे दुर्गम जिले में ये तकनीक राहत एवं बचाव कार्यों को नई गति देगी। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 6:06 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ।
4: अरे सागर बड़े खुश।

कार्यक्रम सुरमई सांझ सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं संतोष फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और रचना है संतोष आनंद की।

बदलते रिश्ते। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की मिलीजुली आवाजों में। शब्द रचना थी अनजान की और संगीत बद किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।

दीजिए अनुमति। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 6:30 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मोजा ग्राइंदियां।

0: कार्यक्रम मौजा करांदी सुनने वाले सारे ही श्रोतियां जो पंच दी तरफा ते राम राम कने अज टियाले पर मेरा साथ दे करदे गुलाबो जी तुहानू भी राम राम
1: जी बिल्कुल राम राम पंच जी तुहानू भी राम राम कने जितने भी हाड़े सुनने वाले श्रोते ने ग्राम वासी हन कौन कोई भी हन तत नसब नहीं जो मेरी तरफा ते भी राम राम कने पंच जी दिखा हाँ आए बैठे ने अज फ्री बड़े दिनों बाद गप शप ले करी लोक जानकार ले करी कने मतिया सारिया जड़िया से गल्ला बातें ले करी है ना
0: बिल्कुल और दिखा तो हाँ जड़े से बारिश रोज ही जड़ी से होवा करती कदी प्यागा हो यादी कदी सिंजा हो यादी है ना
1: जी बिल्कुल ता
0: इस मौसम च जड़ा से हाँ दे किसान भाई जड़े से खास कर जिन्हें धान लगाने ना अल्ले भी है ना
1: जी
0: दिन धान दी जड़ी है रुपाई करनी ता काफी अच्छा समय जड़े से चले आते ना जो जी बारिश हो दी ता से धान जड़ा से अपने खेतर च लगाई सकते
1: हैं बिल्कुल पंच जी जड़ा हाड़ा क्षेत्र है ना थोड़ा मध्यवर्ती जड़ा क्षेत्र है तो हले तक भी धान दी पनीरी जड़े से लोग ला कर दे कने दिखा पंच जी मैं टियाले पर जालू आना लगी हुई ना ता रस्ते से दिखा मैं ऐसा तमाशा दिखा कि मुझे 5 मिनट खड़ो ही कर दिखना पे बोला क्या
0: अच्छा क्या क्या चीज थी से?
1: चीज ऐसी थी ना दिखा मैं इतो सबनी ने एक गल साझा करा कर दी कि एक दिखा रस्ते च खेत हा कन तिथु दिखा लगभग 20 ते 22 जड़िया जनानियां थी सारियां
0: अच्छा
1: हाँ सह धान दी पनीरी ला कर दी कने पनीरी दे सोगी सोगी दिखा सह नचा भी कर दी ही है
0: अच्छा
1: खेतों
0: इनके
1: च
0: आनंद पूरा ले कर दी
1: हाँ
0: कम भी
1: बिल्कुल
0: कर दी कन्ने कन्ने जेड़े से मौज
1: बिल्कुल
0: पूरी
1: इक्की बखे जड़ी से बड़िया बड़िया औरतां ही से ना गाना लाया हा बड़ा छैल
0: अच्छा
1: मैं भुली गई है कने दिखा दुए बखे जड़िया हरी जना सा हथे तिना दी दाना दी पनीरी थी कने दिखा तिना नचने दा भी जड़ा सा नजारा कने मिंजो मन नहीं करा दा हा कि मैं इत्थे आवां है ना
0: जी जी
1: कने
0: यानी कि थोड़ा भी मन करा था तू भी ताना दे खेतर च बिच बड़ी आए तो चिकड़े जेड़े से तू भी तिस
1: बिल्कुल
0: गीत संगीत दा आनंद लेंदे है ना
1: बिल्कुल पंच जी दिखा हर एक चीज दा अपना ही एक आनंद है कने ये जड़ा आनंद है इसका अलग ही मजा है तिथु ही खाना पीना भी तेना रखे हा कने दिखा सब कुछ जड़ा इंतजाम से खेतां च था कने इस आनंद दा एक अलग ही मजा था है ना
0: बिल्कुल से ओदे माहौल जेड़े सन जो अपने घर ग्राएं बिच ही दिखने मिलता और दिखा तो हाँ साढ़े जेड़े किसान न अजकल अपने खेतर च व्यस्त न खूब सारे और खूब सारी रौनक भी जड़ी से खेतर च अजकल लगी हैं और जलो हाँ कम करदे करदे जेड़े से गीत संगीत जेड़े से तेदा आनंद लेंदे तो कमे का भी पता नहीं चलता है
1: बिल्कुल
0: ना
1: थकान तो होंदी नहीं है ना
0: बिल्कुल और कन्ने कन्ने ही जलो हाँ रोटी खाने का भी समय जेड़ा सा होंदा तो उस वेले भी जेड़ा से एक अलग ही अनुभूति होंदी जलो हाँ खेतर च सारे कट्ठे बैठी के जेड़े से रोटी खाते नहीं कि जलो
1: बिल्कुल
0: हाँ पिकनिक मनाना की होंदी एक तरह का
1: हाँ
0: इस हिसाबे
1: बिल्कुल
0: दा
1: बिल्कुल
0: आनंद और अनुभूति जेड़ी से सांझो होंदी है ना
1: होंदी बिल्कुल होंदी है कने इस ते हाँ जो सीख भी मिलती है कि हाँ जो अपना कम रली मिली करी जड़ा सा करना चाहिए है कने देखा कम में दा पता नहीं लगता कने सोगी एक जड़ा कम है एक सह जिया तो हाँ गलाया कि एक पिकनिक टाइप जड़ा सा वो ही आंदा है ना
0: जी जी
1: कने देखा इन चीजा दा मजा जड़ा है सह पंच जी ग्राएं विच ही दिखने को मिलता है हाँ कोशिश करनी है कि ये चीजा जड़िया सह बरकरार रहन ता इस ताई हाँ जो अपना पूरा सहयोग अपना पूरा योगदान खेतों के विच तुसा कम करदे ता कोशिश करनी है अपने अखे बखे दे जड़े भी किसान हैं खास करी किसान बहनां ता अप्पू च आपसी मेल मिलाप जड़ा से बनाई रखना है ना
0: जी ता हुण अस चलना लोक गीत दी तरफ पर इसते पहले एक संदेश भी जड़ा सा जरूर सुनना है ना
1: जी
0: जी
1: जी
2: अरे सागर बड़े खुश नजर आ रहे हो क्या बात है
3: खुश तो होना ही है भाई क्योंकि हिमाचल

0: अरुणाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
1: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
1: वो कैसे?
0: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं।

0: की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
1: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: पिता गुलाब जी संजय दी बेला है माता दी भेंट सुनी कने आशा करनी कि सारे पसंद आए होनी है ना।
1: जी बिल्कुल
0: और कने कने साढ़े टियाले दा और साढ़े आस पास दा जेड़ा भी माहौल है सह भक्ति में हुई गया इस लोक भजन कने।
1: जी बिल्कुल
0: और इसके बाद हाँ फिर जेड़ी इसे गल करनी हूँ।

0: मक्का दे बारे च है ना जी।
1: जी
0: अजकल मक्की दी फसल जिहड़ी है साढ़े किसानां दे खेतरां च लहलहा करदी है, और इस विच इक गल होर दिखणे मिला दी कि अहां दे जिहड़े मक्की दी खेती इस विच फाल आर्मी बर्म दा जिहड़ा सै प्रकोप साढ़े इलाके विच जिहड़ी से दिखणे हो मिला
1: मिला
0: करदा
1: दा
0: है
1: जी
0: ना।
1: बिल्कुल
0: इस विच ये पिछले 2-3 सालों ते बीमारी जिहड़ी है फाल आर्मी बर्म साढ़े किसानां दी शिकायतां भी आउंदियां कि जगह जगह जिहड़ी से बीमारी फैला करदी, और इस ते जिहड़े से उहनां दा खेती दा जिहड़ी मक्की दी खेती इस दा उत्पादन जिहड़ा से लगातार घटा करदा है ना।
1: जी बिल्कुल
0: तां वैसे तो इस दे छिड़काव करने ते जिहड़ा से कई दवाइयां जिहड़ियां से चलियां न, तिस अहां अपने विशेषज्ञ कन्नै गलबात करके साढ़े जिहड़े नज़दीकी दे कृषि विभाग न उत्थू कृषि विकास अधिकारी ने या फिर कृषि प्रसार अधिकारी तिन्हां कन्नै गलबात करके जिहड़ा से अहां अपनी
1: दवाई
0: फसल
1: दा
0: दा
1: छिड़काव
0: निदान
1: करदे।
0: जिहड़ा से करी सकदे न।
1: जी
0: पर
1: बिल्कुल
0: इस दे कन्नै कन्नै साढ़े विशेषज्ञ ये भी बोला करदे न कि इस विच छिड़काव करने ते जिहड़ा से ज़्यादा प्रकोप जिहड़ा से घटता जाना, पर पूरी तरह जिहड़ा से नियंत्रण इस विच नहीं होना है।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: इस वास्ते कुछ छेक अहाँ जो भी सावधानी है जिहड़ी से बरतना चाहिए, जियां कि अहाँ जो जल्लू अपनी अहाँ कोई फसल कट्टी लेंदे तो तिस दी जिहड़ी से तिस दे बाद अच्छी तरह जिहड़ी से अपने खेतरां दी जुताई जिहड़ी से करना चाहिए है ना,
1: जी बिल्कुल
0: और तिना खेतरां जो जिहड़ा से अगले 10-15 दिन वास्ते जिहड़ा से खुले ही छड़ी देना चाहिए। एक अच्छी धूप अगर साढ़े खेतरां च लगी जाती है तो तिस ते क्या होंदा कि जिहड़े कीड़े मकोड़े होंदे ने हानिकारक या फिर उन्हां दे अंडे होंदे ने सह खत्म हो जाते है ना।
1: जी बिल्कुल खरी गल तुसीं दस सकदे पंच जी। कहो जी देखा जैलू हाड़ी जमीन हल्की कने हवादार होंदी है तां हाड़ा जिहड़ा खरपतवार कने जियां तुसीं गला करदे
0: हानिकारक
1: कि
0: जिहड़े
1: कीट
0: कीड़े
1: जिहड़े
0: न,
1: ना
0: हाँ जी हाँ
1: सै
0: जी।
1: भी मुक्की आंदे ने ना।
0: और इस दे कन्नै कन्नै अहां दे किसान भाइयों जो जिहड़ा सै फसल चक्कर भी जिहड़ा सै अपनाना चाहिदा है ना।
1: जी
0: अगर
1: बिल्कुल
0: अहां हर बारी मक्की दी फसल लगांगे तां साढ़े विशेषज्ञ बोला करदे न कि साढ़े जिहड़े कीट जिहड़ा फैला करदा फाल आर्मी बर्म इस जो जिहड़ा सै हर बारी जिहड़े सै खाने जो मिली जांदा है, तां
1: जी
0: इक सुंडी जिहड़ी सै बोलदे कि तिन्हां जो अगर अच्छा खाने मिलदा तां सै हजारा दे तादाद च जिहड़े सै होर सुंडी जिहड़ी सै
1: पैदा होंदी।
0: तैयार करी
1: जी
0: जांदियां न।
1: जी
0: तां
1: बिल्कुल
0: इस चक्कर जो तोड़ने वास्ते जिहड़ा सै अहां जो इन्हां दे अंडे जिहड़े सै उन्हां दे चक्कर जो तोड़ने वास्ते घट करने वास्ते जिहड़ा सै फसल चक्कर जिहड़ा सै अपनाना जरूरी
1: जरूरी
0: है।
1: है
0: यानी कि
1: जी।
0: अहां अपने मक्की दी जगह जिहड़े सै दाली भी लगाई सकदे, माह होई गई, मूंगी होई गई, या फिर सर कुल्थी है ना जी।
1: जी
0: इस तरह
1: बिल्कुल
0: दी फसल अगर अहां एक मौसम च लगाई देंगे तो ये जड़ी चीज़ें ने दाली जड़ी हैं इन्हें जो ये जड़ी सुंडी है ये नहीं खाती है, तो इससे उन्हें जो खाने जो नहीं मिलना था उन्हों का जीवन जोड़ा सा खतरे पी जाता, और उन्हों का जड़ा अंडे देने का चक्कर है और तादाद बढ़ने की जड़ी खतरा हों से घटी जाता है ना।
1: जी बिल्कुल पंच जी बड़ी खरी कने अच्छी गल तुसीं दस्सा करदे इस वेले कने इस दे सोगी ही अहां अगर तुहानूं जो भी दस्सा करदा कि मक्की दे खेत दे विच ये बीमारी ये कीट जड़ा है सै फैलिया है तां तुसां जैविक जड़ा कीटनाशक हाड़े बने हुए न है ना
0: हाँ
1: तां
0: जी हाँ
1: तिन्हां
0: जी
1: दा इस्तेमाल भी तुसां करी सकदे न अपनी मक्की दे खेत दे विच कने।
0: बिल्कुल गुलाबे जी तुम सही गल गलाई, क्योंकि अहां दे खेत च जिहड़ी से अगर 200 किलोग्राम प्रति एकड़ दी दर कन्नै अहां नीम दी खली मिलांगे ना उस ते भी जिहड़ा से प्रकोप घटदा, कन्नै ही बिजाई दे पहले अहां बीज उपचार भी जिहड़ा से कर लेना चाहिदा। बीज उपचार वास्ते जिहड़ा साइंडे नीली प्रोल जिहड़ा 19.8% और ये कुछ एक दवाइयां ने जिन्हें जो हाँ 6 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम दी दर कन्नै जिहड़ा से बीज उपचार कर सकते, और बिजाई ते तुरंत बाद जिहड़ा से 5 फेरोमेन ट्रैप प्रति एकड़ जिहड़ा से लगाई सकते ने। यानी कि फेरोमेन ट्रैप जिहड़ा से इसते सुंडी जिहड़ी है इस दी तरफ जिहड़ी आकर्षित हुंदी है ना।
1: जी बिल्कुल
0: कीट प्रभावित जिहड़े साढ़े फसल है तिस जो अहाँ जिहड़ा से प्रति 5% NSKE 5 मिलीलीटर प्रति लीटर दे पानी च घोल मिलाई के जिहड़ा से छिड़काव करी सकते, और क्षति 10% से ज़्यादा अगर हुंदी है यानी कि साड़ी फसल जो 10% भी ज़्यादा नुकसान हुंदा तां कीटनाशक क्लोरोएंडिनी प्रोल नामक दवाई हुंदी जिहड़ी कि 18.5 AC 4 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी दा जिहड़ा घोल बनाई करी इस जो हाँ छिड़काव जिहड़ा से करी सकते। इस दे कन्नै होर भी दवाई जियां कि स्पिनट टो रैम 11.7 AC या फिर इमामे बैक्टीन जिहड़ी है 52.5 AG यानी कि 0.4 ग्राम प्रति

0: लीटर पानी च जेह्ड़ा से अहां गोल बनाई के इसका छिड़काव भी जेह्ड़ा से करी सकते हैं, है
1: जी
0: ना।
1: बिल्कुल पंच जी, बड़ी अच्छी गल है। कने इन दवाइयां दा इस्तेमाल हाँ करना है पूरी मात्रा पूरी, जियां तो हाँ दस्या है कि कितने क्षेत्र दे विच कितनी मात्रा कितना पानी हाँ पाना है, ये सारी जानकारी हाँ जो होना जरूरी है।
0: जी
1: इस दे सोगी ही पंच जी हुण बरसात दा टाइम है, कने हाँ घड़ी घड़ी बार बार ये गल गलांदे ने कि इस वेले जड़ा हाँ जो पौध रोपण जड़ी है करना सै सफल जड़ा सै रहिंदा है। कोई भी अहाँ पौधा लाते तो जमीन दे विच नमी होने दे कारण पौधा जड़ा सा तैयार हो ही आता है ना,
0: हाँ जी, हाँ
1: लगभग
0: जी,
1: कहे जे
0: पानी
1: कदम
0: देने की जरूरत नहीं पौंदी।
1: जरूरत नहीं
0: हाँ जी,
1: पौंदी
0: हाँ
1: है
0: जी,
1: ना। जी बिल्कुल, कि गला दा ध्यान रखना है। इस दे सोगी अहाँ ध्यान रखना है कि अहाँ दे जड़े ग्राम वासी होंदे से इन दिनों च धारा च जाते है ना,
0: जी जी
1: ता धारा दी सब्जी अहाँ नहीं खान। कने दिखा धारा दा दूध हो गया, दही हो गया, घ्यो हो गया, कने इसका अलग ही एक मजा होंदा है ना।
0: जी जी
1: ता
0: जी
1: ग्राएं दे विच ए दियां चीजां हाँ नहीं खान पीन, ता दिखा ग्राएं दा जड़ी रौनक कैसे अधूरी रही आंदी है ना।
0: जी
1: ता
0: जी
1: इन्हां सारियां छोटियां छोटियां गल्लां दा जड़ा सा काफ़ी महत्व रहिंदा है। गलाने दा मतलब ये है कि हाँ जो मौसमी सब्जी फल कोई भी है तो समझो खाना चाहिए है। कहे जी देखा मौसमी सब्जी जालू अहाँ खाते तो इस पौष्टिक मात्रा जड़ी होंगी से भरपूर मात्रा दे विच रहती है। कोई भी फल है मौसमी फल है, लीची हुई है, अंब हुई है इस वेले, या फिर जामुन हुई है, अमरूद हुई है, हाड़े आड़ू हुई है ना,
0: जी
1: तो इस
0: जी
1: वेले जड़ा सा भरपूर मात्रा दे विच हाड़े बाग बगीचे दे विच रहते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी है कि अहाँ कोई भी सब्जी कोई भी फल बरसात दे मौसम दे विच खास करी जालू हाँ खांदे तां हाँ जो साफ सुथरा धोई करी ही से खाना चाहिए है ना।
0: जी जी
1: जी बिल्कुल। तां पंच जी हुण अहाँ कार्यक्रम है मौजां ग्राएं दियां, कने मौजां ग्राएं दियां अहाँ लाणियां न, कने सुनना एक होर प्यारा जिहा लोकगीत, पर इसते पहले सुनना एक सुनेह।
0: जी
2: शिव भूमि हिमाचल के पर्वतों गांव में लोग
3: बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
4: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
3: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
4: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
3: वो कैसे?
4: करीब 15,000 करोड़ रूपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रूपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
3: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
4: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
3: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
4: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
3: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
4: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
5: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान, सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: दा किसान साथी हाँ प्यारा दिया लोग गीत जड़े से बसंत लाल ठाकुर और दी आवाज़ च सुनिया कने जरूर आशा है कि तुम तो पसंद आया होना। इस ते बाद हाँ फिर ते जड़ा से जानकारी दी तरफ चलते न और जानकारी है अटल भूजल योजना दे बारे च है ना जी।
1: जी बिल्कुल पंच जी, दिखा पटारू च अटल भूजल योजना जड़ी की भारत सरकार दी एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य भूजल स्तर पर सुधार करना कने पानी दा सतत कने वैज्ञानिक प्रबंधन जड़ा से सुनिश्चित करना है।
0: जी
1: यह योजना साल 2019 च शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत किसाना कने स्थानीय समुदायों की भागीदारी से बरखा दे पानी जो इकट्ठा करना, जल संरक्षण कने पानी दे विवेकपूर्ण उपयोग कने भूजल दे पुनर्भरण जो बढ़ावा दिते गया है। योजना का मुख्य लक्ष्य जड़ा है घटते भूजल स्तर जो रोकना कने भविष्य ताई पर्याप्त जल उपलब्ध कराना है। किसाना जो घट पानी वाली फसल फिसल जड़ी किस्मा होनियां जड़ियां कि घट पानी दे विच तैयार होनियां जो अपनाने, इस दे सोगी ही सूक्ष्म सिंचाई तकनीका दा उपयोग करने कने जल संरक्षण दे प्रति जागरूक इसा योजना दे तहत जड़ा से कित्या जांदा है।
0: जी
1: इस योजना दे तहत जल संकट घट करने कने कृषि उत्पादन बढ़ाने कने पर्यावरण संरक्षण च महत्वपूर्ण सहायता जड़ी असें मिली है। तो किसान साथियों गलाने दा मतलब यही है कि अहां जड़ा से बरखा दे पानी दा बचाव करना है कने इस दा उपयोग दे विच इस जो लेना है तो कियां करना है ये अहां बड़ा गल जड़ी से ध्यान दे विच रखनी है ना।
0: भी जी जी हाँ जो अटल भूजल योजना के तहत जेड़ा सा अजकल बरसात जे विच कम करने दी जेड़ी से जरूरत है और इस विच हाँ बरसात दे मौसम च जेड़ा सा बरसा दा जेड़ा पानी है तिस जो हाँ इकट्ठा करने वास्ते जेड़ा सा चेक डैम बनाई सकते हैं, तालाब बनाई सकते अपने ग्रां विच है ना जी।
1: बिल्कुल
0: इसते क्या होंदा कि इस दे कन्ने कन्ने अहां दे घर ने तिन्हां दे रेन वाटर हार्वेस्टिंग जेड़े सिस्टम

0: बिल्कुल
1: तिस द
0: बिल्कुल
1: भी जड़े से हाँ बनाई करी जड़े से भूमि दे जल जो जीता स्तर जड़े से बढ़ाई सकते हैं और इसते हाँ द आने वाले समय च उस जल का जड़े से जलू जरूरत पौधी सज तो उसका उपयोग जड़े से करी सकते हैं आसानी
0: बिल्कुल
1: करने।
0: बिल्कुल। हाँ इतों कोई भी गल कर देना ता तिसदा कोई ना कोई मतलब जड़ से रहिंदा है, तुहाड़ी जान फर्ज बनता है कि तुसा तिन्हां गल्लां दा जड़ा से जरूर तिन्हां जो अपनान, है ना जी। बिल्कुल, कन्नै कार्यक्रम है मौजां ग्राएं दियां, कन्नै हुण अहां फिरी चलना है मौजां दी तरफ, कन्नै सुनना एक प्यारा देया लोकगीत।
1: जी।

0: जीता श्रोताओ, इसी प्यारे दे लोकगीत कन्ने साढ़े कार्यक्रम दसवें जेड़ा सा भी खत्म हो करदा। पर जाने ते पहले दस दिए कि इस कार्यक्रम जो तुहानू तक पहुँचाने वास्ते तकनीकी सहयोग दिता अंकित दिमान और कने प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह। हुण अपने टियाले दे सदस्य पंच जो
1: कने गुलाबो जो दिया अनुमति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मुझ ग्राइंदियाँ, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, AI और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदूर तक फैली हुई है।
2: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदूर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
1: प्रधानमंत्री इस समय जकार्ता में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसे अतुलनीय भारत की जीती जागती तस्वीर बताया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए अब तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और GMR समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले ही पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के अंतर्गत 4 लाख से ज्यादा गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस साल मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSE सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अटलांटा में आज मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi addressed a joint session of the Indonesian Parliament in Jakarta this afternoon. Highlighting the growing partnership between the two nations, Mr. Modi said India and Indonesia have immense opportunities to deepen cooperation across a wide range of sectors. He noted that when India and Indonesia stand together, they reinforce the world's faith that democracy creates opportunities and builds trust. The Prime Minister said history will be made when India's 140 crore people and Indonesia's 29 crore people move forward together in pursuit of shared progress.
2: आने वाले 25 वर्ष हम दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं यह संकल्प लेकर आया हूँ कि भारत और इंडोनेशिया मिलकर पूरी मानवता को एक नई ऊर्जा से भर सकते हैं। जब भारत के 140 करोड़ नागरिक, इंडोनेशिया के 29 करोड़ नागरिक साझा प्रयासों से मिलकर आगे बढ़ेंगे तो दुनिया एक नया इतिहास रचते हुए देखेगी।
3: नाउ वी गो अवर लाइव टू जकार्ता वेयर प्राइम मिनिस्टर इज एड्रेसिंग द कम्युनिटी प्रोग्राम।
2: भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं, बल्कि पिछले वर्ष का जो लास्ट क्वार्टर मार्च में खत्म होता है तब हमारी ग्रोथ रेट 7.7% रही है। ये गति, ये प्रगति ऐसे ही नहीं आई है। भारत ने एक के बाद एक रिफॉर्म्स किए हैं, हमने लगातार परफॉर्म किया है और इसलिए आज देश ट्रांसफॉर्म हो रहा है।
3: Earlier, both leaders also held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. And the two leaders also witnessed the exchange of memorandum of understanding MOUs aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. The two leaders agreed to set up a branch of IIM Bangalore in Jakarta. Prime Minister Narendra Modi was today conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna, by Indonesian President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Prime Minister Modi expressed gratitude for the award and dedicated it to the people of India and described it as a reflection of the enduring historical and civilizational ties between India and Indonesia. In Keralam, three people were killed in a landslide at the tunnel construction site near Kaleri in Mepari, Wayanad, following heavy rainfall today. Nine workers who were trapped underground were rescued and shifted to the Government Medical College Hospital, Mepari. Six others remain missing and appear trapped beneath the debris. Rescue operations are continuing with teams from the fire and rescue services and disaster response agencies. Union Home Minister Amit Shah today launched the mission to plant 70 lakh saplings in Delhi under the Ek Ped Ma Ke Naam Abhiyan to increase green cover in the national capital. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that this campaign is a significant initiative aimed at transforming Delhi's environment. Mr. Shah said that the central government and the Delhi government have resolved to fully develop 6,300 hectares of green rich area into forest land over the next 4 years and ensure its protection. In men's cricket, India will take on host England in the third T20 international of the five-match series at Trent Bridge in Nottingham tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. The men in blue will look to level the series as the new skipper Shreyas Iyer is yet

0: कार्यक्रम किसानवाणी सुनने वाले सारे किसान बागवान भाई बहन कने होर जितने भी श्रोते हैं तिना सबनी जो गुलाबो दी तरफ ते राम राम। किसान साथियों अज पंच जी जड़े से ट्याले पर आए हुन ता पंच जी तो हाँ सुना अपनी हाल चाल।
1: दिखा हाँ जड़ा से आजकल बरसात चली और बरसात दा आनंद भी जड़ा से जरूर लेना चाहिए है ना
0: जी बिल्कुल।
1: और साड़े किसान और बागवान भाई भी जड़ा से बरसात दा आनंद जरूर लिया करते हैं ना अपने घर है ना
0: जी बिल्कुल। बरसात दा आनंद ता हर कोई लेंदा दिखा हाँ ट्याले पर बैठे कने इत्थो कार्यक्रम किसान वाणी से चलिया है पटारू तो हाँ लोक गीता दा भर के आंदा है सौगी मौसम की जानकारी मंडी दे भाव कने सौगी मिठी मिठी हाड़ी गलबात जड़ी ऐसे भी चली हो कने मिठी मिठी बरखा जड़ी ऐसे भी उपर पहाड़ पर जड़ी से हुआ कर दी है ना
1: जी।
0: कने दिखा बरसात दा ता मजा ही ये है कि दिखा मजा भी रहंदा लेकिन कुछ एक सावधानियां भी रहनी है ना।
1: बिल्कुल और हाँ जो जड़ा से जालू बरसात होंदी है तो सावधानी तो जरूर अपनाना पौंदी है क्योंकि देखा सब तो पहले तो साढ़े पशुधन है तिना दा भी सांभ संभाल सांजो रखना पौंदी है ना
0: जी बिल्कुल।
1: उन्हां दा चारा जड़ा है सब भी सुकी जगह हाँ जो किसान भाइयों रखना पौंदा जो भी हरा चारा है या फिर सुक्का चारा है तो जो सुकी जगह ही रखना पौंदा क्योंकि अगर से बारिश ने गिला हुई है तो खाने लायक जड़ा से नहीं रहता है ना
0: बिल्कुल कहीं थले तिना जो बिछोना जड़ा है सभी सुक्का जड़ा से हाड़े पत्थर हो जाते हाड़े चलाफू हो जाते तिरा बिछोना हाँ पाए देन तर दिखा दूरा लाभ जड़ा से हाँ जो हो जाता एक था हाड़ा पशु जड़ा से गिला होने ते चिकड़ ते बची आंदा कने दूआ क्या होंदा से खाद दे रूप च हाँ जो बिछोने जो इस्तेमाल कर देन तो बड़ी अच्छी खाद जड़ी है गली छड़ी करी तैयार होंगी है तो इन्होंने गलों का हाँ ध्यान रखना इस सोगी ही हाँ जलू हरा चारा लियाने अपने खेतों जो जड़ी हड़ियाँ खरत जड़ी घासनियाँ ने तिथू अहाँ जाते तो तिथू आने जाने के रस्ते जड़े से सारे तो पहले जड़े से साफ करने ना
1: जी जी जी
0: कने दिखा बरसाती दा मौसम है कने कई बारी नुकसान जड़ा सा हो जाता है कजे बरसाती दे मौसम दे विच एक ता चिफलून जड़ा सा बड़ा वधी आंदा बरखा होने दे कारण है ना
1: हाँ जी
0: कने दूआ जड़ा सा कई बारी कीड़े कंडू जड़े होंदे सरप होंदे कई बारी ता काहे च छुपे रहंदे है ना जड़ा कि हाँ जो नजरी ना होंदा ता हाँ आने जाने दा रस्ता जड़ा सा साफ सुथरा रखना है ताकि हाँ जो कोई भी जड़ा सा नुकसान ना होए
1: जी। और इस दे कन्ने कन्ने दिखा तो साड़ा जिहड़ा पशुधन है इन्हां दिनां च साढ़े वल जिहड़ा बरसात दे मौसम च खुला पानी होई जांदा है ना
0: जी
1: तो उस पानी दा भी जिहड़ा असां सदुपयोग करना और जिवें कि हाँ अपने पशुओं जो समय समय पर गर्मी दे बचाव वास्ते नहलाई भी सकदे ने है ना
0: जी
1: और
0: बिल्कुल
1: तिन्हां जो साफ सुथरा पानी भी जिहड़ा असां पीणी जो देना है यानी कि बरसात दे मौसम च असां जो कई सारे सुविधा भी जिहड़ी असां मिलदियां ने है ना।
0: बिल्कुल
1: इस दे कन्ने कन्ने असां अपनी सुविधा की गल करिए तो असां जो भी जिहड़े से नहाने जो बरतने जो और कन्ने ही साढ़े जिहड़े सिंचाई का कम हुंदा है ना जी
0: जी
1: इस वास्ते भी जिहड़ा असां अच्छा पानी अच्छी मात्रा च पानी जिहड़ा असां मिली जांदा है पर अच्छी मात्रा च तो मिलता पर इस दे कन्ने कन्ने असां जो इसके सदुपयोग का भी जरूर ध्यान जिहड़ा असां रखना पौंदा है ना।
0: बिल्कुल देखा बरसाती का मौसम है पानी भी उबाली करी पीना चाहिए अपना खान पान जड़ा सा बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए है कने देखा पंच जी इस वेले देखा हाड़े ग्रां दे विच जगह जगह मेले भी लगे होने है ना
1: जी जी
0: मेलों च भी जाना अपना सहयोग जड़ा देना हाड़ा फर्ज बनता हर एक जड़ा सा ग्रां वासी का देखा हाँ खेती बाड़ी के कमां ते जालू भी वेले होंगे तो देखा इन्हों चीज़ों हाँ लगे आते कुथी यात्राएं लगियाँ कुथी यात्रा लगियाँ कुथकी देखा हूँ जड़िया सै यात्रा शुरू होनी है ना तो कुथकी मेले लगे नागनी का मेला नागा का मेला लगे तो कुथी ना कुथी जड़ा है साड़ा ग्रां वासी है या फिर किसान है तो सै व्यस्त रहा है ना तो इन चीज़ों जो भी सजीव रखना जरूरी है जे हाँ जाएंगे नहीं अपना सहयोग अपना योगदान नहीं देंगे तो इन चीज़ों का भी दिखा फिर कोई महत्व नहीं रहा ना
1: जी। तो गुलाबो जी इन गलबात करने हाँ हूँ चलना लोक जानकार की तरफ और सुनना एक प्यारा दे लोक गीत।

जी दक्षण सती है। हाँ ये लोकगीत सुने कने इसके बाद हाँ चलना भेंट वार्ता दी तरफ। और भेंट वार्ता च अज हाँ गलबात सुननी उन्नत महिला किसान शिवाली देवी और दे बारे च और उन्होंने जेडे खेती दे

0: अनुभव न तो आवा सारे कने साझा कर देन।
1: जी
2: किसान साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी च अहां दा प्रयास रहंदा कि हर दिन एक नित नई जानकारी अहां तुहां तक पहुंचाइए, चाहे वह विशेषज्ञ द्वारा दी गई जानकारी होवे या फिर उन्नत किसानां कन्ने कीती गई गलबात होवे। उसी कड़ी विच अज एक उन्नत महिला किसान अहां कन्ने जुड़ा करदे हन, ओवा करदे हन इन्हां कन्ने गलबात। राम राम जी।
3: राम राम जी।
2: जी अपना सबसे पहला नां दसा कने कुतू तुहां दे घर न?
3: मैं शिवाली ग्राम पंचायत कटोरा ब्लॉक नगरोटा सूरियां ते।
2: तो शिवाली जी तोहां खेतीबाड़ी कर दे?
3: हां जी सर।
2: जी दिखा खेतीबाड़ी करने ताईया तोहां वाल जेड़ा सा कितना के जमीना रकबा है?
3: सर जमीन तो साड़े ले 10 कनाल पर जेड़ी 5 कनाल है हाथ सभी ची खेतीबाड़ी करा दे।
2: अच्छा, बाकी जेड़ी 5 कनाल है सर क्या खड़ातर वगैरह कुछ बंजर है?
3: हां जी सर बंजर है, तिस भी चाहां थोड़े मेडिसिन प्लांट लगाने दी कोशिश करा दे कि आजकल जेड़ा सा लेडीज जेड़ियां ना सर वो मेडिसिन
2: छली दा बीज कौन लगाया तो हां अपना घरे दा बीज है?
3: हां जी साडा घरे दा बीज है।
2: अच्छा, देसी चिटियां छलियां बांधे की लाल
3: चिटियां सर?
2: अच्छा, इस ते कन्ने जियां सब्जियां वगैरह भी लगांदे कुछ?
3: हां जी सर सब्जियां भी लगाने।
2: इस वेले क्या क्या सब्जियां लगियां तुहां दे सवाड़ुआं च?
3: भिंडियां लगियां, बैंगन लगियो,
2: तोरिया वगैरह। हाँ दिखा चलो अपने घरे दी चलो हरी भरी ताजी चलो सब्जी हो एक आनंद जेड़ा सा कुछ होर है। शिफाली जी जी तुहां दस्या कि तुहां कुछ जियां एक कोई महिला दा समूह ऐसा मिली के जेड़ा सा औषधीय पौधिया पर भी जेड़ा सा काम करा कर देन।
3: हाँ जी औषधीय पौधे पर सबसे मतलब की आजकल जेड़ा सा मिशन धनवंतरी चलिया साडे कांगड़े विच।
2: हां जी
3: इससे जुड़ी के जनानी जेड़ा सा बड़ा भारी महिला है जेड़ा काम मिला था रोजगार मिला था तिसी ने।
2: अच्छा
3: जुड़ी के हल्दी लगाई तो हल्दी अगे प्रोडक्ट बना दे जिया साबने का कम चलिए अजकल सारा हाँ तुलसी लगाइयो जिया मतलब जेडी जमीन साड़ी जिथो हाँ खेती नहीं करते जिथो हाँ तुलसी लगाइयो तुलसी लगाई के तिसे फिर यहाँ अर्क निकालना अर्क निकाल के तिसे हाँ साबन तैयार करा दे।
2: जी तो इथो ही तुहा सारा ये काम जिया साबन वगैरह इथो ही तैयार कर लेंदे अर्क कि निकाल दे तुलसी का?
3: तुलसी का अर्क निकालने वास्ते मशीन लगी धर्मशाला पंचायत पद्धर च भी लगी मशीन कने फिर एक पट्टा जटिया न फतेहपुर ब्लॉक च।
2: अच्छा यानी कि पत्ते पहले तुलसी दे पहले पत्ते इकट्ठे करने हैं ना?
3: हाँ जी पत्ते इकट्ठे करने या मतलब कि डाल मस में थी तीन दिन हरवेस्ट कटिंग कर लेनी। अच्छा। मतलब पेन मस में थी कटिंग कर ली थी ना
2: फिर ये इन्हें सुखाना पौंदे या सिन्ने दा निकल दा अर्क?
3: अर्क निकल दा अर्क जेड़ा से सिन्ने दा निकलना कने अगर जिया जेड़े हूं चले कि कन्ने करा दे हां चाय पर कम जिया होंदे थोड़ी ग्रीन टी वगैरह है।
2: हां जी
3: तो तीसी पर कम चले तीसी भी हां कैमोमाइल दे लै दे पौधे।
2: अच्छा
3: एक कैमोमाइल होंदा फुल होंदा पीले रंग पंखुड़ियां लैनिया मतलब।
2: अच्छा
3: तुलसी के पत्ते लैने।
2: अच्छा
3: खुशबू वास्ते लेमन ग्रास होंदी फिर इसे तीन चीजा मिक्स करके एक टी पर कम चलिया पे इसे बनानी हर्बल टी बनानी एक।
2: तो जेड़ा तुहां दा ये समूह है महिला दा इससे कितनियां महिला जेड़ियां से सोगी मिली की काम करा करदियां ने?
3: इस टाइम सर मैं 5 लेडीज रखिया मतलब काम कर वास्ते साबन बना दिया जेड़ियां 5 लेडीज ने कन्ने मेरा एक हल्दी दा अचार है।
2: अच्छा
3: भी चल पौना नवंबर महीने तो फिर मिंजो थोड़ी और जरूरत पई जांदी तां अपने समूह दियां मिंजियां मतलब 4 या 5 लेडीज कर ले के मैं काम शुरू करा दे।
2: अच्छा जेड़ा तुहां साबण बना करदे ने ए ओथू कटोरे ही बनांदे या कुठी अग्गे पिछे लेके जांदे सी बनाने ताईयां?
3: नहीं मेरे यहां घर ही अपने मेरे हैंड मेकिंग मतलब हाथ ने बनाना है इसकी मशीन नहीं कुछ यूज नहीं करना कोई भी ऐसी चीज नहीं है जेड़ी केमिकल वाली पानी हां जियां तुलसी अदरक पाया।
2: हां जी
3: शहद पाया अपना हां।
2: अच्छा
3: जियां हल्दी पाई थी फिर नीम के पत्ते अलग अलग तरीके 3 प्रकार दे साबण बनायो हां।
2: अच्छा तो इसी फिर अग्गे जल तुहां बाजार विच भेजना ता ए कियां क्या करदे फिर कुतू लेके भेजना तुहां ए कुतू बेचना जाए के
3: ए सेल जियां मतलब ब्लॉक से साड़ी मीटिंग होनी ब्लॉक से हर एक इमीरा शॉप होंदी जियां खोल दे हां ते तू ब्लॉक से ले जंदे।
2: हां जी
3: रोटा सूरियां ते तू सेल कर दिंदे।
2: अच्छा
3: डिमांड आई थी हाँ जो नूरपुर ब्लॉक से थी आई भेजा था हाँ अपना सोप सोच की बनाई के।
2: अच्छा तो जी एक टिक्की मन लिया साबण क्या भा क्या ऐसा एक टिक्की
3: एक टिक्की सर 35 रुपए की 75-80 ग्राम ग्राम का वेट होना दिता।
2: अच्छा
3: हाँ जी
2: जी बड़ी अच्छी गल देखा की प्राकृतिक विधि करना पूरी जड़ी बूटिया करना नहाने वाला साबण भी जरा तो तैयार करा कर दे। हाँ
3: जी हाँ जी
2: जी तो इस ताइया तुहा कुछ पहला ट्रेनिंग वगैरह भी लिया कुछ सीखिया कुछ ये काम तो
3: ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਯਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਥੀ ਬਲੋਕ ਨਗਰੋਟਾ ਸੂਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਰਦੇ ਥੇ ਕੰਮ ਸੇ।
2: ਹਾਂਜੀ
3: ਤਿੰਨੇ ਯਹਾਂ

0: सद्या मतलब अपने कार्य सद्या मैं मिले हाँ जो भी दिया ट्रेनिंग कहाँ भी ये काम शुरू करना
1: अच्छा
0: क्योंकि पहले हाँ तुलसी वगैरह नहीं लगाई है पिछले साल था इस करके हार हाँ मतलब अर्क वगैरह जी अगर सब कुछ खरीदना पवे ता तो फिर बड़ा महंगा काम है
1: हाँ जी हाँ जी
0: क्योंकि साबने का बेस होंगे सब खरीदना पौधा हाँ जो
1: जी बिल्कुल
0: कने और मैं सारी महिलाएं जानकारी दी कि जी सारा ब्लॉक नगरोटा सूरिया दता इतू फूड प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी है मतलब सेंटर गवर्नमेंट ते अपॉइंट लोग ने तिथु तो सारे किसान जुड़े हाँ तो तिथु हाँ जो चीजा हाँ मतलब की अपनी जड़ी भी हाँ उगा दे तिथु सेल आउट करी सकते हैं पर सारी ऑर्गेनिक तरीके ना होता
1: अच्छा
0: तुलसी भी तीना खरीदी लेनी कैमोमाइल लगा दे अच्छा हाँ
1: हाँ
0: सभी
1: जी
0: तीना खरीदी लेना हल्दी है सभी तीना खरीदी लेनी हर चीज जी हर्बल चीज होंगी सब तीना खरीदी लेनी मतलब की एक तो हाँ जो सेल करने की कोई प्रॉब्लम नहीं दे
1: हाँ जी
0: मैंने दूसरा है कि जी ने जुड़ी के हाँ जो है कि मतलब मार्केटिंग करने जरूरत नहीं है
1: जी
0: तीना खुद मार्केटिंग करनी उन साबन है हारा था सेट साबन जरा से मैं टेस्टिंग वास्ते दे थे तीना हारे हो ये 4-5 दिन निकले हो साबने मतलब टेस्टिंग होता साबन हारा पे ही ऑर्गेनिक है कि कुछ हाँ केमिकल के नहीं मिक्स किता
1: हाँ जी हाँ जी
0: तब जरा सारा अदर स्टेटा भी जाई के सेल होना मतलब से हानी सेल करना से सीधे खुद FBO वाले सेल करना मतलब जो फूड प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी है ब्लॉक नगरोटा सूरिया दे तीना सेल करना
1: अच्छा यानी कि इसने तो हाँ जो आसानी हुई यानी तो हाँ वाल जितना भी उत्पाद होगा तो हाँ तीन ये देना अग्गे जड़ा सा तीन बेचना है
0: तीना सेल करना अगे तीना बेचना अगे जाके लोकल मार्केट है मतलब जिया हाँ लोकल सेल करा दे सह ता मतलब जिया डिमांड आई जाती ता घर तैयार करी दे जिया जिसी चाहे तो होगा साबन अज बोले तो सह ता कल दिन सवेरे तैयार करके दे देना
1: अच्छा
0: हाँ जी अपने लोकल तीन सेल करा दे भी
1: जी तो जी औषधि पौधे चाहिए तो दसिया तुलसी है इससे सोगी और कौन कौन पौधे लगाए हो ना
0: मतलब तुलसी है अश्वगंधा है सर्पगंधा
1: हाँ जी
0: है
1: अच्छा
0: अश्वगंधा सर्पगंधा इन्हों दड़ा जड़िया ना सह सेल होंगे
1: अच्छा
0: हाँ जी इन्हें जड़ा कटनिया जलू मतलब पत्ते भी हो जाते पर ज्यादा जड़ी कीमत है जड़ा दी मिलती इन्हों दी
1: अच्छा
0: बाकी सारा ये काम चलिया औषधि पौधिया पर चल लिया मैं तो बोलती कि जनानी जड़ा अच्छा घर बैठी के काम है औषधि पौधिया का करना
1: बिल्कुल हाँ जी
0: कहना इस बीच पंचायत जड़ी है ब्लॉक जड़े से बड़ी हेल्प करा दे
1: अच्छा शिफाली जी इससे बाद जिया गल करते हैं इससे सोगी जिया औषधि पौधे तो हाँ जड़े से लगा करते हैं सोगी जिया कुछ और फल आने पौधे भी लगाए जिया बागवानी की गल करिए था
0: सर बागवानी जी इसे बड़ी ज्यादा नहीं अपने यहाँ घरे तक की जी मतलब हर दो दो तीन तीन पेड़ है सब कैसी देन जी अमरूद संतरे अंब
1: अच्छा जी यहाँ कुनी औषधि पौधे अगर लगाने होने या तो हाँ ते लेने होने तो तिना जो पौध कुतु मिल रहा है कुतु संपर्क करना जेड़े तो हाँ जो सोना कर देने इस वेले
0: सर मतलब कि हर ब्लॉक से जड़ी से नर्सरी दी हो मतलब कि पूरे ब्लॉक से दो दो नर्सरियां ना
1: हाँ जी
0: जड़े औषधि प्लांट में सत्ती नहीं उगाने मतलब कि सहार कोई नहीं उगाई सकता मतलब बेंडर बंदे क्योंकि एक बेंडर टाइप होंदा
1: हाँ जी
0: सत्ती नहीं सेल आउट करनी जड़े नर्सरी लगाने थी ना
1: अच्छा यानी कि अगर कुसी औषधि पौधे अगर चाहिए हो तो सह अपने ब्लॉक च संपर्क करने की दसा भाई
0: हाँ
1: हाड़े
0: जी
1: ब्लॉक च औषधि पौधे कुछ मिल सकते हैं शिफाली जी इसके बाद तो हाँ जड़ा सह आहां दी जड़ी बेरोजगार युवा पीढ़ी है जड़े की नौकरी पिछे ता ता घूमा कर दे कने देखा नौकरियां नहीं भी मिला कर दी तीन
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: हाँ क्या संदेश देना चाहेंगे
0: हाँ जी तीने तो मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि तू हाँ औषधि पौधे लगाओ
1: हाँ जी
0: कहना तीने सेल करा तीने अपने तरीके ने आज उन ता मतलब शैम्पू खुद बिल्कुल प्राकृतिक तरीके ने शैम्पू बनाना भी दस्ता दे अचार पाना भी दस्ता दे हर चीज दस्ता दे एक बंदे काम करने का पता होना चाहिए कि मैं ये काम करना मैं लाइन लैनी है हूं मैं काम करा तो मैं कली नहीं रोजगार ला मैं अपने ने 5 और भी जोड़िया कहने शायद हाँ कुछ और काम करना तो इससे 5 और भी तक मतलब इससे जरा से घर बैठी जी बेरोजगार लेडीज ने तीन भी काम मिलना था उसे जाने की जरूरत भी नहीं कि हाँ जो कुछ मेहनत करना हाँ बाहर जाना कमाना अपने घर बैठे के आराम में ने काम करना अरे एक जगह इकट्ठे होकर काम करना था
1: जी शिफाली जी ग्रां कटोरा नगोटा सूरिया दे तो हाँ अहाँ कने आकाशवाणी धर्मशाला दे टियाले पर इतु तो हाँ जुड़े अपना कीमती समय तो हाँ अहाँ जो दिता तो हाँ दा बहुत बहुत धन्यवाद जी ता इस भेंट वार्ता दे बाद अहाँ चलना फिरते लोक जानकार दे तरफ और सुनना एक और प्यारा दिया लोक गीत
2: जी।

0: साथी अहें प्रेम सिंह होर दी आवाज़ से प्यारा दे लोक गीत सुनिया कने इस दे बाद हाँ हुण चलना कांगड़ा सब्जी मंडी दी तरफ और उत्थों दे जिहड़े अज दे थोक भाव ने सह कुछ इस तरह न
1: जी बिल्कुल आलू दी गल करिए किसान साथियों तां आलू अज कांगड़ा सब्जी मंडी दे विच 12 ते 14 रुपये प्रति किलो रहा है। प्याज 30 ते 32 रुपये। टमाटर की गल करिए 16 ते 40 रुपये। लहसुन रहा 160 ते 170। अदरक 210 रुपये प्रति किलो। शिमला मिर्च की गल करिए 50 ते 55 रुपये। अरबी 28 ते 30 रुपये। खीरा 25 ते 28 रुपये। मटर है 95 ते 100।

0: सब्जियां दे बाद हाँ गल करनी फलों की, तो फलों च सेब रहे है 150 से 170 रुपये प्रति किलो, केला 50 से 60 रुपये प्रति दर्जन, अनार 120 से 140, अनानास 40 से 45 रुपये, अमरूद 70 से 80, मौसमी 70 से 80, पपीता 40 से 50, खरबूजा 35 से 40। गल करिए आड़ू 50 से 65 रुपये प्रति किलो, पलम 50 से 80, चेरी 200 से 250 रुपये प्रति किलो, लीची 100 से 150 रुपये, आम जड़ा ऐसे 80 से 110, अंब तोता किस्म का 100 तोता किस्म का अंब जड़ा से 50 से 60 रुपये प्रति किलो, और दशहरी किस्म का जड़ा से 50 से 60 रुपये, नींबू 70 से 80, कने नाशपति 100 से 120 रुपये, कीवी का जड़ा से 40 से 50 रुपये परी पीस के हिसाब ने बिकिया, और माल्टा जड़ा से 100 से 110 रुपये प्रति किलो कांगड़ा सब्जी मंडी च रहे न।
1: जी बिल्कुल पंच जी, कने इस दे बाद कार्यक्रम दे विच अगे वधना, कने देनी मौसम दी जानकारी
0: जी।
1: मौसम दे विच कांगड़ा दी गल करिए ता अज दा अधिकतम तापमान 31 डिग्री कने न्यूनतम 25 डिग्री जड़ा से रहा है। पालमपुर दा अज दा अधिकतम तापमान 26 डिग्री कने न्यूनतम 21 डिग्री रहा है। ऊना दा अधिकतम तापमान 34 डिग्री कने न्यूनतम 27 डिग्री रहा। चंबा दी गल करिए ता अधिकतम तापमान 25 डिग्री कने न्यूनतम 19 डिग्री रहा है। मंडी दा अज दा अधिकतम तापमान 29 डिग्री कने न्यूनतम तापमान जड़ा से 23 डिग्री रहा है। किसान साथियों, हाड़े जड़े उपरली क्षेत्र कने जड़ा हाड़ा मध्य जड़ा क्षेत्र है, तिथु मौसम 2 दिन जड़ा से मिला जुला कने हल्की बरखा जड़ी होने की संभावना जड़ी से बनी हुई है।
0: जी तो गुलाबू जी, मौसम की जानकारी के बाद हुण हाँ कार्यक्रम के अंत च सुनना एक और प्यारा दे लोक गीत
1: जी।

0: जी किसान साथियों, इसी लोकगीत कने तुझे दस दिए कि इस कार्यक्रम जो तकनीकी सहयोग जिड़ा दिता से अंकित दिमान और कने प्रस्तुत करता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। हूँ अपने टियाले के सदस्य पंच जो
1: गुलाबो जो दिया अनुमति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। FM बैंड 103.4 MHz पर शाम के 7:42 हुए हैं। आपसे थोड़ी ही देर बाद यानी कि 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतज़ार।

0: अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: नौ आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में राज्य पिछड़ा वर्ग

0: आयोग के नए कार्यालय का किया शुभारंभ, रेरा कार्यालय जल्द खोलने के दिए निर्देश, सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में 33 केवी विद्युत उपकेंद्र पटलांदर जनता को समर्पित, 16 पंचायतों के लोगों को निरंतर मिलेगी बिजली आपूर्ति, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा मॉनसून सीजन के दौरान संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए करीब 15,500 कर्मचारी तैनात, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की विस्तृत चार्जशीट तैयार करेगी भाजपा, और अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी भूपिन शर्मा ने युवाओं से नशे से दूर रहकर खेल गतिविधियों में हिस्सा लेने का किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से धर्मशाला में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नए कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस कार्यालय के धर्मशाला में खुलने से कांगड़ा सहित आसपास के जिलों के लोगों को अब शिमला नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कांगड़ा जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है और इसी दिशा में कई सरकारी कार्यालयों को कांगड़ा स्थानांतरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी अन्य सरकारी कार्यालयों को कांगड़ा जिले में स्थानांतरित करने की योजना है।
1: धर्मशाला हमारी पर्यटन राजधानी के रूप में हमने घोषित किया है, पर जब यहाँ कुछ ऑफिस जाएंगे, काफी बिल्डिंगें यहाँ खाली पड़ी है, तो यहाँ के लोगों के रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आएगी। तो अभी काफी बिल्डिंगें यहाँ खाली है और मेरा तो विचार है कि कुछ और ऑफिसों को भी यहाँ आने वाले वक्त में शिफ्ट किया जाए। और निश्चित रूप से जो ओबीसी का कार्यालय यहाँ खुला है, इससे ओबीसी वर्ग को जो उनके अधिकार है वो मिलने चाहिए।
0: मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में रेरा का कार्यालय भी जल्द खोलने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के उपायुक्त को निर्देश दिए। इस बीच मुख्यमंत्री ने 7,54,00,000 रुपए की लागत से निर्मित सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में 33 केवी विद्युत उपकेंद्र पटलांदर का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से 16 ग्राम पंचायतों के लोगों को गुणवत्तापूर्ण व निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था के लिए इस केंद्र को टौणी देवी और सुजानपुर उपकेंद्रों के साथ जोड़ा गया है, जिससे आपात स्थिति में भी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। प्रदेश में मॉनसून सीजन के दौरान संभावित चुनौतियों से निपटने संबंधी तैयारियों व अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। विक्रमादित्य सिंह ने जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त निजी मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम टेंडर की व्यवस्था करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि भारी बरसात से निपटने के लिए लगभग 15,500 कर्मचारी व 1,156 मशीनरी तैनात की गई है। लोक निर्माण मंत्री ने नियमित अंतराल व ड्रेनेज व कलवर्ट की सफाई करने और अस्पताल, पुलिस स्टेशन व अग्निशमन केंद्रों सहित अन्य संबंधित विभागों के साथ संपर्क सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कोर ग्रुप की एक बैठक आज शिमला स्थित पार्टी कार्यालय दीप कमल में आयोजित की गई। बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद अनुराग ठाकुर, सुरेश कश्यप, हर्ष महाजन, सिकंदर कुमार सहित कोर ग्रुप के सभी सदस्य मौजूद रहे। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि कोर ग्रुप ने प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज व शहरी निकाय चुनावों के परिणामों और आगामी संगठनात्मक मुद्दों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। बिंदल ने बताया कि बैठक में कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों, अधूरी गारंटियों और प्रशासनिक विफलताओं के खिलाफ प्रदेशव्यापी जन आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 3.5 वर्षों के कार्यकाल की विस्तृत चार्जशीट तैयार कर उसे जनता तक पहुंचाया जाएगा।
2: 3.5-4 साल के कांग्रेस सरकार के जो जन विरोधी काम, जनता के खिलाफ जो काम किए, उनको लेकर के पार्टी अगले दिनों में जन आंदोलन खड़े करे। कांग्रेस ने गरीब का राशन महंगा कर दिया, गारंटियों के नाम पर हिमाचल प्रदेश की जनता को ठगा, माफिया राज लूट का अड्डा बन गया, कानून व्यवस्था तार तार हो गई,

0: हिमाचल तरह तरह से भ्रष्टाचार के जाल में फंस गया। इन सभी मुद्दों को लेकर और गारंटियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जन आंदोलन खड़े करेगी और सरकार के काले कारनामों के चार्जशीट तैयार करेगी।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि भटियात विधानसभा क्षेत्र में बेहतर व सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। वे आज भटियात क्षेत्र की मेल और चूहन पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का भूमि पूजन करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन दोनों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण पर कुल 6,58,00,000 रुपये खर्च होंगे और अभी तक 2-2 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने जनसमस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा के नेतृत्व में भाजपा मंडल ने आज एसडीएम सुजानपुर को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें सुजानपुर व टौणी देवी बीडीसी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव को तुरंत करवाने की मांग की गई है। बाद में भाजपा मंडल ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हार के डर से लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। राजेंद्र राणा ने कहा कि कांग्रेस सरकार पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर कर रही है।
2: हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश में बीडीसी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन का वहीं चुनाव कर रही है जहां उनको सूटेबिलिटी है, जहां उनकी संख्या बल है, और जहां संख्या बल नहीं है वहां पर बीडीसी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन के चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। 1.25 महीना से ज्यादा अरसा हो गया, सरकार बेईमानी से काम कर रही है और आज हमने सुजानपुर में धरना प्रदर्शन किया है। सरकार को चेताया है कि जल्दी इसके चुनाव संपन्न करवाए जाए, अन्यथा धरना प्रदर्शन सुजानपुर के हर जगह किया जाएगा। इसी तरह पूरे जिले में एक बीडीसी का चुनाव जो है भोरंज का संपन्न हुआ है जहां उनको सूट करता था, अन्यथा बाकी के 5 ब्लॉकों में कहीं भी चुनाव नहीं कराया जा रहा है। इसलिए हम सरकार को मेमोरेंडम दिया है कि वो जल्दी चुनाव कराए।
1: सोलन जिला के परवाणु के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी भूपिन शर्मा ने हाल ही में श्रीलंका में आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में रजत पदक अपने नाम किया है। भूपिन शर्मा ने कहा कि ये पदक जीतकर वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं को खेल गतिविधियों में हिस्सा लेकर नशे से दूर रहने का आग्रह किया है।
3: मैं भूपिन शर्मा, इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर। मैंने अभी अभी श्रीलंका में आयोजित होने वाली इंटरनेशनल सिलोन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था और मेरा वहां पे सिल्वर मेडल आया है 35+ सिंगल्स कैटेगरी में, और मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूं, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा और युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि फिट रहें, मोटिवेटेड रहें और नशों से दूर रहें और अपने देश का नाम ऊंचा करें।
1: कांगड़ा जिला के गग्गल हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। प्रभावित परिवारों को मुआवजा और R&R की राशि देने के बाद 15 दिन में घर खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं। प्रभावित गांव के लोगों ने ऐसे नोटिस जारी करने पर नाराजगी जताते हुए आज उपायुक्त हेमराज बैरवा से मुलाकात कर मकान बनाने के लिए कम से कम 1.5 वर्ष का समय देने की मांग की।
4: मेरा नाम रोशन लाल प्रधान, ग्राम पंचायत से हमारी जमीन विस्तार कर्म के अंदर गई है, तो उसमें RR का जो जो लॉन्च है वो हमें मार्च अप्रैल में मिला है, तो इस वजह से हम मकान तैयार ना कर सकते। 50 साल से नीचे कोई जमीन नहीं मिल रही है, इस वजह से लेट हुए हैं। DC साहब से यही प्रश्न की है कि हमें कम से कम 1.5 साल का टाइम दिया जाएगा।
5: निहारिका है, पैसा बताया गया ना, उसके बाद R&R का पैसा बताया गया कि हमें कितना मिलेगा, एंड मौके पे जब पैसा डल रहा है तब हमें पता लग रहा है कि कितना पैसा पड़ रहा है। उसको जब हमसे NOC साइन करवाई गई थी तब हमें वहाँ के जो ऑफिशियल्स आए थे उन्होंने बोला था कि आपको R&R मिलने के बाद 1.5 साल का टाइम मिलेगा, तो अभी ये सब क्यों हो रहा है।
1: प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत व बचाव कार्यों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में लाहौल स्पीति जिला के मुख्यालय केलंग में विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को आपदा के समय ड्रोन के प्रयोग को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
6: लाहौल स्पीति में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लोड केयरिंग ड्रोन संचालन पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष किरण बढ़ाना ने की। प्रशिक्षण में अधिकारियों को आधुनिक PX6 92300 ड्रोन के सुरक्षित संचालन और आपदा के समय इसके उपयोग की जानकारी दी गई। ये ड्रोन अधिकतम 75 किलोग्राम तक भार उठाकर सड़क संपर्क टूटने की स्थिति में दवाइयां, खाद्य सामग्री और अन्य राहत सामग्री दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचाने में सक्षम है। उपायुक्त किरण भराना ने कहा है कि लाहौल स्पीति जैसे दुर्गम जिले में ये तकनीक राहत एवं बचाव कार्यों को नई गति देगी। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नए कार्यालय का किया शुभारंभ। रेरा कार्यालय जल्द खोलने के दिए निर्देश। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में 33 KV विद्युत उपकेंद्र पटलांदर जनता को समर्पित। 16 पंचायतों के लोगों को निरंतर मिलेगी बिजली आपूर्ति। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, मॉनसून सीजन के दौरान संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए करीब 15,500 कर्मचारी तैनात। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की विस्तृत चार्जशीट तैयार करेगी भाजपा। और अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी भूपिन शर्मा ने युवाओं से नशे से दूर रहकर खेल गतिविधियों में हिस्सा लेने का किया आग्रह। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
8: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
7: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
8: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
7: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
8: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
9: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही FM बैंड 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। रोजगार समाचार सुनिए। बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय अम्ब के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के खाली पदों को भरने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए 10 जुलाई 2026 तक आवेदन किया जा सकता है। योग्यताएं एवं मापदंड इस प्रकार से हैं। केवल महिला उम्मीदवार ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पद हेतु आवेदन करने योग्य होगी। अभ्यर्थी संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के लाभान्वित परिक्षेत्र की सामान्य निवासी होनी चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 होना अनिवार्य है। प्रार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उम्मीदवार की वार्षिक आय 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और ये प्रमाण पत्र नायब तहसीलदार, कार्यकारी मजिस्ट्रेट अधिकारी द्वारा प्रमाणित और हस्ताक्षरित होना चाहिए। उम्मीदवार हिमाचल की स्थायी निवासी होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र सादे कागज पर बाल विकास परियोजना अधिकारी अम्ब कार्यालय में 10 जुलाई 2026 को सायं 5 बजे तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उम्मीदवार को साक्षात्कार वाले दिन दिनांक 15 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे समस्त मूल दस्तावेजों सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी अम्ब के कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय व संबंधित पर्यवेक्षक व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अथवा सहायिका से संपर्क कर सकते हैं। रोजगार समाचार समाप्त हुए। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है।
10: 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। आ सबरस कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को।

अभी आप सुन रहे थे तलत अजीज की गाई ये गजल कार्यक्रम में। अब हम शामिल कर रहे हैं पंजाबी गीत हरजीत हरमान की आवाज में।

हरजीत हनुमान को अभी आप सुन रहे थे। विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सोनू निगम, अलका याग्निक और ऋचा शर्मा का गाया ये गीत।

भूपिंदर सिंह की गाई सी गजल के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

सिकंदर आजम। इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्ति गीत मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ। पूर्व और पश्चिम, इस फिल्म से ये देशभक्ति गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

0: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 9 बजे News@9 रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6,000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरल में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान।

0: और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है

0: के भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
1: बेंगलुरु IIM वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में QS रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
2: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने ये भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांकी रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
3: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृह मंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
4: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
5: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे MSME के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
6: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
7: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मानसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of green ridge area to be developed into forest land. 3 persons killed and 6 go missing after landslide hits Wayanad tunnel construction site in Kerala.
9: IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India over next 4 days. And in men's cricket, India to take on hosts England in the third T20 international of the 5-match series in Nottingham tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development, not expansionism.
10: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai. और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास. आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ. भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है.
9: Here is more from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
11: Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to regional and global peace and stability. Mr. Modi said the relationship between India and Indonesia is centuries old and shares similar democratic values, mutual trust and common vision for the future. The Prime Minister said India believes in development, peace, stability and prosperity. Mr. Modi stressed the need for collective action against terrorism and unilateral actions that undermine regional security. He emphasized global South stability besides Indo-Pacific. The Prime Minister called for deeper cooperation in defense, maritime security, trade, digital technology, educational, artificial intelligence, and critical minerals. He also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups, and innovation to benefit people in both the countries. Jakarta, Indonesia.
9: The Prime Minister reached Jakarta last evening on the first leg of his three-nation visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Earlier today, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Prime Minister Modi also addressed the Indian community at Jakarta this evening. He said India's economy is playing a major role in driving global growth. He said the government is working on the mantra of reform, perform and transform.
10: Aaj Bharat ki arthavyavastha दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है. जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी. जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं. भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 billion aspirations in motion.
9: The Prime Minister said India's journey towards self-reliance is becoming a multiplying force, not only for Indonesia, but for the entire ASEAN region. He stressed that India and Indonesia share a common vision of development and cannot afford to wait or slow down. Indonesian President Prabowo Subianto, in his address, said he has an Indian DNA. He said the achievements of India, both at the union level and across its states, are truly remarkable, and he closely follows this remarkable journey.
12: I want to admit that I am a great admirer of Narendra Modi ji, and I studied the policies of your Prime Minister, and Prime Minister Modi graciously allowed me to copy his policies. So the important thing is Indonesians must learn from the experience of India. Our civilization, our culture, many hundreds of years strongly influenced by Indian civilization. Our language, what, 50% from Sanskrit?
8: Prime Minister Narendra Modi was today conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, by President Prabowo Subianto during a ceremonial event.

भारत की सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय पार्श्व गायिकाओं में से एक हैं के एस चित्रा। उनका पूरा नाम कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा है। चार दशकों से भी लंबे करियर में उन्होंने मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी सहित कई भाषाओं में 25,000 से अधिक गाने गाए हैं। अपनी जादुई और मधुर आवाज के कारण उन्हें दक्षिण भारत की कोयल भी कहा जाता है। कार्यक्रम में अब शामिल कर रहे हैं रंगीला फिल्म से ये गीत। इसमें के एस चित्रा का साथ दिया है उदित नारायण ने।

के.एस. चित्रा का जन्म 27 जुलाई 1963 को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय कृष्णन नायर एक संगीतकार थे और वही चित्रा के पहले संगीत गुरु थे। उन्होंने केरल विश्वविद्यालय से संगीत में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है और केंद्र सरकार के राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति के तहत कर्नाटक संगीत की गहन शिक्षा प्राप्त की। चित्रा ने अपने पेशेवर गायन करियर की शुरुआत 1979 में की थी। उन्हें पहला बड़ा ब्रेक संगीतकार एम जी राधाकृष्णन द्वारा मलयालम फिल्मों में मिला। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज संगीतकारों जैसे इलैयाराजा और एआर रहमान के साथ अनगिनत सुपरहिट गाने गाए।

हिंदी सिनेमा और गैर फिल्मी संगीत की बात करें तो 90 के दशक में एआर रहमान के संगीत निर्देशन में फिल्म दिल से और प्राइवेट एल्बम पिया बसंती ने उन्हें उत्तर भारत में भी घर घर में लोकप्रिय बना दिया। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं बॉम्बे फिल्म से ये गीत।

के एस चित्रा सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार रिकॉर्ड 6 बार जीत चुकी हैं, जो किसी भी महिला गायिका द्वारा सबसे अधिक है। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2005 में पद्मश्री और 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे थे गायिका के एस चित्रा के गाए कुछ चुनिंदा गीत। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतांदी। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं कर्नेल राणा के गाए इस भजन के साथ।

अभी आप सुन रहे थे विनय अवरोल का गाया ये लोकगीत। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं प्रेम सिंह का गाया ये लोकगीत।

धाम गीतां दी ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं अक्षर सिंह परमार का गाया ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लेख रामपाल की आवाज़ में ये लोकगीत कार्यक्रम में। अब हम शामिल कर रहे हैं कौशल्या देवी का गाया ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे रोशन लाल का गाया ये लोकगीत। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं वर्षा कटोच का गाया ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धाम गीता दी। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 और 45 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत पुरानी फिल्मों से गीत।

चित्रपट संगीत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं मुकेश के गाए इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म मधुमती से।

देश फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर। आवाजें हैं महेंद्र कपूर, आशा भोसले, मन्ना डे की, और संगीत दिया है रवि ने, बोल है राजेंद्र कृष्ण के।

अनमोल मोती इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर को। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत बॉम्बे टू गोवा फिल्म से। ये संगीत है राहुल देव वर्मन का। चित्रपट संगीत, पुरानी फिल्मों से गीत, अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अपने रेडियो दोस्त रेनू मनकोटिया के साथ। यूट्यूब बने रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए।

मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल हैं आनंद बख्शी के।

अभी आप सुन रहे थे शिकारी फिल्म से ये गीत। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं सच्चा झूठा फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

अराउंड द वर्ल्ड इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं शारदा और मुकेश की मिलीजुली आवाज़ों में। रात्रि के 11 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 11 बजकर 5 मिनट पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास शांति स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह उपलब्धि आधुनिक

और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृह मंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमरीका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।